0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
2: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: लेकिन खाटू वाले की सबसे बड़ी खासियत सबको खुश रखने वाले का,
1: खुश रखने वाले का।
0: सारी दुनिया दावा करती है कि बाबा हमारा है, फ्लाइट से आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, पेट पलनिया आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, लेकिन बाबा की खासियत देखो, कोई खाटू आकर बोले ना बोले कि बाबा हमारा है, लेकिन बाबा शाम पूरी दुनिया का आज हो रखा है, बाबा बोलता है तू मेरा।

विश्व की सबसे सुंदर आवाज मैं कहूंगा। हम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मेरे बाद वो आएंगे। कोई वक्त होता था आज से 22 साल पहले जब मैं भी वहां खड़ा होकर देखता था कि इस सूरज को कब नजर से देखूंगा। यह उसी की कृपा है कि उस सूरज के साथ खड़ा हूं। यह उसकी कृपा के बगैर नहीं।

अभी रोहतक गया मैं कीर्तन के लिए, तो वहां एक भाई मिले, बोले मेरे को एक बुजुर्ग माताजी मिली। मैंने उसको पूछा, माताजी कहाँ जा रहे हो? बोली मैं वहां जा रही

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
4: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
5: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
4: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने कहा है कि

0: के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति फिजिस्कियन ने कहा कि अमरीका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ौती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झोलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ौती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, बंदे का नाम आनंद है, प्रोग्राम आपका फेवरेट है। आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ एक बार फिर से एक बहुत ही कमाल की सुपर डुपर अमेजिंग टैलेंटेड लेडी मौजूद हैं, एंड मैं डॉक्टर इनको बाद में बोलूंगा, पहले टैलेंटेड बोलूंगा क्योंकि बहुत कमाल का काम कर रही हूं। सिर्फ अपनी हॉस्पिटैलिटी ये हॉस्पिटल में नहीं, इंस्टाग्राम पे भी देती है बहुत अच्छे तरीके से। जब फर्स्ट आई थी तो मेरे को लगा नहीं था कि इतनी मल्टी टैलेंटेड मैम है, मतलब वो तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी सुपर वाली होंगी ये नहीं पता था। चलो मैम का तारुफ तो मैंने करा दिया है, लेकिन अभी उनके स्टाइल में जरा उनका हालचाल तो जान ले भाई, क्योंकि सब कुछ मैं बोल दूंगा तो वो क्या बोलेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वार्म वेलकम है आपका।
3: हेलो,
0: जोरदार तालियां प्लीज मैम, टेल मी कैसे हालचाल?
3: मैं बढ़िया हूँ। और आज हम कहाँ हैं? हम हैं 89.6 एफएम पे, और ये है दूसरी बार हम आए हैं। और क्या करने आए हैं बताइए आनंद जी, हम क्या करने
0: आज
3: आए हैं?
0: मैम के साथ में बहुत सारी बातें करूंगा। देखो यार, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है, बट होने वाली है वेरी वेरी सून, तो मैंने सोचा मैम को बुला के पहले थोड़े से ना ट्रेनिंग ले लेता हूँ मैं, है ना।
3: आज हम आपको ही, आपका प्री वेडिंग होता है ना, उसी तरह प्री नर्सिंग शूट करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि बच्चा होने का प्रोसीजर क्या है,
0: माय गॉड
3: कैसे कराया जाएगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, किस किस केस में क्या कराया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर।
0: मुझे मारो, ये सीरियस है भाई। वेल, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, और इसी जोक सपाट और अच्छी बातें होंगी। देखो, काम के साथ साथ ना थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली बातें होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो है, यहाँ पे हम आपको सुनाई दे रहे हैं, और शायद आप हमें मन की आंखों से देख भी रहे हो, क्यों मैम? और मजे की बात पता क्या है, डॉक्टर आशिका मैम ना सिर्फ जानकारी अच्छी नहीं दे, बोलती भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप सुनोगे तो आपको लगेगा वो दूसरी अनाउंसर है मेरे साथ बैठी हुई है। लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा बोल के गई थी, आपको मैं वो क्लिप जरूर दिखाऊंगा, मेरे फोन में आज भी सेफ है। अच्छा मैम, अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ वर्किंग है एंड आपका नाम वगैरह थोड़ा बता दूं।
3: जी, आई एम डॉक्टर आशिका गुप्ता, मैं पास आउट हूँ एएमयू की, प्रोडक्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड पीजी फ्रॉम देयर, एंड अभी मैं जो प्रेजेंटली वर्किंग हूँ एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद, जो काट रोड पे है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट।
0: दैट्स वेरी नाइस। एक खास बात ये थी यार, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर आशिका मैम का नाम पहले आ जाता है। ऐसा क्या बोला था हम दोनों ने लास्ट टाइम जो लोग इतना याद रखते हैं?
3: यार पता नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये डॉक्टर।
0: कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं भाई, वो सीधा सीधा आपका नाम बोलते हैं, और अभी और कोई राशिका मेरे साथ में आई नहीं है यहाँ पे, ये भी सच है, मतलब शायद हमने कुछ तो अच्छा बोला होगा, शायद
3: अच्छी बात है, इट इज गुड फॉर अस ना, कोई बात नहीं,
0: ये अच्छी बात
3: करेंगे, मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है कि बार बार साथ आने का।
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम दोबारा आए तो शायद इस बार और ज्यादा लोग याद करें, कुछ ऐसा अच्छा करते हैं, राइट? ओके, सो आज मैम हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं सिजेरियन के बारे में, बहुत सारी बातें मुझे जाननी है और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो आज ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या आजकल सिजेरियन जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्यों, उसका रीजन क्या है मैम, क्या लगता है?
3: एक्चुअली यस, सिजेरियन का रेट तो बढ़ ही गया है ना। अब रीजन में तो देखिए दोनों बहुत सारे रीजन है, बट मेजरली जो रीजन है ना, एक तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, पहले लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे, ठीक है,
0: सही बात है,
3: खान पान में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें थी, अब हमने आर्टिफिशियल चीजें ये सब इन्वॉल्व कर ली हैं। प्लस हम जब पेशेंट को आजकल एडवाइस करते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम एक्सरसाइजेस बताइए कि किससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन ये पुरानी लेडीज का रूटीन था, कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ रहा था, उनका जो काम करने का तरीका था वो इसी तरह का था कि पेल्विक फ्लोर खुलता था,
0: ठीक है।
3: प्लस थोड़ी पुराने जमाने की लेडीज रफ एंड टफ हुआ करती थी, अभी exactly. हमारी जनरेशन थोड़ी छुई मुई है,
0: और हमारी वाली क्या होगा पता नहीं,
3: हाँ जी एग्जैक्टली, कोई तीसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा अब डिलीवरी का, नॉर्मल
0: AI आ गया है ना,
3: ऑप्शन एग्जैक्टली
0: ऑप्शन आ रहा है अभी, लाइन लाइन में है,
3: तो इट इज ऑल दैट, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही आप मान लीजिए, है ना?
0: ओके
3: तो प्लस लास्ट टाइम पहले लोगों के पास सिजेरियन के इतने ऑप्शन नहीं रहते थे, ऑप्शन ही नहीं है, आपको कराना ही नॉर्मल डिलीवरी है, घर पे देके या जैसे भी कराना है वो हो जाती थी, है ना। दूसरी चीज, आप अपनी दादी नानी को कभी टटोलना तो बताएंगी वो आपको अपनी हिस्ट्री की, बेटा मेरे ना 10 बच्चे बच्चे हुआ करते थे,
0: राइट,
3: उसमें से दो बच्चे एक्सपायर हो गए, अभी आठ मेरे पास थे, ठीक है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं है, दो चले गए, आठ है मेरे पास। बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, दे वॉन्ट टू हेल्दी चिल्ड्रन। तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि यार बाय दिस वे या दैट वे वी हैव टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी,
0: क्योंकि
3: हमारे पे बेबी के रिगार्डिंग हमारे से कोई भी मतलब कोताही बर्दाश्त ही नहीं है। तो फिर हमें भी एक प्रेशर रहता है, उस अंडर प्रेशर में हमें 100% रिजल्ट देना है, तो उस अंडर प्रेशर में भी थोड़े से सिजेरियन का रेट इंक्रीज हो जाता है।
0: ऑल राइट, सो आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया होगा मैम ने। अच्छा एक और चीज है मैम, अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आज भी कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई क्या, तरीके की सुनने को मिलती है वे चीजें, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस खुद भी पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन,
3: इट इज अ प्रेशर है ना, मतलब आजकल प्रेशर हो गया है, और ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके फायदे और नुकसान दोनों है। तो आप किसी की नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी देख ली हमने कि यार उसने तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, बट आई वुड से कि देखो हर बॉडी अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर किसी की इंडिकेशन अलग है, तो इट इज नॉट कंपेरेबल कि किसी की हो गई है तो आप दूसरी लेडीज को भी प्रेशराइज करना शुरू कर दें। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, है ना, आपको भी पता है, आई हैव ट्विंस, ठीक है, दोनों बच्चे मैंने ही जन्मे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, सिर्फ एक मिनट का फर्क है, बट दोनों की प्रेफरेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है, किसी को पसंद है किसी को नमकीन पसंद है, तो जब एक माँ के दो जन्मे बच्चे एक से नहीं हो सकते, तो दो लेडीज की प्रेगनेंसी एक सी कैसे हो सकती है।
0: एग्जैक्टली,
3: सो इट इज ऑल इंडिकेटेड, हर किसी का अलग अलग इंडिकेशन होता है, और नेचुरल डिलीवरी तो ऑब्वियसली सेफ डिलीवरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी है तो हम उसे एनकरेज करते हैं, बट स्ट्रिक्टली ये कहना कि यार नहीं यार नॉर्मली कराना है, ये एम नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा।
0: ऑलराइट, अच्छा मैम उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसके पीछे रीजन ये भी है कि पहले का खान पान, जैसे आपने अभी इंक्लूड भी किया कि बहुत डिफरेंट था, आजकल का खान पान बहुत अलग है, है ना, आजकल मैं आपकी वीडियो में भी देखता हूँ कि आज पपीता खाने का मन है तो क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए, आज टिक्की खाने का मन है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए,
3: ये अब हमें बताना पड़ रहा है आनंद जी, ये सब चीजें तो मतलब बताने की थी ही नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हम लोग सनातन धर्म है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ, तो ये सब ये हमारे बताने,
0: मुझे इसलिए भी हंसी आ रही, मैं सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप बताइए, अब ये चीज और रहेगी कि लोगों को बतानी,
3: मेरी पिज्जा की वीडियो है 1.3 मिलियन,
0: वही सबसे ज्यादा वायरल हुई
3: है ना, अब उसमें कुछ बताने की बात तो थी नहीं कि आप पिज्जा ना खाएं, बट लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि पिज्जा खाना है कि नहीं खाना है, लोग ये शेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग खा रहे हैं, तो हस्बैंड्स आर शेयरिंग टू देयर वाइफ, यार एक गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है नहीं खाना है, या फिर इसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो उन्होंने बताए, तो आप ये देखो ये चीजें इस लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली ये तो माँ को पता होनी चाहिए, है ना, तो फिर सारा अब प्रेशर लास्ट में कि नॉर्मल, जब स्टार्टिंग से ही प्रोसेस हुआ तो हमने बेड रेस्ट किया, हमने प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से कंसीव करी, अब लास्ट पे बर्डन माँ पे डाल के इट इज नॉट वेरी मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, सेफ माँ सेफ मदर, बस दैट शुड बी द गोल।
0: बहुत बढ़िया मैम, मुझे ऐसा लगता है ना इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोगों को ये चीज बतानी पड़ रही है हमें, है ना, स्पेशली लेडी को, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतना सुपर फास्ट है, लड़की के पास टाइम नहीं है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं मोस्टली, है ना, तो उनको शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बट आप लोग जो उनको कहने के एक राइट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई ये चीज अगर आप ले रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक सही इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर हो रही है, और प्लस सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है कि वो अच्छी चीजें भी दिखा रहा है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी अलूल झुलूल बातें करने लगते हैं नॉर्मल थोड़े से व्यूज के लिए, बट उससे किसी की बॉडी पे किसी की लाइफ में बहुत फर्क पड़ सकता है।
3: एक्चुअली एक्टिव भी डॉक्टर्स को इसीलिए होना पड़ा क्योंकि वो जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना
0: 100%
3: इंस्टाग्राम पे, तो वी हैव टू काउंटरैक्ट दैट, मतलब बिना डिग्री के कुछ भी, वहाँ डिग्री तो चाहिए नहीं, तो एवरीबॉडी इज टेलिंग देयर वेज, तो वी आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू की भैया ये दिस इज द राइट।
0: एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि बहुत ही सही है मैम, और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे अच्छे लोग ये चीज इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मिथ दूर होंगे, और सिर्फ लेडी के क्यों जेंट्स के भी बहुत जरूरी है मैम, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम तो ऐसा है भाई, हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मैम इसी बीच एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे, कई पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार डॉक्टर ने सिजेरियन क्यों बोल दिया, क्या उन्हें जल्दी थी या क्या था, मतलब रीजन ये बड़ी आ जाता है ऐसे थॉट, हस्बैंड भी बीवी भी सबके मन में आता है,
3: एक बात सही है कि लोग बोलते यार उसे जल्दी थी इसलिए सिजेरियन करके निपटा दिया।
0: एग्जैक्टली,
3: बट मैं आपको बताऊं जब हम गायनेकोलॉजिस्ट बने थे वी हैव बीन पास आउट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना, तो हम जब हुए थे हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है ना, हमें बता दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारे जीवन में कोई जल्दी काम बचा नहीं है, अभी मैं आपसे बैठी हूँ, अभी 5 मिनट बाद मेरे अटेंडर का फोन आ सकता है कि मैम एक पेशेंट लेबर में आई है तो आई हैव टू रन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अब हमारे लाइफ में हमारे लिए टाइम बचा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नर्सिंग होम नीचे हो ऊपर डॉक्टर्स रहते हैं, तो उन्हें क्या जल्दी है आप मुझे ये बताइए। उनको तो इट इज अ फुल टाइम जॉब ना, पूरे दिन का जॉब। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम मदर और बेबी को सेफ डिलीवर कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे कभी कभी लेबर प्रोग्रेस करते करते बच्चे में डिस्ट्रेस हो जाता है तो सिजेरियन लेना पड़ता है। कभी कभी बेबी की पोजीशन खराब हो जाती है तो सिजेरियन लेना पड़ता है। प्लेसेंटा को कोई फैक्टर होता है जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा है, प्रीविया है, तो हमें सिजेरियन के लिए लेना पड़ता है। तो जल्दी नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा हमारा आपसी आप समझिए तालमेल की कमी है। अगर आप 9 महीने किसी के वो पेशेंट हैं और आपको उन्होंने डील किया है तो आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है। तो कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं करेगा कि अनइथिकली जाके आपको भैया डायरेक्ट सिजेरियन के लिए बोल दिया, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि जल्दी की वजह से हम करते हैं, इट इज ओनली टू डिलीवर अ सेफ मदर एंड अ सेफ।
0: वेरी नाइस। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये डेफिनेटली ऐसी चलती रहेगी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी डॉक्टर राशिका जी हमारे बीच में है तो ऑफकोर्स काम की बातें होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट भी आती भी होनी चाहिए ना। मैम देखिए अपने हॉस्पिटल से निकल के मेरे रेडियो हॉस्पिटल पहुंची है जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती है, जरा जानते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसा, मेरे मन में भी होता है कि डॉक्टर गाना सुनते होंगे, तो किस तरह का म्यूजिक अभी हमारे लिसनर्स को आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे? वो वही गाना प्ले करेंगे अभी हम, आपका फेवरेट कोई अच्छा सा गाना बता सकते हो? अभी आपको पता है इंस्टाग्राम पे 80 वाला ट्रेंड कम बैक कर रहा है।
3: हाँ 80s वाला कर रहा है, मैं भी बनाने वाली हूँ, रिसेंटली बनाने वाली।
0: मैंने वही भी देखा आपका, मैं सब कुछ तो आ गया यार, मैम का भी नहीं आया।
3: आएगा बट देन अभी आप गाना बजाओ
0: कोई मदर से रिलेटेड हो। ओके आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुना है आपने गाना?
3: नहीं यार ये मदर से रिलेटेड है, डिलीवरी ऊपर मैं नीचे।
0: सॉरी यार अभी ना एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा है।
3: अरे वो वाला बजाते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है।
0: कौन सा?
3: हनुमान जी वाला, पार्वती
0: पार्वती पार्वती ट्रेंड है। हाँ हाँ बहुत ट्रेंड में है अभी वो हनुमान अंश का ना। गाइस देखो हम भले ही रेडियो वाले हैं लेकिन हर गाने की इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं होती। आपने गुनगुना दिया मुझे पता है आपको याद आ गया होगा क्योंकि आप ध्यान से सुन

0: सब सच में ये गाना सुन के मुझे बहुत आनंद आया। मैम से पूछते हैं, मैम को कैसा लगा? मैम आपको कैसा लगा?
1: बहुत मन पवित्र हो गया।
0: अरे वाह, इससे पहले मैम हमारा मन भी पवित्र था। आई डोंट नो मैम ने ऐसे बोला ना मन। एनीवेज गाइस, बैक टू पॉइंट, मस्ती मजाक चलती रहती है। लेकिन मैम आप ऐसे पहले डॉक्टर हो जिनके साथ हम इतनी मतलब इतने खुल के हम लोग बात कर पाते हैं, तो इतना फ्रेंडली माहौल आप कर देते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? आप पहले से इतने फ्रेंडली हो क्या?
1: या डॉक्टर से फ्रेंडली नहीं होगे तो कैसे बने के लिए? बट देन मुझे ऐसा लगता था जब भी वो सीरियल देखा था, संजीवनी।
0: हाँ संजीवनी,
1: exactly. देखा था ना, तो वो कब से प्रतिमा बनी हुई थी दिमाग में कि बनना है तो ऐसे ही बनना है कि दो लोगों को खुशी दे सको, दो लोगों से बात कर सको, आप किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सको, तब तो बनो,
0: कंट्रीब्यूट दे सको।
1: माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा ऐसा करना कि छाप छोड़ के जाना, ठीक है? तो शायद एम वहीं से, अपब्रिंगिंग वैसी ही है कि मुझसे कोई मिले तो कम से कम कुछ पॉजिटिव वाइब्स जरूर रहनी चाहिए। मुझे पेशेंट्स को भी, कभी पेशेंट कोई लूज हो जाता है बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी या किसी तरह भी, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दुख होता है। इट इज ओनली कि वो मुझसे मिलने आया और मैं नहीं मिल पाया।
0: वो बात में रिग्रेट सा फील होता है।
1: एग्जैक्टली,
0: समझ सकता हूँ मैम एक्चुअली। बट मुझे भी ये लगता है कि आप जब अपने मन से कोई चीज करते हो ना, तो वो 100% उसमें रिजल्ट भी अच्छा होता है। देखो काम की बातें भी हो रही हैं और मैम से थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है और आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन। बढ़िया इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे मैम।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है आपका। और अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है मैम, अगर एक बार सिजेरियन हो गया है तो क्या अगली बार भी सिजेरियन ही होगा, जैसे कि लोगों के मिथ होते हैं।
1: यस बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा इंस्टाग्राम इसी मैसेजेस से भरा रहता है कि मैम सिजेरियन को इतना साल हो गया, क्या अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, क्या सिजेरियन कराना चाहिए। देखिये, पहली बात तो अगर आपके दो ऑपरेशन हो चुके हैं या दो से ज्यादा हो चुके हैं तो ये तो एक टोटल इंडिकेशन है, इट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि दो सिजेरियन के ऊपर अगर हो चुके हैं तो तीसरा बेबी सिजेरियन से ही होगा।
0: ओके।
1: और यदि एक सिजेरियन हुआ है तो बहुत सारी फिजिबिलिटी डिसाइड करती है, जैसे कि आपका पिछला सिजेरियन से कितना टाइम है, मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए दो बेबी प्लानिंग, ठीक है। आपके टांकों की मोटाई कैसी है, यानी कि जो आपके सूचर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे हम लोग ट्रैक करते हैं वो कैसे हैं, प्लस आपका अभी जो बेबी है उसका वेट कैसा है, पेल्विक कंडीशंस कैसी हैं, पेल्विस मतलब यानी कि हड्डी का रास्ता कैसा है, ठीक है, वो सब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी। कोई कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है जो कि डिले करेगा आपका लेबर, ये सब फैक्टर्स ध्यान रख के। प्लस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहां हम सिजेरियन प्रीवियस सिजेरियन वाले को ट्रायल दे रहे हैं वहां पे सारी कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको फैसिलिटी नॉर्मल डिलीवरी की भी होनी चाहिए प्लस इमीडिएटली शिफ्टिंग टू सिजेरियन सेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कहानी सुनाती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका लगभग 1.5 साल का पुराना सेक्शन था, अभी ट्विन डिलीवरी थी, रास्ता इतना डायलेटेड था कि अब नॉर्मल डिलीवरी कराना मेरी मजबूरी थी क्योंकि पूरा रास्ता खुल चुका था, लेबर में ऑलरेडी पेशेंट थी, तो मैंने डिलीवर कराया और ट्विन तो पहला बेबी तो डिलीवर हो गया नॉर्मली, बट यस आई न्यू कि दिस इज अ हाई रिस्क केस, तो मैंने उनको ओटी में शिफ्ट कर दिया, अपने एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया, हमारे पीडियाट्रिशियन इन्फॉर्म। पहला बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद सडनली गश ऑफ ब्लड गया, यानी कि जो पुराना स्कार था वो रप्चर हो चुका था। That ways I took a decision immediately, क्योंकि हम ओटी में थे, अपने एनेस्थेटिस्ट को कॉल दिया, तुरंत पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया और तुरंत बेबी डिलीवर करा दिया, पीडियाट्रिशियन थे तो बेबी रिससिटेट हुआ, कुछ नहीं हुआ, मदर ऑल्सो सेव, बेबी ऑल्सो सेव। तो इसीलिए एक प्रॉपर सेटअप पे, ये नहीं कि यहाँ से सुन लिया कि भैया सिजेरियन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप एक किसी के पास भी जाके, बट यस अगर एक सेटअप वेल इक्विप्ड है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इक्विप्ड है तो थिंग्स आर पॉसिबल और बीच में गैप ठीक है।
0: ओके, सो आई होप लेडीज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रहती हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर जिनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छी जानकारी है, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता है, कई बार हमारी घर की बुजुर्ग का ये रूल है उन्होंने वही फॉलो कर लिया। तो आई होप गाइज आपको चीज समझ में आई हो। और डॉक्टर राशिका जी हमारे साथ मौजूद है, एंड मैम कौन से हॉस्पिटल में आप वर्किंग है एक बार प्लीज बता दें।
1: मैं हूँ एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: ओके, और मैम वैसे आपकी टाइमिंग क्या रहती है वहाँ पे मिलने की?
1: मैं 10 to 4 रहती हूँ, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट की पर्सनली सेइंग कोई टाइमिंग नहीं होती, ये ओपीडी टाइमिंग है,
0: मतलब आपको कभी भी जाना हो सकता है।
1: यस आई एम अ 24 hours अवेलेबल सर्वेंट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, क्योंकि
0: मतलब जैसे आपको कॉल आएगा, सपोज अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको अगर अनफॉर्चुनेटली कॉल आ गया
1: तो हम कल करेंगे, बाय आनंद,
0: बाय, ये बीच में हम खत्म कर देंगे। तो गाइस मैं जल्दी पूछ लेता हूँ,
1: पेशेंट्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट।
0: वाओ, ये मतलब आपके लिए है, ये आपकी प्रायोरिटी है ना, इसीलिए आपको इतना ज्यादा प्यार है। वो कहते हैं ना, जिस काम के लिए आपके अंदर से डेडिकेशन आए फिर आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट आप उनको देती हो, काम को देती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे एक क्वेश्चन और है आपसे, जिसे कई बार क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में उसका रिकवरी में कितना फर्क होता है, मतलब यू नो
1: सिजेरियन सेक्शन एक मेजर सर्जरी है ना, वो इंस्टा पे रील्स देखिए ना, 7 लेयर कटते हैं, एग्जैक्टली 7 लेयर कटते हैं,
0: ठीक है
1: ना, तो रिकवरी में समय तो लगेगा है ना। नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हम ज्यादा से ज्यादा एक एपिसियोटमी देते हैं जो एक हल्का सा कट होता है नीचे, ठीक है, तो रिकवरी ऑब्वियसली सी सेक्शन की लेट होती है और नॉर्मल डिलीवरी की हम नेक्स्ट डे ही चला के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं विद इन 48 आवर्स, बट सी सेक्शन में हम 3rd day या 4th day मोस्टली डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट भी थोड़ा डरा रहता है क्योंकि स्ट्रिचेस आए हैं और मेजर सर्जरी है, तो रिकवरी में तो समय है, मतलब समय डिफरेंस है।
0: ओके, ठीक है मैम। अच्छा मैम, सिजेरियन का जो सीन होता है वो क्या कभी रिस्की भी हो सकता है? ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है यार नहीं हम नहीं कराएंगे, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा?
1: सिजेरियन इज अ मेजर सर्जरी, ठीक है, रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, 100% ट्रेन्ड हैंड्स में भी रिस्क होता है,
0: ठीक है,
1: बिकॉज इट इज सर्जरी, बट रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ नाम से नॉर्मल है, बट पीपीएच आपकी एपिजियोटमी दी है उसमें इन्फेक्शन, तो ऐसे रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होते हैं, फीटल डिस्ट्रेस, बेबी को रिस्क, तो वो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो देयर आर रिस्क इन बोथ ऑफ देम।
0: ओके, और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार सिजेरियन तो कितना आसान डिलीवरी है?
1: सिजेरियन आसान बिल्कुल नहीं है। किसने कहा सिजेरियन आसान है? लोगों को लगता है कि लेडीज बचने के लिए सिजेरियन करा लेते हैं, दर्द नहीं झेलने हैं, बट हु सेड आप एक बार सिजेरियन, और मोस्टली ये सब जो होता है ये उन लोगों को लगता है जिसने ये सब नहीं झेला है। मतलब मैं किसी को काउंटरेक्ट नहीं कर रही, बट मेल्स को ऐसा लगता है बिकॉज दे हैव नेवर गॉन थ्रू दैट पेन, कभी उन्होंने मेंसेस का पेन नहीं झेला, हर मंथ मेंसेस आना, इट्स नॉट नॉर्मल, वी आर ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट, बेबी को रखना 9 मंथ की जर्नी, इट्स नॉट इजी। तो कैसे आप सिजेरियन को इजी कह रहे हैं? इट्स नॉट एट ऑल इजी, इट्स जस्ट अ ऑप्शन। मतलब 9 महीने उसने कितना सेक्रीफाइस किया आप सोच भी नहीं सकते, वो लेट भी नहीं पा रही है, वो खा भी नहीं पा रही है, उसको उल्टियां हो रही है, तो एक डिलीवरी का प्रोसेस अगर उन्होंने स्लो डाउन कर लिया तो आप उसे कह रहे हैं कि बहुत आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान बच्चा पैदा करना ही नहीं है आज की डेट में, बच्चा कंसीव करना भी आसान।
0: मैम हर चीज में बहुत एफर्ट्स लगती है, ये तो बात है, और कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है। और दोस्तों हमारा भी मेन मोटिव यही है कि एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे साथ डॉक्टर राशिका मैम मौजूद हैं, और आज सिजेरियन पे बहुत सारी बात हो रही है एंड बहुत जरूरी है। मैम आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे कंपैरिजन भी हैं और जो बहुत बहुत बहुत आसानी से लोग उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग चैलेंज देते हैं, कुछ लोग कुछ भी अड़गम सड़गम दिखाते हैं, लोग ठाक के यूज करने लग जाते हैं।
1: मेरी फ्रेंड की नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरी भी होनी चाहिए मैम, आपने ही कराई थी और आपको ही करानी है, यार ये कैसा चैलेंज है आप मुझे ये बताओ? चैलेंज ये होना चाहिए कि मैम बेबी और मदर मुझे सेफ चाहिए, आपके हैंड में आपने 9 महीने देखा है।
0: एग्जैक्टली
1: कॉम्पिटिशन तो यार कहीं नहीं है और कोई रेस नहीं लग रही, सबको अपना बच्चा इंडिविजुअल होता है, सबको अपना बच्चा हेल्दी चाहिए। सो इट इज ओनली कि भैया कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन से काम खराब ही होता है, जहां आप बच्चे कंपेयर करना शुरू करते हो वहां भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा अलग है, मेरे बच्चे में अलग क्वालिटीज है। सो एवरीबडी प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट, सबके इंडिकेशन अलग होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी इज नेचुरल प्रोसेस, हम चाहते हैं नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन ये कि उसका ऐसे हुआ था तो मेरा भी ऐसे होगा, प्लीज ये सब नहीं करें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहें, उससे कॉन्टेक्ट करें, जैसा भी है उसी से मतलब बात करें, एंड शी विल डिसाइड द बेस्ट फॉर यू।
0: ऑलराइट, बहुत ही अच्छे से मैम आपने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पे अवेयरनेस।
1: एग्जैक्टली,
0: क्योंकि सोशल मीडिया पे दिन भर में 100 तरह की रील्स आती है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही हो सकते हैं, उसके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ डाल दिया हो, तो सही जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक वो कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी खतरे की निशान।
1: यार उसने डिलीवरी नहीं करानी, उसने बस रील्स के व्यूज लेके मजे लेने
0: वही बात,
1: हमें डिलीवरी करानी है।
0: अच्छा आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं मैम, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इस तरह के लोग ने सोशल मीडिया पे देख के ये कर लिया, वो फिर आपने उसको समझाया और बाप ऐसे कैसे किया?
1: ऑब्वियसली यार मेरी अपनी ही रील देख के आते हैं कि मैम उसकी आपने नेल लाइकर पे नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, ठीक है मैंने अभी कराई है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था, तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी बिकॉज उसको पैनक्रियाटाइटिस थी उस पेशेंट को, उसके लिए सिजेरियन करना वाज लाइफ थ्रेटनिंग, तो उसके लेकिन रिस्क मैंने उसको एक्सप्लेन किए, मदर का रिस्क ज्यादा था तो वो सिचुएशन नहीं सुनते थे अपन पुराने जमाने में कि हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को,
0: टीवी सीरियल में देखा है बहुत बड़ी,
1: तो कुछ उतनी खतरनाक तो नहीं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम सिजेरियन करते तो बेबी के लिए बहुत रिस्क होता, तो हमने एक रिस्क लिया, उसके अटेंडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि बेबी को भी डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी को नर्सरी की जरूरत पड़ सकती है, इवन बेबी की मोर्टेलिटी भी हो सकती है, बट वो रिस्क उसने एक्सेप्ट किए, एंड ऊपर वाले का करम था कि कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन, मदर वाज फाइन, बेबी वाज फाइन, बट उसने इतना रिस्क लिया, और उस वक्त हमारे लिए मदर ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए नेल लाइकर नो लाइकर पे भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी कराई। बट अब कोई दूसरा पेशेंट एकदम वही रील देख के मेरे पास आ जाए कि मैम वो तो नेल लाइकर पे, इट इज नॉट पॉसिबल ना।
0: एब्सोल्युटली
1: आई वाज द वन हु डिलीवर्ड नॉर्मली, बट उस पेशेंट के लिए आई विल नॉट, कि अगर मदर हमें बेबी का रिस्क ले लिया कुछ हो जाता भगवान ना करता फिर हम ही लोग उसके लिए आंसरेबल होते ना। बट वो सिचुएशन अलग थी, तो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट।
0: गाइस मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं, और यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में, तो आप लोग प्लीज इसे सुनिए, और आपको कैसा लगे अपने फीडबैक डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम्स पे एंड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैम से हम और बातें करें तो आप वो भी हमें बता सकती है मैसेज करके, हम भी एक शाउट आउट आपको जरूर देते हैं, बिग शाउट आउट आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, और ये हर कोई नहीं करता है मैम, बट एक्चुअली इस टाइम ऐसा हो गया लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं आ पा रहे लोग नहीं मिल पा रहे, तो एटलीस्ट वो रील देख के उन्हें ये तो पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हम भी आपको बेस्ट विशेस देंगे, और ये बंद मत करिएगा, अभी तो हमारा टाइम है, तो जब तक तो शायद बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी है ना। सो बहुत अच्छी बात है मैम, वंस अगेन लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा
1: आई आल्सो फील वेरी नाइस, मतलब हमें मिल नहीं पाता है, बट मेरा मन अंदर से करता है कि हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज करें, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, लेडीज नहीं पूछ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, बट आपका रेडियो घर घर में जा रहा है.
0: Exactly.
1: करना कुछ नहीं है, एक बटन दबाना है
0: बस.
1: तो आज की शायद मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको अप, मतलब अपराइज करेंगी, कुछ ऐसी अंदर से बातें होंगी जो उन्हें नहीं समझ में आ रही होंगी कि यार ये मेरे साथ ही होता है क्या. तो मैं ये कहानी बता रही हूँ, ये हर घर की कहानी है क्योंकि ये मेरे चैम्बर में रोज. तो आई वॉन्ट टू टेल देम कि यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर, एवरीबडी इज देयर. तो हम एक दूसरे का सहारा बने तो ज्यादा बेहतर है. मैंने बहुत सुन लिया औरत औरत की दुश्मन होती है, बट मैं यहाँ दुश्मन नहीं बनना चाहती, मैं सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस सीनेटर, बहुत अच्छी बात है. और ये बहुत जरूरी है स्मिथ को दूर करना भी. लास्ट में आपने बहुत मुद्दे की बात बोल दी है. एंड गाइस फाइनली अब हम लेंगे आपसे इजाजत. मैम को किसी दिन बुलाएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे. डोंट वरी, मुझे पता है आप लोग मैम को बहुत अच्छे से जान चुके हो. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी दिन अलग से पॉडकास्ट करते हैं. कैसा

0: आपका जर्नी रहा ये अपना जो भी आपने किया अभी तक उस पर हम बात करेंगे उस पर वेरी नाइस उस पर हम ये आपका फिर कोई मतलब मैम गायनोकोलॉजिस्ट बन के
1: नहीं
0: राशि का बन के आएंगे सिर्फ अपनी आपने कैसे किया है अपनी लाइफ को ये
1: गायनोकोलॉजिस्ट छोड़ के आती हूँ
0: तो बहुत अच्छी बात है सो क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं तो मैम के पास इतना टाइम नहीं होता है बिकॉज शी इज वेरी बिजी और वो होना भी चाहिए भाई अपने काम पे ही फोकस होना चाहिए सो बट मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन और हम जल्दी मिलते हैं वेरी सून कुछ नया करते हैं एंड गाइज आप कहीं मत जाइए एक अच्छा सा गाना छोड़ के जा रहे हैं मैंने और मैम ने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है तो ये गाना आपके लिए लगा के जा रहे हैं और बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं मेरे से अगर कुछ पूछना है आपको आप आना चाहते हो स्टूडियो तो मोस्ट वेलकम है ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से मेरी आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से और बाकी मैम एक बार आप इंस्टा हैंडल बता दूं
1: मेरा नाम मेरे नाम से है
0: डॉक्टर राशिका गुप्ता मैं इनका एक रील शेयर करता हूं पिज्जे वाला बहुत हमने उसको आज हाईलाइट कर दिया है तो आप वो क्लिक करोगे तो मैम के अकाउंट पे पहुंच जाओगे बाकी के लिए प्लीज ऐसे ही कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो मैम मेरे साथ बोलो रेडियो बजाते रहिए
1: रेडियो बजाते रहिए
0: गुनगुनाते रहो
1: गुनगुनाते रहो गुनगुनाते रहो गुनगुनाते रहो
0: क्या बात है इन्होंने 3 बार बोल दिया चलो फिर मिलते हैं बाय गाइस थैंक यू

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल? तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

아시가나 아시가나 늘

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

अरे अरे हाय हाय, गुड वाली मॉर्निंग है जी, संडे मस्ती शो में और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है। आज खुशी जी तो नहीं आई है आप सभी के बीच, लेकिन आरजे रीना को मौका मिला तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाए। और समय की बात करूं तो 10:17 हो चुके हैं। अरे अरे उठ गए आप, अभी भी रजाई के अंदर ही रेडियो सुन रहे हैं, है ना? क्योंकि आज संडे है भाई, वो दिन जब अलार्म भी सोचता है आज मुझे बजना नहीं है, आज तो मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। सुबह सुबह चाय की खुशबू, घर में थोड़ा सा आराम का माहौल और दिमाग में बस एक ही सवाल, आज क्या करना है। कुछ लोगों का जवाब होता है आज तो बस आराम करना है, कुछ और

और कुछ देर घर में सुबह से ही अलार्म बज जाती है। चलो चलो उठो, छुट्टी का मतलब ये नहीं कि काम नहीं है, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा घर का। चाहे आप संडे की शुरुआत देखिए चाय के साथ करते हैं, या फिर नाश्ते के साथ करते हैं, या फिर अभी तक बिस्तर के साथ ही आपकी गहरी दोस्ती चल रही है, तो मैं कहती हूँ जी उठ जाइए। बिस्तर के साथ ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना वो हमें कुंभकर्ण बना देता है। इसीलिए जल्दी उठ जाना चाहिए, संडे हो या मंडे, उठो फिर सो जाओ, काम करो फिर सो जाओ, और फिर देखो आपको नींद भी कितनी मस्त वाली आती है ना, क्योंकि आपके साथ आपकी आर्जुरीना कनेक्ट हो गई है लेकर शो संडे मस्ती, जहां करेंगे ढेर सारी बातें, हंसी मजाक और गाने, संडे वाला होना चाहिए आज तो। तो आज मैं ये कहती हूँ उठ जाइए। अभी तक क्या बस उठना नहीं है आज? मम्मी बोल रही होंगी कि अरे उठ जाओ भाई, संडे है, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना तुम पूरा दिन सोते रहोगे। उठो, काम करो, नहाओ। बहुतों की सुबह 5 बजे ही हो गई थी और बहुतों की अभी भी सुबह नहीं हुई है कि बस अभी सोने दो, 1 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे आराम से, और जब लेट उठते हैं ना तो सारा काम डिले हो जाता है। तो अब हम आप सभी के साथ कनेक्ट हैं और करेंगे अब ढेर सारी बातें। फिलहाल हम साथ साथ हैं इस मूवी से आपको गाना सुनवाते हैं, बहुत ही शानदार वाला। आप ट्रैफिक में हैं तो बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिएगा, तभी आप आनंद ले पाएंगे इस गाने का।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: लाइम जूस आइसक्रीम पापड़िया पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ गुड़िया
1: खिलौने
0: मेरी सहेलिया अब मुझे लगता है सारी पहेलिया।
1: हेलो जी, गज वाली मॉर्निंग है आज। जुरीना के साथ आप कनेक्ट है संडे मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 10:00 यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं। और आज का डे है ना बहुत ही स्पेशल है, बहुत खास है। अब ये खास क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज मनाया जाता है एक बहुत ही खास डे। आपने कभी सोचा है घर में हम बोलकर अपनी बात समझा देते हैं, लेकिन जो जानवर वो अपनी बात कैसे समझा पाता है? तो आज उन्हीं का डे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जानवर भी हमारी तरह इस धरती का हिस्सा है, उन्हें भी प्यार, सुरक्षा और सम्मान की ज़रूरत है। अब चाहे घर में छुपा यानी कि आपके घर में पूंछ हिलाता हुआ डॉगी हो, या फिर छत पर घूमती हुई बिल्ली, सड़क किनारे बैठ गया हो, सड़क किनारे आप देखते हैं कि गाय बैठे होते हैं, पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है, हर जानवर की अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है, जैसे हम इंसानों की दुनिया होती है ना, जैसे हम बोलते हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता, उनकी भाषा अलग ही होती है। कभी आप शिद्दत से उनके पास बैठकर बात करेंगे ना तो बहुत प्यारे हैं। और जरा सोचिए, हम बोल नहीं पाते तो शायद अपने जानवर भी नहीं बता पाते, है ना? इसीलिए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी और हमारी बन जाती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, अपने दिल की बात नहीं बता पाते हैं, लेकिन इशारों से कुछ ना कुछ वो बोलते ज़रूर हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो चिल्लाते हैं, तो हमें जो उनका इशारा है वो समझना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। इनफैक्ट गलियों में देखा जाता है जो डॉगी हैं, किसी घर के बाहर भी जाते हैं तो उनको डंडे मारकर भगा देते हैं। उनको डंडे मारकर नहीं भगाना है, उनको आप एक रोटी दे दीजिए, वो खाने के लिए ही आते और कुछ नहीं कहते, क्योंकि कोई भी जानवर है जब तक आप उस पर अटैक नहीं करेंगे वो आप पर अटैक नहीं करते हैं। उनके साथ प्यार से रहिए तो देखिए वो भी क्योंकि इंसान से वफादार ज़्यादा जानवर होते हैं। जानवर को पता है कि अगर आप उसके लिए लॉयल है तो वो आपके लिए लॉयल ही रहेगा, वो कभी दगाबाज नहीं करता है। और मेरे पास मैसेज भी आए हैं, और ये मैसेज हमारे पास पहुंचाती है दीपाली जी। और इनका कहना है कि संडे वाले दिन, मैम सच बताऊँ तो वैसे तो मैं ऑफिस जाती हूँ, घर से बाहर भी रहती हूँ, तो बहुत तहटक हो जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में निकलना और शाम को 5 बजे आना, आके वैसे भी थक जाते हैं तो इतना काम डेली हो नहीं पाता है। लेकिन संडे का एक ऐसा दिन होता है मेरे पास जब मैं घर की पूरी साफ सफाई करती हूँ, अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। और इसी काम करने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है, और ये उनको ये टाइम आखिरकार ऐसा क्यों लगता है। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज आता है हमारे पास, और अब मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैसेज भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती है। नमस्ते रीना मैम, आप तो आकर हमारा दिल ही खुश कर दिया। ओ थैंक यू सो मच, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं? और मेरे को लगा कि संडे को मैं आ नहीं पाती हूँ, खुशी का डे होता है ये, तो मेरे को जब मौका मिला तो मैं सोचती हूँ कि आप सभी के साथ कनेक्ट हूँ। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना मैम गुड मॉर्निंग, और इनका कहना है कि गाने बहुत अच्छे बजा रहे हैं आप, तो मेरे भी पसंद का एक गाना बजा दीजिएगा, पंजाबी गाना है। डेफिनेटली जी, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे।

अमीर जी हमारे साथ लाइन पर मझोले से कनेक्ट होते हैं। और अमीर की बात करूँ तो हमारे साथ कनेक्ट होती है शाही खद्दर जिला मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग रीना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये भी गाना सुनना चाहती हैं, एक पल, पाकिस्तानी सीरियल का एक गाना है जो ये सुनना चाहती हैं। जी बिल्कुल, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। और इनका कहना है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए अगर आप अभी अब सही हो गया है सिस्टम, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो बताइए। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाल हसीन कोई ना। देखिए जी बिल्कुल, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे, लेकिन समय की बात करूँ तो 10:51

0: मिनट हो चुके हैं और राइट 11 बजे हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं डॉक्टर, जिससे हम बात करेंगे, वो भी आईज से रिलेटेड, क्योंकि आंखों की जो प्रॉब्लम है ना बढ़ती जा रही है. देखा जाए तो हम फ़ोन चलाते हैं और आंखों में रेड रेड सा हो जाता है, इचिंग होने लग जाता है. तो आखिरकार ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. और आपके पास अगर आपका भी मन में कोई आपके सवाल है आईज से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. और क्योंकि आँख हमारी ज़िंदगी से भी ज़िंदगी है, क्योंकि आँख के बिना कुछ भी नहीं है. और आँख सुरक्षित है तो हर चीज़ आप देख पाएंगे, दुनिया की खूबसूरती चीज़ें. अदरवाइज़ अब आँखें ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे. और आँखों के साथ कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए. आपको ईचिंग हो रहा है या फिर जलन हो रही है, और ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ाने से भी आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है. और स्क्रीनिंग टाइमिंग है उसको थोड़ा सा आपने कम करना है. फ़िलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ. ठीक है जी.
1: बेबे सिंधा ना रोज स्कूटर ते आउंदा, मैं भी आज कल जनों स्कूटर ले जा.
2: तेनू पता ही है तेरे बापू जिस बादा जाके आप कल कर ले.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
5: आपकी मोबाइल पर उनका फोन आया था कि वो नहीं है।

0: मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं संडे मस्ती शो आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूं तो 11:04 हो चुकी हैं और आज हमारे साथ सर कनेक्ट होने वाले हैं, जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें, यानी कि आंखों से रिलेटेड जो भी परेशानी है उसके बारे में जो भी डाउट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो सर से बस अब थोड़ी देर में ही कनेक्ट होंगे। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप?
1: मैं बढ़िया हूँ।
0: सर तो आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को जरा बताइए। सर
1: मैं डॉक्टर विराग श्रीवास्तव हूँ।
0: जी सर।
1: मैं बॉम्बे हॉस्पिटल सिविल लाइंस पर काम कर रहा हूँ उस समय एज ए डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट।
0: ओके ओके सर। तो सर हम यानी कि आप बात करते हैं, यानी कि मेन टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि आंखों की सेहत को लेकर आज सबसे बड़ी चिंता क्या देखने को मिल रही है?
1: देखिए आंख जो है ना खुद अपना काम करती, बॉडी अपना खुद काम करती है, आंखों की सेहत अपनी खुद मेंटेन करती है, तो उसको आप खराब ना करें, है ना?
0: जी जी सर।
1: मेन चीज ये है कि आप बहुत स्क्रीन टाइम है आपका।
0: जी सर।
1: उसको रिड्यूस नहीं करता आपका, तो मैंने पहले भी आपको इसको बताया था एफएम पे।
0: जी जी जी जी।
1: 20-20-20 का फॉर्मूले यूज करें, मतलब 20 मिनट देखने के बाद 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर आप देखिए मतलब।
0: ओके सर। सर तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए अक्टूबर का महीना चल रहा है और मोस्टली ये कहा जाता है कि अक्टूबर के महीने में आंखों की सर्जरी क्यों करवानी चाहिए?
1: नहीं नहीं ये बहुत बड़ा मिथ है आंख की सर्जरी। अब आप आज के डेट में जब सारी चीज चेंज हो चुकी है तो आंख की सर्जरी आप कभी भी करा सकते हैं, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बहुत बड़ा मिथ है, दैट शुड बी बस्टेड।
0: ओके ओके सर।
1: कभी भी आप सर्जरी करा सकते हैं, अक्टूबर से जरूरत नहीं है, आप मई जून जुलाई में भी करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
0: मतलब एनी मौसम में वो अपने आंखों के ऑपरेशन करवा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल
0: सर। और आजकल देखा जाए तो पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ भी गया है, जिससे आंखों में लालीपन शुरू हो जाता है, इचिंग होने लग जाती है, ऊपर से स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो सिंपली एक लुब्रिकेंट डालते रहे, लुब्रिकेंट ड्रॉप आती है कार्बन मोनोऑक्साइड या बहुत सारी, तो एक बूंद सुबह एक बूंद शाम में डालते रहो, उससे कोई नुकसान नहीं है और वो आपको आराम मिलेगा।
0: सर जो कभी कभी हम देखते भी हैं कि जिनकी आंखों में इचिंग होती है वो बिना डॉक्टर के सलाह लिए बिना खुद जाके ड्रॉप ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से और खुद अपने आंखों में डालने लग जाते
1: हैं। आग्रह है कि उसमें स्टेरॉइड ना डालें, स्टेरॉइड से आराम बहुत तेज मिलता है लेकिन कई बार बहुत जो इफेक्ट होते हैं उसके ना साइड इफेक्ट होते हैं ना बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो स्टेरॉइड ना डालें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे।
0: ओके सर। तो सर हम आगे जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आंखों की समस्या जांच में कौन कौन से टेस्ट है जो सबसे पहले करवाने चाहिए हमें?
1: पहले तो आप विजन देखो कितना आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। उसके बाद आप अगर आई सर्जन के पास जाते हैं तो वो कुछ चेक करेंगे, पूरे आगे से पीछे कितने लेयर्स होती है आपकी, सब चेक करेंगे, अगर सब ठीक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
0: ओके सर।
1: कहीं प्रॉब्लम निकलती है तो उसके डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन करूंगी।
0: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, सफेद मोतियाबिंद वास्तव में क्या होता है, इसके लक्षण कैसे पहचान सकते हैं?
1: जी सफेद मोतियाबिंद क्या होता है कि जो आपका अंदर का लेंस होता है वो धीरे धीरे वाइट होने लगता है एज के साथ, ये कई बार जल्दी भी वो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, तो वो वाइट होता है तो उसमें कोई सिम्टम नहीं होती, केवल आपको धुंधला लगने लगता है। आप चश्मा लगाओगे, चश्मा टेस्ट कराया आपने तो उसके बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं आती है,
0: हाँ जी, हाँ जी सर,
1: एक भल्ला बन सा जैसे कोहरा आपके सामने ना वैसा दिखता है आपको।
0: सर क्या धुंधला दिखाई देना मोतियाबिंद का ही संकेत होता है?
1: नहीं नहीं किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन मोतियाबिंद की बल धुंधला दिखाई तो भाई कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई रेटनस नहीं, कुछ नहीं होगा, धुंधलापन तो और चीज भी हो सकता है।
0: ओके सर, क्या मोतियाबिंद को दवाई या चश्मे से रोकना या ठीक किया जा सकता है सर?
1: नहीं नहीं नॉट पॉसिबल।
0: तो इसके लिए मतलब
1: ऑपरेशन होकर उसमें लेंस पड़ेगा, यही ट्रीटमेंट है, कोई दवाई उसमें कोई कुछ नहीं काम करेगा।
0: ओके सर, हमारे पास एक लिसनर का मैसेज आता है जो कि मुरादाबाद से ही है। इनका कहना है कि क्या आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना टाके के भी किया जा सकता है?
1: हाँ बिना टाके के होता है, ऑप्शन ही बहुत समस्या होता है।
0: और ये कितने सुरक्षित है सर, ये जो ऑपरेशन हम करवाते हैं बिना टाके वाले? तो
1: मोर देन 99.9%।
0: ओके, मतलब प्रोसेस इसमें शुरू होकर लेंस लगाए जाते हैं
1: जी जी।
0: और क्या सर हर मरीज को एक ही टाइप के लेंस लगाया जा सकता है?
1: नहीं नहीं डिपेंड करता है कि मरीज की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से डिसाइड होता है।
0: और इसको मतलब मोस्टली सर ठीक होने में कितना समय लगता है?
1: कुछ नहीं, नेक्स्ट से सारा काम कर सकते हो।
0: ओके,
1: एक हफ्ते का वो होता है कि आँख पे गर्गी नहीं आ रही, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो पानी डालेंगे आपको और वो कपड़ा रुमाल कुछ ही लगाएंगे, एक हफ्ते का ये।

0: तो बाकी डेस्क जैसे सारा काम कर सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर काम कर सकते हैं
1: सर, सर मुझे कंप्यूटर से क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है क्योंकि आज के टाइम में स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो भी कुछ काम करो तो बिना फ़ोन लैपटॉप के आप काम कर नहीं सकते हो, तो जिसकी वजह से आँखों में भारीपन, जो आँखों के पास की जो नसें होती है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
0: मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो फार्मूला जो हमारे 2022 वाले यूज करें आप, और दूसरा एक लुब्रिकेंट यूज करें आप, दो सुबह शाम डालते रहें, दैट्स ओके फॉर यू फॉर एनीवन।
1: और जो छोटे छोटे बच्चों की समस्या इस टाइम बहुत ज्यादा हो रही है सर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए बच्चों को अगर प्रॉब्लम लगती है तो उनको अनदेखा मत करें आप, उनको लाके चेक कराएं, और जब तक प्रॉपर चेक नहीं होगा तो पता नहीं लगता कि बच्चे जो है ना 2-3-4 नंबर तक भी होगा ना तो भी वो मैनिपुलेट करके देख लेते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: अगर आपको दिख लग रहा है सिर में दर्द हो रहा है, आँख बंद करके देखते हैं वो कुछ करते हैं, तो आप तुरंत लाके चेक कराएं, तो उसका प्रॉपर डिस्कशन होगा तभी पता चलेगा कुछ इसमें लगना नहीं लगना है, क्या है, क्या दिक्कत है।
1: तो सर सर के दर्द से आंखों का कोई रिलेशन होता है सर?
0: हाँ बिल्कुल होता है, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो हो सकता है आंख वीक हो, आपके सिर दर्द हो रहा है, आप लगातार उस पे स्ट्रेन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो दर्द हो सकता है।
1: ओके ओके सर। तो सर दिवाली के अभी बस कुछ ही दिन में दिवाली नवंबर में शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम जो पटाखों के धुएं है उससे आंखों पर एक अलग ही इफेक्ट होता है, तो उसके लिए जो आम हम नागरिक है मतलब खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं?
0: देखिए धुआं होता है उसमें आंख पे लगेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है जो पटाखे जला रहे हैं तो आप एक चश्मा लगा रहे, क्लियर?
1: जी जी
0: जी, मतलब पटाखा चले भी तो आंख पे जाए तो कम से कम चश्मे टकराएगा, आंख से नहीं टकराएगा, ठीक है
1: जी सर।
0: दूसरा मैं एडवाइस करूंगा, जब आप पटाखे चला रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो पानी की बाल्टी या जो फायर वाला इक्विपमेंट नहीं है आपके तो पानी की बाल्टी रखते हैं आप कम से कम, जिससे मतलब अगर आग लगती है कुछ होता है तो आप तुरंत बुझा सके, उसको अपने आप को सेफ कर सके।
1: ओके सर, अगर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक लिसनर का मैसेज आया हमारे पास, इनका कहना है कि दिन में तो मैं फिर भी मेरी ठीक रहती हैं आंखें, लेकिन जब मैं रात को सोता हूँ तो सुबह तक जो मेरी आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है और मतलब पिल्लो भी गीला हो जाता है सर,
0: तो उसके लिए तो कंसल्ट करना पड़ेगा किसी डॉक्टर से, क्योंकि समस्या बिना देखे नहीं बता सकती क्या रीजन है उस पर, उसको देख के पता चलेगा।
1: ओके सर, तो अभी आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर सभी श्रोताओं को?
0: बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आंखें अपनी और शरीर जो है ना वो स्वयं सुरक्षा करता अपनी।
1: जी सर,
0: द बेस्ट मशीन है जो ऊपर वाले ने बनाई है, उससे ऊपर कोई मशीन नहीं है।
1: ओके सर,
0: तो आप कुछ ना करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंसल्ट करें, और अननेसेसरी कोई ड्रॉप डालने की, कोई दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है
1: सर। अगर आप
0: आंखें खुद अपनी सुरक्षा करती हैं।
1: जी जी जी सर, और सर आंखें हैं तभी दुनिया की खूबसूरती चीजें भी हम देख पाते हैं।
0: हाँ, तो उस पर अननेसेसरी कुछ नहीं डालें, अगर कोई दिक्कत नहीं तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कोई दवा नहीं।
1: सर अगर कोई आपसे आपके पास आना चाहे, आपके हॉस्पिटल में आना चाहे, तो कैसे कहाँ पर आ सकते हैं सर?
0: मैं भव्य हॉस्पिटल है, सिविल लाइन्स वगैरह दयानंद मेडिकल के सामने, वहाँ आ सकते हैं।
1: ओके सर, थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू।
1: तो चलिए श्रोताओं, हमने सर से बात करी है और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है आँखों से रिलेटेड, ईचिंग होती है, स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने खुद आपको डॉक्टर नहीं बनना है, खुद ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर देना है। कि आजकल देख आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर देखते हैं हम, इंस्टा रील्स देखते हैं, जो दवाइयाँ बता दी जाती है वो हम डालने लग जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर इस प्रकार से कोई ईचिंग या आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वहाँ पर जाए, आप अच्छे से चेकअप करवाएं और उसके बाद ही जो प्रिपरेशन है बाद का वो शुरू करें। क्योंकि मुझे लगता है कि आँखों से खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप आँखों से खिलवाड़ करते हो तो बहुत से दिक्कतें आगे चलकर बहुत परेशानियां हो जाती हैं। इसीलिए आँखों से हमें कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको परेशानी दिक्कत लग रही है तो सीधा आपने डॉक्टर से कनेक्ट होना है। भव्य हॉस्पिटल आप जा सकते हैं, डॉक्टर विराग श्रीवास्तव से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे अपना चेकअप करवा सकते हैं। और जैसा कि सर ने बोला ही है कि ऑपरेशन कराने के लिए कोई मंथ या टाइम पीरियड का कोई समय नहीं होता है। आपको लग रहा है कि आपको आंखों के ऑपरेशन कराना है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपनी आंखों के जो ऑपरेशन है कभी भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन खासकर ये भी कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम नहीं करानी चाहिए, क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हर टाइम इंसान कोई एसी में भी नहीं रह सकता, किसी को एसी सूट भी सूटेबल नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पूरी जानकारी हॉस्पिटल में जाकर मिलेगी। और जितना हो सके स्क्रीनिंग टाइमिंग अपना कम करिए और बच्चों को भी फ़ोन मत दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या होता है ना कि हम काम में बिज़ी रहते हैं, मम्मी कुछ काम कर रही हैं तो बच्चों को फ़ोन दे देती हैं कि बच्चा कार्टून देख रहा है, गेम खेल रहा है, तो उसे जो मतलब मेरा जो समय है या मैं काम करने में यूटिलाइज कर लूँगी, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को हैबिट डाल रहे हैं उस चीज़ का कि आप मतलब ये है ना कि वो फ़ोन आप उनको खुद हैबिट डलवा रहे हैं। जब वो हैबिट डल जाता है तो वो फ़ोन से दूर नहीं हो पाते हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले के टाइम में काम बहुत ज़्यादा होते थे, इतने फ़ोन नहीं थे, तभी भी मैं मम्मी जो होती थी घर का सारा काम कर लेती थी बच्चे के साथ साथ, तो वो फ़ोन नहीं देती थी। तो इसीलिए आपको भी अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देना है। छोटा मोटा आप गेम खिलवा सकते हैं उनको, टॉयज़ वगैरह दे सकते हैं, जो भी उनको पसंद है आप वो दीजिए उनको, ताकि वो खुद एक्टिविटी करे, फ़ोन से दूर रहे, यानी कि फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, फोन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना फोन देखेंगे और बच्चों की आंखें, बच्चों की बॉडी वैसे भी सेंसिटिव होती हैं, जो उस चीज़ को बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेती हैं, यानी कि बहुत जल्दी उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इसका इफ़ेक्ट ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है और खुद का भी जो स्क्रीनिंग टाइमिंग है उसको कम करना है, क्योंकि हम खुद भी स्क्रीनिंग टाइमिंग कम नहीं करते हैं ना, हम भी तो लगे रहते हैं फ़ोन में। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और यूँ ही सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक और हम प्यारा सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है जी, बस आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहना है संडे मस्ती शो में, यानी कि आज संडे है और आई नो कि बहुत से काम में बिजी भी होंगे और बहुत से बस थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ओहो काम कर लिया, रिलैक्स कर लेते हैं, मम्मी मुझे देख तो नहीं रही। अगर मम्मी ने देख लिया भैया तो एक मिनट के अंदर आवाज़ लगा लेंगी और कहेंगी अच्छा बेटा तुमने काम ख़त्म नहीं करा तो कर लो। फिलहाल मैसेज की बात करूँ तो गुलाम जिलानी जी पासा कुंदरकी से कनेक्ट हो गए हैं और गाना सुनना चाहते मेरी ज़िंदगी है तू। ओके सर, मेरी ज़िंदगी है तू, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनवाती हूँ मैं आपको।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42

जुबिन नौटियाल की आवाज में, नितिन जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, मेरी जिंदगी है। कुछ गाने वाकई में बहुत ही शानदार होते हैं और आपको गुड वाली मॉर्निंग है जी। संडे मस्ती शो में और समय की बात को तो 11:31 हो चुके हैं और आई नो कि आप सभी ने ब्रेकफास्ट तो आप सभी का हो ही गया होगा, बस लंच की तैयारी भी 1 से शुरू होने लग जाएंगी, है ना। लेकिन बाहर धूप भैया बहुत ही कड़ाके वाली है, यानी कि टेम्परेचर की बात करूँ तो कल भैया बहुत ज़्यादा गर्मी थी, साथ ही साथ आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, यानी कि 31 सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि 32 तक पहुँचने वाली है। तो गर्मी तो ताबड़तोड़ वाली पड़ने वाली भैया, देखते जाइए, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तो हम ये कह रहे थे ना कि ओहो ठंड शुरू हो गई है, लेकिन अभी नहीं, ये मौसम है, कभी भी अपना रुख बदल सकती है, तो इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखें। और कल की अगर बात की जाए ODI मैच का, यानी कि वेस्ट इंडीज के साथ फाइनल मैच था, जिसमें भले ही वेस्ट इंडीज 5 से जीत गई और हमारी कल इंडिया टीम है वो तीसरे मैच में हार गई थी, लेकिन बैक टू बैक

दो मैच जीतने के बाद तो ट्रॉफी हमारी इंडिया वालों के हाथ में ही आई है भैया। आप देखिए, 3 मैच हुए और एक आप जीत, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ट्रॉफी लेकर चले जाएंगे। ट्रॉफी तो वो हमारी होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 मैच जीत ली है। और इस सीरीज के बल्लेबाज हुए यानी कि धुरंधर हुए हमारी टीम इंडिया। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और कल का जो मैच, जो 5 विकेट से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, खैर कुछ नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि मैच को बहुत अच्छे से राहुल जी ने यानी कि संभाला था। और यानी कि 8वें नंबर पर बल्लेबाज ये पहुंच गए हैं, 10,000 रन पूरे अपने कर चुके हैं। और इसी के साथ आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज हैं, अनमोल जी हमारे साथ कनेक्ट हैं और आखिर फिल्म से ये गाना सुनना चाहते हैं। ओके जी, बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको आखिर फिल्म से ये गाना। और अगले मैसेज की बात करूँ तो आरजे रीना जी, आरजे रीना सिस्टर जी, अजीत कसाना जी कनेक्ट होती हैं, माया देवी ऋतिक और आदित्य कशाना लदावली जिला मुरादाबाद से।

अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छी होंगी। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और इनका कहना है कि ये रामपुर से कनेक्ट होते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद आता है, प्लीज एक गाना सुनवा दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे कि इस गाने को सुनवा दिया जाए, आप तक इस गाने को पहुंचा दिया जाए। सो हम ये गाना आपको डेफिनेटली सुनवाने वाले हैं। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं रूपाली जी, और इनका कहना है कि आपने पूछा था कि संडे वाले दिन आप क्या करते हैं। तो मैम सच बताऊं, संडे वाले दिन ना, वैसे मम्मी कुछ कहे ना कहे, लेकिन संडे वाले दिन ही उनको पता नहीं, घर की पूरी सफाई की मैनेजर बन जाती हैं और कहती है बेटा ये लो झाड़ू और घर की सारी सफाई कर दो। हाँ ये तो होता ही है जी, बिल्कुल सही आपकी मम्मी कहती हैं। और आलोक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बनारस से, और इनका कहना है कि मैं एक्चुअली रहने वाला तो हूँ लखनऊ का, बट राइट नाउ अभी बनारस में हूँ और यहाँ पे मैं कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ, जो कि 8 मंथ हो गए हैं मेरे को। तो सच बताऊँ तो बड़ा हैटक हो जाता है संडे का दिन, और संडे को मतलब पूरी सफाई और खुद हर चीज़ मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यार लड़के होते हैं धुरंधर बाजीगर, तो आप काम करिए। और सच बताऊँ लड़कों के लिए दिल से सैल्यूट निकलता है कि भाई वो घर भी संभालते हैं और बाहर का काम भी करते हैं, हर चीज़ मतलब अपने लिए करते तो करते क्या है, कुछ भी नहीं, हर चीज़ तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, हर काम पूरी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं। तो लड़कों को तो दिल से सैल्यूट है, सभी को, सभी मैन को, सच में कि आपसे बड़ा दिल किसी के नहीं हो सकता, सच बता रहे हैं। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, हरियाणवी ट्रैक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ।

क्या बात है जी, अलका याग्निक जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। और फिलहाल अर्जुनीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है संडे मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 11:43 हो चुके हैं और अब हम अपने सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। और आज संडे का दिन है और वाकई में आप सभी के भी मैसेज आ रहे हैं कि नीना जी आप आज संडे को ड्यूटी कर रही हैं। जी बिल्कुल, आना पड़ जाता है कभी कभी आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए। मतलब मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि चौका लगा देनी चाहिए, तो हमने सोचा कि चलिए हम भी आ जाते हैं आप सभी के बीच, आज कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर हम संडे को हमारी छुट्टी होती है लेकिन एक्चुअली खुशी को थोड़ा काम आ गया, वो 3 बजे आप सभी के साथ ज़रूर कनेक्ट होंगी और फिर आप सभी से ढेर सारी बातें करेंगी। फिलहाल आप अर्जुनीना के साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें करते रहिए। फिलहाल आज बहुतों की छुट्टियां भी हैं और बहुत प्लानिंग भी बना रहे होंगे मूवी देखने जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, क्योंकि एक संडे का दिन होता है कि फैमिली वालों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में कहीं घूमने जाते हैं और बैठ के एक साथ डिनर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, तो एक अलग ही प्यार की अनुभूति, एक अलग ही सुकून मिलता है। सो फिलहाल राइट नो तो अब अभी अर्जुनीना के साथ कनेक्ट है और समय की बात करूँ तो 11:44 भी हो गए हैं। तो बस आप सभी से यही कहना चाहेंगे, अगर आप ऑन द वे हैं तो संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे वेनसडे हो, बस आपने एक ही बात ध्यान रखना है कि ट्रैफिक में रहे तो हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें करना भी चाहिए।

0: और एक बहुत प्यारी कहावत है ना, घोंसलों में बैठकर पंख मजबूत नहीं होते, घोंसलों में बैठकर पंख मजबूत नहीं होते, हवाओं से टकराना भी जरूरी है। इसीलिए बस बैठ के ये मत सोचते रहिए कि आज संडे है तो कुछ काम ही नहीं करेंगे और यूं ही बैठे रहेंगे। अगर कल को आपको जीतना है तो आज भी आपको परिश्रम उतना ही करना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में संडे तो कभी होता ही नहीं है। जब आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होता है ना, तो हर दिन उस घोंसले से आपको उड़ना पड़ता है और आसमां से टकराना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। चलिए, फिलहाल आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। सो मैसेज की बात करूं तो हाय दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। अफरोज फातिमा कनेक्ट होती हैं और ये गाना सुनना चाहती हैं, बहुत प्यारा गाना है। सो इस गाने को हम डेफिनेटली सुनवाने वाले हैं। आशिकी मूवी से ये गाना सुनना चाहती हैं, तो मैं आपको ये गाना ज़रूर सुनवाऊँगी। बस यूं ही आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए। और अगले मैसेज की बात करूं तो, और ये गाना अपनी बेस्ट फ्रेंड लाइबा से, लाइबा है और सबनम जी हैं रामपुर से। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद सैयद शाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारी कली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग रीना, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? संडे मॉर्निंग मस्ती शो में सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ ये गाना सुनना चाहते हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, अह क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना जी ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, अंसार हुसैन दौलत बाग मुरादाबाद से। ओल्ड गाना सुनना चाहते हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम रीना जी, गुड मॉर्निंग रीना जी, संडे में भी ड्यूटी कर रही हैं आप जी? बिल्कुल, हम आ गए हैं। और ये चंदोसी में, अच्छा ये आज चंदोसी में है, दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से, लेकिन आज ये चंदोसी गए हुए हैं। और साथ ही साथ ही गाना सुनना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दी। चलिए जी, बिल्कुल आपको डेफिनेटली गाना सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक और आशिकी टू मूवी से एक गाना सुनते हैं।
1: नहीं होगा।
2: Okay, listen, I'll show you. It's in B flat.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। सही बात है, अगर आपके साथ विद फैमिली के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ हो और हंसी मजाक में सफ़र का पता नहीं चलता है कि आपका सफ़र कब एकदम पहुंच जाते हैं आप अपने मंजिल तक, और बस दिमाग में यही रहता है कि बस यार थोड़ा और एक साथ रह लेते, थोड़ी देर और एक साथ रह लेते तो और भी कितना अच्छा रहता। तो वही है, सब कुछ अपने ऊपर है, अपने ज़ुबान के ऊपर है। आप अच्छे से रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, चेहरे पर मुस्कान लेके अगर बात करेंगे ना, तो हर कोई आपका है, अदरवाइज़ आपका भी होकर भी कोई अपना नहीं है। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है आपने। और अब मैं लूँगी यहाँ से जाने की इजाज़त। हम मिलेंगे यानी कि मंडे को मिलने वाले हैं इवनिंग मस्ती शो में, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ जी। अपना ध्यान रखिए, टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। और मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे पास मैसेज आता है, हेलो गुड मॉर्निंग विद्धि, बिहार से अजय सिंह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। क्या बात है जी, चलिए फिलहाल बाय अपना।

0: रही भरोस।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास अतिथि डॉक्टर ए के सिंह, ये जंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक है। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार, और स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार दिव्या जी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको नमस्कार।
1: सर हमारे साथ आज शामिल है कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम का जो खास विषय है वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम कार्यक्रम में जो खास बातें करने जा रहे हैं वो है खरीफ का समापन व रबी का आरंभ। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हम दो तरह के क्रॉप प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप। बच्चों को पढ़ाते समय तो हमने भी कई बार रट्टा लगाया कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, किन तरह के फसलों को हम लगाते हैं, और ये हमसे ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर जानते होंगे। और आने वाले समय में ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो अब खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या खेती किसानी बेहतर करना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारी हो सकती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम के से पहले कुछ अहम जानकारी के साथ। सर से बातचीत जब हो रही थी तो फिर सर ने हमें PMKSK योजना के बारे में बताया था, जो केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय की ओर से ये पॉलिसी चलाई जा रही है किसान भाई और किसान बहनों के बेहतर खेती किसानी प्रक्रिया के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस योजना के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, के बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रियाएं हैं, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाएं। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: इसी के साथ हम कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास मैसेज को, जो उन्होंने उर्वरक उपयोग सलाह के बारे में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की है। चलिए उसे सुनते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारी आज के विषय पर चर्चा के साथ।
2: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक है और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
3: जी बिल्कुल।
4: मैं किसान

0: भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और आज के कार्यक्रम का खास विषय है खरीफ का समापन और रबी का आरंभ। तो सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के स्कूल बुक्स के बारे में चर्चा की थी हमने, कि किस तरीके से बच्चों को पहले रट्टा लगाया जाता था क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लांटेशन के बारे में, खरीफ रबी फसलों के बारे में। तो ये खरीफ फसल के समापन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, समापन होता क्या है?
2: बिल्कुल, जैसे अभी जो सीजन चल रहा है हमारा वो खरीफ का चल रहा है
1: जी।
2: खरीफ मतलब ये है कि जो फसलें हमने जून जुलाई में लगाई थी वो हमारे पकाव की तरफ आ रही है धीरे धीरे, और वो सितंबर का आखिर हम मान लें या अक्टूबर में मान लें या ज्यादा ज्यादा नवंबर के पहले सप्ताह तक उनकी कटाई होती है। कटाई का मतलब ये है कि जो उनकी उपज है वो तैयार हो जाती है, अनाज पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको अपने घर लाते हैं, फिर आगे उसके विक्रय का प्रबंध करते हैं या जो उपयोग के लिए उसको हम रखते हैं। अब उससे तात्पर्य ये है कि हमने सारा चार महीने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर जब हमें उपज लेके आनी है उस समय अगर हमारी सावधानी नहीं रही, उसका समापन अगर हमने अच्छे से नहीं किया, तो जो हमारा अहम उद्देश्य था वो हमारा, उससे हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो समापन का अर्थ से मेरा यही है कि हम सारी क्रियाओं को सोच समझकर और एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग से अर्थ मेरा ये है कि हम ये देखें कि भाई इस समय पर हमारी फसल तैयार होगी तो इसको काटने के लिए मुझे क्या क्या संसाधन चाहिए
1: जी।
2: क्या क्या संसाधन से अर्थ ये है कि कटाई की व्यवस्था करनी है, लेबर चाहिए या कंबाइन से कराना है, जो भी कुछ है। फिर जब वो कटाई होगी तो वो आगे का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज तो मतलब ये है कि फिर उसके विक्रय से संबंधित है कि अगर उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। तो ये सारी तैयारियां अगर हम एडवांस में करते हैं, जैसे कि हमें होता है ना कि हमारा बच्चे ने अब आठवीं कर ली, अब इसकी हाई स्कूल में एडमिशन होना है, इसका नाइन्थ में एडमिशन होना है, गांव में स्कूल हमारा आठवीं तक है, तो हम तैयारी करते हैं कौन से स्कूल में इसको भेजना है, कौन सा पास है, अगर दूर है तो वो यहाँ से रोज जाएगा तो कैसे जाएगा, या साइकिल लेनी पड़ेगी या यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाएगा, वहां से उसको कोई सवारी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारे पास है या खरीदनी है, या अगर वो किसी और साधन से जाता है तो उसका किराया लगेगा, उसका कितना खर्चा होगा महीने का, सुबह जाएगा शाम तक रहेगा, क्या वो खाना लेके जाएगा, सुबह उसके लिए भोजन बना दिया जाएगा, इतने बजे लौट के आएगा, तो ये सारी व्यवस्था है। उस स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ये सब तैयारियां हम एडवांस में सोच के रखते हैं। और अगर वो हमें चीजें चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या रेट होगा उसका, है ना, ये जो तैयारियां है वो हर जीवन के हर जो मतलब पहलू के साथ है। तो एक जो समापन की तैयारी, समापन में ये है कि भाई अब जैसे ये आठवां कर लिया है तो अब ये आठवां इसका होने वाला है, कितने नंबर इसको चाहिए, कैसा क्या चाहिए
1: जी।
2: आगे के लिए इसने क्या सोचा है, तो ये समापन की होगी, फिर उसके बाद हम आगे आगे।
1: तो जिस तरीके से हम रबी क्रॉप्स और खरीफ ये जो फसल है इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक तो जिस तरीके के फसल उगाते हैं उसमें हमें फर्क देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप जिन तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं उन तैयारियों में भी फर्क होगा। तो क्या उस हिसाब से हम मिट्टी को तैयार करते हैं या फिर फसल हिसाब से बीज लेकर आते हैं या फिर मौसम का उसमें कोई असर देखने को मिलता है?
2: जैसे कि अभी जैसे खरीफ, तो खरीफ का तो समापन है
1: जी।
2: समापन से अर्थ ये है कि हमें उपज अपने घर लानी, तो इसमें तो कोई आगे के लिए हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन जो अब तक हमने व्यवस्था करी थी उसका जो मतलब परिणाम है वो हमें लाना है
1: जी।
2: अब उसमें मेन चीज क्या है कि जैसे हमें कटाई करनी है तो कटाई के साधन हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कटाई शुरू करी बीच तक हमारे साधन रहे उसके बाद फिर लेबर नहीं मिली या कंबाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई, मतलब एक साथ हमारे काम होते चले जाए और एक बार में वो चीजें फ्लोलेसली जो मतलब जो निवट जाए, उसके लिए आपको लेगर को आगे से बोलना है, उसके लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए या कंबाइन को कहना है तो कंबाइन वाले को तय करने के लिए, क्योंकि उसके पास सभी लोग आ रहे होंगे तो उसको तय करने के लिए कुछ एडवांस देना है, कितना देना है, क्या रेट जो करना है, आपने अपनी तरफ से बोली डेट, वो कुछ और डेट आपको चाहता है देना, वो समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप कटाई करके उपज लेके आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि वहां से आपने काटा और सीधा मंडी ले गए
1: जी।
2: तो साधारण है, आपने काटा ट्रॉली में डाला मंडी ले गए, मंडी में आपने उसको बेच दिया। मंडी में बेचना है तो उस समय पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच के आ सकते हैं, एक दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में उतार चढ़ाव है तो जो आप ट्रॉलियों से उससे लेके जा रहे हैं उसको त्रिपाल से ढक के ले जाना है,
1: हाँ, कवर करके हाँ, लेके जाना।
2: आप जब मंडी में लेके जा रहे हैं तो वहां कौन सी दुकान से आपका कांटेक्ट है, आपको रेट का पता करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रेट चल रहे हैं, कैसे है, तो ये सारी तैयारियां। और फिर पूछते रहिए कि जैसे अभी कुछ फसलें होती हैं वो थोड़ी एडवांस में आ जाती हैं, उसका इस रेट में बिका, उसका इस रेट में किया, अभी रेट क्या चल रहे हैं, मंडी भाव क्या है, तो ये सारी चीजें समापन से पहले आपकी अगर तैयार हुई तो आप बेहतर ढंग से चीजों को संभाल पाएंगे और ज्यादा फायदा ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप घर लेके आ रहे हैं तो वहां आपकी भंडारण की व्यवस्था है, क्योंकि जो इस समय अनाज लेकर आ रहे हैं उसमें नमी ज्यादा होती है, तो पहले तो उसको सुखाना है, सुखा के फिर भंडारण करना है। अगर नमी वाला ही आपने ज्यादा स्टोर कर दिया कहीं पे तो उसमें फफूंद लग सकती है, वो खराब हो सकता है अनाज, तो सुखाना फिर भंडारण करना। भंडारण की भी जो जो जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, उसमें नमी नहीं हो, जिससे कि अगर हम कुछ लंबे समय के उसके लिए स्टोर भी करें तो वहां पे कीड़े न लगे, इंसेक्ट न लगे जो कि आपकी उपज को खराब कर सके। तो ये सारी तैयारियां जो है ये समापन की तैयारियां है। अब समापन में आपने सपोज आपने जो मतलब जो विक्रय कर रहे हो, विक्रय के बाद कितना आपके पास पैसा आने वाला है उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी है कि भाई ये मेरे पास इतना आया, इसमें से इतना मैं अगली फसल के लिए रख रहा हूँ, इतना मेरे और कुछ खर्चे हैं उसके लिए रख रहा हूँ, बाकी है मैं बैंक में रख सकता हूँ जिसका मुझे कुछ ब्याज मिल सकता है, कुछ आप और कुछ कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, कुछ आपने हो सकता है कि कुछ उधार लिया हो उसका आपको आपको पेमेंट करना है। तो ये समापन से अर्थ ये है कि जो अब तक हमने प्रयास किए, मेहनत की, उसका जो परिणाम आने वाला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा, जब आपकी फसल की कटाई होती है तो फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आपको करना है, हल से आपको खेत को तैयार कर देना है, तो ये सारी चीजें समापन से रिलेटेड है।
1: खरीफ फसल के समापन के समय आपने इतने जो तैयारियां हैं इसके बारे में बताया, तो ऐसे कौन से फसल हैं खरीफ सीजन में जो हम लगाते हैं और समापन के समय हमें अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तैयारी करनी होगी?
2: अब जैसे कि अगर खरीफ में हम देखें तो धान है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें हमारे करीब करीब क्षेत्र में होती है। हर एक की अलग अलग तैयारी होती है, जैसे कि अगर आपको धान काटना है उसका अलग तरह का उसका तरीका, उसका अलग तरह का बाजार है। मूंग काटनी है, उड़द काटनी है, उसका एक अलग तरीका है, उसको काटना है, उसका थ्रेसिंग करनी है तो हाथ से करी जाती है या उससे या बैल से करी जाती है, या कुछ ऐसे थ्रेसर आते हैं जो कि उसको दाना टूटता नहीं है। तो सबका, अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करनी है आपको, तो खोदना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको सुखाना है, उसका जो आपने कितनी मात्रा में लगाई है, बेचने के लिए लगाई है या खाने के लिए लगाई है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी लगाई है तो हो सकता है कोई कोई आसपास का ही थोड़ा थोड़ा करके ले जाए तो वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। मक्का है, मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा काट के आपको अलग करना है, उसकी एक अलग तरह से तैयारी, उसकी जो फसल अवशेष है वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
1: जी
2: होते हैं और उसको उनको इकट्ठा भी किया जाता है, ठंड में चारे के रूप में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जो खेती करते हैं वो समझते हैं इसका इसका कैसे प्रबंधन करना है। लेकिन यही है कि मुख्य चीज जो है कि उससे जो आपको लाभ या आमदनी होनी चाहिए थी वो पूरी हो, उसका पूरा से।
1: खरीफ फसलों के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई, ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से खरीफ क्रॉप्स और जो हमारे खरीफ फसल है और रबी फसल जो है उनमें किस तरह के मुख्य आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर इनके तैयारी में भी आपको।
2: जी, खरीफ फसल है वो आमतौर पर जून से लेकर या जो जुलाई का महीना ले लें उससे लेकर सितंबर या अक्टूबर के आखिर तक तैयार। रबी की जो फसलें हैं उनकी जो तैयारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और फिर जो नवंबर तक उसकी बिजाई बिजाई के सारे काम हो जाते हैं। तो खरीफ हम ये कह दें कि जब जो समय होता है उस समय पर हम खरीफ कहते हैं, और जब धीरे धीरे ठंड की ओर हम जा रहे होते हैं तो उसको हम रबी। शुरुआत में ठंड शुरू होती है, बीच में काफी होती है, फिर आखिर पका के
1: रबी फसलों की शुरुआत करके आरंभ होता है, तो उसका महत्व क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका?
2: हाँ, रबी फसलों जब आरंभ हम कर रहे हैं क्या महत्व है उसका या उसका क्या अर्थ है, रबी फसलों की तैयारी क्यों करें?
1: जी,
2: तैयारी नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उसका कोई पता व्यक्तिगत हो जाएगा, खाद है, सारी चीजें समायोजित नहीं होंगी तो प्रॉपरली आपका आउटपुट नहीं दे पाएगी।
1: ये देखते हैं कि किस तरीके से जब हम खरीफ फसल लगा रहे हैं तो उसमें जिस तरीके की मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें, और उसके खेत में जब हम रबी की फसलें लगा रहे हैं तो उस मिट्टी में कुछ फर्क हमको देखने को मिलता है।
2: हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो जो खरीफ फसल थी उसको उसमें से जो पोषण ले लिया है। रबी की फसल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें क्या पोषण देना चाहिए।
1: जी, खरीफ फसलों के आरंभ की जब हम बातें करते हैं तो हम और किन किन तैयारियां या किन तरह के कार्यों पर हम?
2: हाँ, रबी की तैयारियों के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज आ जाती है बीज।
1: जी,
2: बीज में दो साधन है हमारे पास, एक तो हमारा अपना बीज जो हम ये कहें कि हम अपना बीज से ही फसल उगाएंगे, तो अगर वो बीज है तो बीज आपने संभाल के रखा होगा ऐसा लगता है, उसे आप लें और उसे धूप में सुखाएं अगर नमी वगैरह है, और उसका बीज उपचार जरूर करें खुद लगाएं, उससे बहुत सारे जो होने वाले रोग है उनको आप रोक सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर बीज नहीं है या उनके अलावा कोई नया आप बीज जो कि अधिक उपज दे सकता है या ज्यादा अच्छा आया है तो उनके बारे में बाजार से जानकारी पता आप प्राप्त करें, और ऐसा नहीं है किसी एक ने कहा कि आप ये डाल लो ये बढ़िया नहीं, एक दो जगह से और चेक करें। आजकल तो प्रचार प्रसार है, मोबाइल फोन पे भी सुविधाएं होती हैं, बहुत सी कंपनियां भी अपना प्रचार करती हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए, और अगर वह बीज एकदम नया आया है तो ज्यादा प्रयोग न करें, और अगर पहले से वो चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले तो कोई ना कोई आसपास में आपके उस बीज का प्रयोग किया होगा पिछले साल में, उसके अनुभव से आप जो जान सकते हैं कि वो कैसा रहा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, दुकान पर पूछ सकते हैं, आपको रेट भी देखने पड़ेंगे, तो सारी चीजों का तालमेल करके आप बीज को खरीदने की व्यवस्था आप करें, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो सरसों का बीज हो या जौ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जो रबी की फसल आप देने जा सकते हैं, चना है, चना भी एक अच्छी फसल है रबी की, उसके बारे में तो बीज सही लें, रोग रहित बीज लें, वो करें। दूसरा, जो उर्वरकों की मांग है उसमें पूरी फसल के लिए उर्वरकों की मांग है उसके लिए प्रयास न करें, जो शुरुआत में हमें चाहिए वो उर्वरकों का प्रबंध के लिए आप जो प्रयास करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, पीएमकेएस के सब जगह उर्वरक मिलते हैं, तो उसमें आप देख लें कि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें क्या पोषण की हमें आवश्यकता है, उस पोषण के हिसाब से आप उर्वरक चुनें। आप ऐसा ना सोचेंगे मैं पहले ये डालता था तो ये मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है।
1: तो सही उर्वरक के लिए हम किसी सलाहकार से मिल सकते?
2: सलाहकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको गेहूं में आपको 1 एकड़ में 20 किलो फास्फोरस डालना है, है नहीं, करीबन जो आपको जो मतलब पोटाश इस्तेमाल इतना ही करना है 20 किलो, और नाइट्रोजन आपको 20 किलो डालनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं और पोटाश मिला सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है डीएपी ले सकते हैं और उसमें पोटाश मिला सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि एक ही खाद में तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे।
1: अच्छा
2: जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी

0: आधारित होना है। अगर
1: जी
0: पानी कम है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, पानी अगर पर्याप्त है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें। तो ये कुछ रबी की तैयारियां हैं, ये आपको करनी है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको कोई ये नहीं रहेगा कि यार ये मेरे से ठीक नहीं हुआ,
1: जी
0: मैं ऐसा कर सकता था, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरा एक चीज और देखिए कि मार्केट रेट देखिए कि पिछले साल इन ये जो फसलें मैं लेने जा रहा हूँ इनका रेट क्या था, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगानी है। एक जैसी जब आप एक ही फसल लगा दिया उसके रेट गिर गए या उसमें सारी में कोई परेशानी आ गई तो
1: जी
0: सारा खत्म। तो आप थोड़ा थोड़ा लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं तो किसी में कम किसी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका एक जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों का चुनाव करें। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखें कि फसल चक्र जरूर अपनाएं, खेतों में अदल बदल के आप जो प्रयास करें उससे खेत की जो ताकत है वो पुष्ट होती है और फसलों में रोग बीमारियां कम आती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जो है अपनी ओर से कुछ बात रख रहा हूँ कि भाई रबी की जो फसल आप लगाना जा रहे हैं उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें, और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सार्थक उपज आपको मिलेगी, सार्थक
1: खरीफ
0: खेती आपके यहाँ हो सकेगी। तो ये कुछ बातों
1: फसलों और रबी फसलों के समापन और आरंभ के से जुड़े आपने बहुत सी जानकारी दी सर। इसी के साथ में कार्यक्रम के समापन से पहले कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम जितनी जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं या फिर सलाहकारों से लेते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में बहुत सी रुकावट आ जाती है, जिस
0: जी
1: कारण से हम जो सलाह हम लेते हैं, हमें जितनी जानकारी होती है उसे हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और उसका हमें सही
0: लाभ नहीं
1: लाभ
0: मिलता
1: नहीं मिल पाता है।
0: जी
1: तो अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करते तो खेतों में और हमारी फसलों में किस तरीके का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है?
0: हाँ। अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप बीज देने जा रहे हैं और कोई बीज चाहिए था वो आपको नहीं मिला
1: जी
0: है ना, या कोई दूसरा बीज लेके आने पड़ा तो जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। खरीफ फसल का जो समापन है उसमें आप चाह रहे थे कि मैं बेच के आऊं मंडी में, लेकिन रेट अच्छे नहीं चले और आपने अगर स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी तो ना आप जो मंडी ले पाए ना सही ढंग से उसका भंडारण कर पाए, तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अगर करते रहेंगे और इनमें थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं या आपको लगे कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं हुआ वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और धीरे धीरे अगर आप इनको अपनाते रहेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज भंडारण है, भंडारण का अगर आपने यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस साल की है तो वो हमेशा के लिए होगी, वो ऐसा तो है नहीं साल खत्म हो जाएगा। सपोज कोई ज्यादा वैसा नहीं है, आपका आंगन है वहां उसको ऊंचा कर सकते हैं टीन शेड लगा के, जिससे कि बारिश बारिश उसमें ना आए, वहां स्टोर कर सकते हैं, उसकी पुताई कर सकते हैं अच्छे से जगह की, जिससे कि चूने से पुताई करते हैं ना तो उससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा करके हम अपने संसाधनों को जो ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
1: इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे सर। आपके साथ जुड़कर आपसे खेती किसानी से जुड़े हुए इतनी बातें करना बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत से फायदे उठा पाएंगे।
0: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई इसका लाभ लें ऐसी हम आशा करते हैं। और ये जो वार्ताएं हैं हम इसलिए करते हैं कि कोई ना कोई सार्थक परिणाम इसके हमारी
1: जी
0: खेती बाड़ी में आए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर AK सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के
0: आपका भी
1: लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
1: दिव्या को इजाजत।

शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120

0: 20 plus rooms, spa and much more.
1: Book now 92582-53081 and for more details WhatsApp 92582-53081.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 पे। हूँ आपका दोस्त RJ आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं
4: साथियों। किसान ज्ञान वार्ता के इस ताजे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में बात करने के लिए श्री अनिल कुमार सिंह जी मौजूद हैं। और आप चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और कृषि क्षेत्र में आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपका स्वागत है सर।
5: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: आज हम श्री अनिल कुमार सिंह जी से खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और इनके विचार जानेंगे।
5: जी
4: सर, सबसे पहला प्रश्न तो आजकल बड़ी चर्चा में है, वो आप बताएं, PMKSK।
5: जी हाँ,
4: इसके बारे में।
5: बिल्कुल, PMKSK के बारे में हम अक्सर जब भी हमारी कोई वार्ता होती है तो उसके बारे में किसानों को अवश्य जानकारी देते हैं, क्योंकि ये जो खेती से संबंधित लोग हैं या खेती किसानी कर रहे हैं उनसे सीधे रूप से ये जो संलग्न है, एक तरह से उनके जितने भी कार्य हैं जो कि खेती के आदान के जो कि आपकी उनकी उनकी खरीद से संबंधित है, उनसे ये पूरी तरह जुड़े हुए हैं। PMKSK जिन्हें कि हम सब लोग पहले जो खाद की दुकान के रूप में जानते थे कि भाई ये खाद की दुकान है, यहाँ पर हमें खाद मिलता है, लेकिन खाद ही नहीं मिलता था वहाँ पर, हमें बहुत सारे जो मतलब दवाइयाँ भी मिलती थी जो कि जो मतलब फसल सुरक्षा के लिए काम आती हैं, बीज भी मिलते हैं और खेती के यंत्र भी मिलते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें खाद की दुकान ही कहते आए अब तक। तो भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया क्योंकि इनकी बहुत बड़ी संख्या है पूरे भारतवर्ष में, अलग अलग जगह जहां किसी की दुकान न हो, हो सकता है कि वहां पर किसी उर्वरक की दुकान हो, खेती के आदान की दुकान हो, तो ये हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है। तो भारत सरकार ने इनका संज्ञान लिया और उर्वरक मंत्रालय को जो उन्होंने सलाह दी कि आप इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके ऐसा प्रयास करें, तो उन्होंने इसके बारे में अपना जो मीटिंग करी, लोगों की राय ली और उन्होंने इनको PMKSK का नाम दिया। नाम तो दिया लेकिन इनका काम भी उन्होंने और अधिक किया, या उनको इस तरह से निर्देश किया कि आप और ज़्यादा करें जिससे कि खेती का विकास हो और जो भी खेती के आदान को किसान इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अच्छे से वो इस्तेमाल उनके स्तर पर हो सके और उनको ज़्यादा लाभ मिल सके, उत्पादन अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी मिले, रोग बीमारियां कम से कम आए और उनको आर्थिक लाभ उनका ज़्यादा हो सके, तो इस ओर उनको इंगित किया गया। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितनी भी ये उर्वरक की या जो खेती के आदान की दुकानें हैं, इनको जो इनका सबका लाइसेंस बनता है और लाइसेंस जो हमारे क्षेत्रीय जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बनता है। पहले तो ये था कि कोई भी दुकान वाले आए, उन्होंने अपना सारी चीजें बताई कि मेरे पास जो पैसे का प्रबंध है, दुकान है, भंडारण है, तो उनको एक लाइसेंस हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारी चीजें होने के बाद भी यह सुनिश्चित किया जाता है क्या उनके यहाँ पर उन लोगों को खेती की जानकारी है, क्या वो जो है उनके पास जो किसान आएंगे उनको सही जो है सलाह उनकी ओर से उपलब्ध हो सकेगी, ये सारी भी होना आवश्यक है। अब उसके लिए कोई भी कह दे जाके कि भाई ठीक है मुझे आता है मैं सलाह दे दूंगा, लेकिन नहीं, भारत सरकार ने कहा कि उनको उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो शिक्षा है वो उन्होंने ली हुई हो, तो या तो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा किया हो, इस तरह का जब उनके पास जो जो मतलब डिग्री होती है तभी उनको लाइसेंस दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मा की डिग्री होना आवश्यक है, क्योंकि आप जो भी अपने यहाँ से विक्रय कर रहे हैं दवा, उसका क्या उपयोग है, उसके क्या हानि लाभ है, उसको किस तरह से लेना चाहिए, वह जानकारी उस विक्रेता को होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने लिख दिया, फिर भी बहुत से ऐसे भी होते हैं कि भाई कोई छोटी सी बात है, सिर दर्द है, तो एक जाके टैबलेट दुकान से सीधे भी ले आते हैं। अगर उनको वो जानकारी नहीं है, उन्होंने कोई भी दवाई दे दी, तो उससे जनहानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से भारत सरकार ने ये जो पीएम केएसके हैं, यहाँ पर खेती के आदान की विक्रय के साथ साथ उनको पूरी जानकारी उनके उपयोग के बारे में दी जाए, और खेती से संबंधित जो नए नए जो अभिनव जो प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी हो और किसानों को बताएं। जैसे कि मैं इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूं कि पहले मक्का सिर्फ खरीफ में होता, धीरे धीरे मक्का की खेती अब जायद में होने लगी है। जायद मतलब जैसे ही रबी की फसल कटती है उसके बाद होने लगी है, और उससे एक आर्थिक क्रांति आई, बहुत अच्छा पैसा मिलने लगा, और बीच में जो खेत खाली रहते थे उनका उपयोग होने लगा। तो उसके लिए जब मक्का की खेती होने लगी, उसके खरीदार आए, उसके बीज बेचने वाले आए, और एक नए रूप से एक फार्मर को एक नया संबल मिल गया। ये सब दुकानों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। कंपनी वाले आते हैं कि हमारा मक्का का बीज है यार, वहां बिक्री होती है, आप क्या नहीं? बोले साहब हमारे यहाँ तो मक्का कोई लगाता ही नहीं है। बोले आप कोशिश करो। तो उन्होंने उनको सलाह दी, किसानों को उन्होंने लगाई, उनको लाभ हुआ, और धीरे धीरे ये अलग से एक नई फसल के रूप में उभर के आ गई। बहुत से ऐसे जो सब्जियां हैं, फल हैं, तो उनका भी विकास इसी तरह से होता है। तो एक सशक्त माध्यम है खेती के विकास में ये हमारे पीएम केएसके, और क्यों जो है मतलब भारत सरकार और उर्वरक मंत्रालय है पूरी तरह से इनके साथ संलग्न है, तो आने वाले समय में और अधिक इनका जो लाभ किसानों को मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी वो दुकान पे जाए, पीएम केस पे जाए, तो सिर्फ आदान खरीदें ही नहीं। हमेशा अक्सर कभी कभी हम सोचते हैं रेट के बारे में चिंता कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, आप रेट के पूछें, लेकिन उस जो भी आदान आप ले रहे हैं उसका क्या सही जो ढंग से इस्तेमाल हो सकता है वो आपका पूछना बहुत जरूरी है। तो ये पीएम केएसके के बारे में जानकारी रही जो विनय जी।
4: कहीं ना कहीं किसानों की आय दुगुनी जो करने का
5: जी जी
4: है सरकार का,
5: जी जी
4: उस दिशा में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है।
5: हाँ, जैसे देखो कहते ना कि भाई आमदनी जो है दुगुनी होगी, दुगुनी आमदनी कैसे होगी? कोई ऐसा तो है नहीं कोई आपके खाते में पैसा डाल देगा जी। आपके प्रयास से ही दुगुनी आमदनी होगी, दुगुनी आमदनी आपके प्रयास से होगी। आप करोगे, आपको संसाधन मिलेंगे, आपको उसको सेल करने की जगह मिलेगी, फिर वो उद्योग में इस्तेमाल होगा या लोग इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब भी कोई उत्पाद हो रहा है उसका अगर प्रयोग ही नहीं है तो उसके उत्पादन का क्या तात्पर्य है? अगर अब जैसे मक्का होती है, मक्का से इथेनॉल बनता है, उससे फीड बनता है, फीड आपके जो आपकी भैंसे हैं, गाय हैं, उनके लिए बनता है, बहुत सारे और जानवर हैं उनके लिए फीड बनता है, तो ये सारे इस्तेमाल होने लगे, एक्सपोर्ट भी होता है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये उत्पादन का आगे आपने उत्पादन किया और लोगों ने उसमें संभावनाएं देखी और फिर उसका उपयोग किया, और अगर उत्पादन के बाद कोई प्रयोगी उपयोगी नहीं होगा तो उत्पादन बेकार हो जाता है। तो ये सारी चीजों का संकलन सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारा काम है कि हम प्रयास करें, खेती में उत्पादन करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें, नए नए प्रयोग करें, और तो हमारी आमदनी अवश्य बढ़ेगी।
4: किसान भाइयों को
5: कोई शंका नहीं,
4: एक ही स्थान पर उनके सभी समाधान मिल रहे।
5: हाँ बिल्कुल मिलते हैं साहब।
4: सर हमारा जो उर्वरकों का इस्तेमाल है
5: जी,
4: तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती उर्वरकों के एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है
5: जी।
4: उर्वरकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा
5: जी
4: एक्सपोर्ट करना पड़ता है,
5: इम्पोर्ट आयात करना पड़ता
4: है, आयात करना पड़ता है
5: जी।
4: तो इसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री का जो
5: जी
4: उस पर प्रकाश डाल।
5: देखिए मैं बताऊं विनय जी, प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है बहुत स्पष्ट है। वो ये नहीं कह रहे कि आपकी सुविधाओं में हम कोई जो कमी करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, और वो सुविधाएं और दे रहे हैं जब भी उनको समय मिलता है। वो जो मतलब खेती के हित में या किसानों के हित में जो भी सुविधाएं हो सकती है उनमें हमेशा उनकी ओर से स्वीकृति रहती है और जो मतलब दी जाती है। लेकिन उनका कहना है कि वेस्टेज ना हो, वेस्टेज मतलब ये कि बेकार न जाए, हम कोई सुविधा दें और उसका अगर सही ढंग से इस्तेमाल न हो और वो बेकार चला जाए तो वो बहुत नुकसान का विषय है। जैसा कि आपने कहा कि हम बहुत सारे उर्वरक आयात करते हैं, जब भी आप कोई चीज आयात करते हैं तो सामने वाला जो आपको भेज रहा है या जो आपको बेच रहा है वो आपकी परिस्थिति को देख उसको देखता है, इनको जितनी ज्यादा जरूरत उतना वो भाव लगाता है, उतना ज्यादा प्रॉफिट लेने का कोशिश करता है। तो ये पैसा किसका जाता है? हमारा और आपका जाता है। अरे भाई, सरकार के पास भी हमारा आपका पैसा है और उनके जो हमारे पास है वो सरकार का पैसा है। तो वो पैसा जो हमारे सही इस्तेमाल न होने की वजह से या ज्यादा इस्तेमाल होने की जो हमने किया है या वेस्टेज हो उसकी वजह से दूसरों के पास जा रहा है, अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो वो वेस्टेज रुकेगी और जो वो पैसा है वो हमारे काम ज्यादा आ सकेगा। इसी संबंध में उन्होंने एक संबोधन दिया है, मैं आशा करूंगा कि आप वो संबोधन लोगों को सुनाएं। काफी अच्छी बात उन्होंने कही है और लोग जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो इसका संज्ञान लेके जो उर्वरकों का जो उपयोग है उसका समुचित उपयोग करेंगे, समय का उपयोग करेंगे और वेस्टेज को रोकेंगे और जितनी आवश्यकता है उतना ही डालेंगे। तो आइए प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनते हैं।
6: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
4: सर, आज का जो अपना टॉपिक अपना विषय है खेत की मिट्टी को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आते हैं। और पहला प्रश्न सर कि खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है?
5: हाँ बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य हम सब चीज हटाते हैं, आप मिट्टी हटा दीजिए और स्वास्थ्य ले लीजिए। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? स्वास्थ्य का अर्थ ये है कि हमारी जो चीजें सामान्य रूप से होने चाहिए वह चल रही हैं तो हम स्वस्थ हैं। जैसे हमें अच्छे से नींद आ जाती है, भूख लगती है, भोजन कर लेते हैं, खाना हजम हो जाता है, प्यास लगती है, सारी क्रियाएं हमारे शरीर की सामान्य रूप से चलती हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। है हम जो भी काम हमें दिया जाता है, जैसे हम को साथ में माले पर जाना है तो सीढ़ी चढ़ के चले गए, लिफ्ट की जरूरत न पड़ी हमें, या हमें यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल करके जो जाना है तो हम चल लिए, तो ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की जो कि हमसे अपेक्षित है वो हो रहा है। तो ये हमारे और आपके स्वास्थ्य के बारे में हो गया, इसी तरह हमारे साथ जो पशु हैं उनके बारे में हो गया। जैसे हमारी कोई गाय या भैंस है तो वो अच्छे से चारा खाया, उसने अच्छे से दूध दिया, समय पे बच्चे हुए और वो स्वस्थ है, आनंदित है, खाना खाने के बाद वो अच्छे से उसको हजम कर रही है, तो हम सोचते हैं हमारी भैंस स्वस्थ है। अगर वो खाना न खाए, पेट फूल जाए उसका, तो फिर दूध भी नहीं देगी, तो हम समझेंगे स्वस्थ है, हम उसका इलाज कराते हैं। इसी तरह हमारे खेत हैं, हमारे खेत की मिट्टी है, उसका भी एक स्वास्थ्य है अपना। अगर वो स्वस्थ है तो ही हम अच्छी फसल ले पाते हैं। अगर वो अस्वस्थ है तो धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है या उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है और अंतोगत्य ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उसमें कुछ ना। अब जैसे हम हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य में ये प्रॉब्लम है, हमें ये ऐसा महसूस हो रहा है, हमें सिर दर्द हो गया, हमें जुकाम हो गया, मेरा पेट खराब है, भूख नहीं लग रही, हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे साथ जो गाय भैंस है वो कह नहीं सकती लेकिन हमें दिखता है क्योंकि उनके जो अपेक्षित जो होते परिणाम। मिट्टी के बारे में मिट्टी की कोई ऐसी आवाज नहीं है, वो कह नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे उसके परिणाम हमें दिखते हैं। अब परिणाम के हम कैसे छुपा जाते हैं, क्योंकि हम कोई चीज एक्स्ट्रा कर दी, कोई दवाई ज्यादा डाल दी, कोई ऐसे कर दिया वैसे कर, तो ये सब क्षणिक उपाय हैं। इनसे कोई स्थायी रूप से समाधान खेती के स्वास्थ्य का नहीं हो सकता। अगर उसमें गिरावट आ रही है तो हमें उसको समझना होगा, देखना होगा। जैसे जब भी कोई फसल उगाते हैं तो हमें उसका असर उसमें दिखता है कि भाई ये धीरे होगी फसल, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा लग रही है, मैं पानी देता हूं तो भी फसल सूख रही है, मैंने ज्यादा खाद भी इस्तेमाल किया तो भी फसल स्वस्थ नहीं है, बीमारियां ज्यादा आती हैं, पौध कमजोर है, अनाज अच्छा नहीं हुआ, फल अच्छा नहीं आया, फल अच्छा आया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई। ये सारी चीजें इस बात का घोतक होती है कि कहीं ना कहीं हमारे खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। अब मिट्टी के स्वास्थ्य में जो क्यों आती है गिरावट, आप कह रहे हैं हम खाद डाल लें, हम सब चीज डाल लें। देखिए, आप पोषण जो आपने दिया है वह एक सीमित मात्रा में पोषण होता है, ज्यादातर पोषण हमें मिट्टी से मिलता है। अब मिट्टी में पोषण कोई ऐसा तो है नहीं कि नीचे से कोई आता होगा। एक सतह है, सपोज वो एक फुट मिट्टी है, 4 इंची है, 6 इंची है, जो भी है, उतने में ही वो पोषण है। अगर उसमें से धीरे धीरे लगातार हर साल हम फसल ले रहे, और आजकल तो सघन खेती होती है, पहले साल में एक फसल ले लेते थे ज्यादा ज्यादा, अब तो 3-3 फसलें लेते हैं, तो उसी मिट्टी में से जो भोजन इकट्ठा था वही फसलें हर साल ले रही हैं या हर 3 महीने में ले रही है, तो धीरे धीरे उनकी कमी आने लगी है। आप कितना भी ऊपर से डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एक रुकावट आती है। जब भी रासायनिक उर्वरक हम ज्यादा डालते हैं तो जो उस खेत के अंदर जैव क्रियाएं हैं उनके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उनके जो हमारे लाभकारी जीव है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, या उनका हमें सहयोग मिलना धीरे धीरे कम हो जाता है। यही जो खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य का मूल आधार है, लेकिन इनमें ही कमी आने लगती है तो वहां से हमारी खेत की गिरावट शुरू हो जाती है। जब खेत के स्वास्थ्य में जो कमी आने लगती है तो हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और इससे एक लाभदायक खेती, जो एक आसान खेती थी, एक सरस खेती थी, उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आने लगती हैं। जब दिक्कतें आती हैं हम खर्चा ज्यादा करते हैं और हमारा जो लाभ होता है वो घटने लगता है, हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारी स्वस्थ मिट्टी है तो हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, पौधा उगता है अपने आप, जो है वो आगे बढ़ा, पल्लवित हुआ, समय आया, उसमें फूल हुए, फल हुए, और एक समय पे हम गए और हमने कटाई कर ली। मैंने कपास की खेती अपने जीवन काल में जब मैं छोटा था ऐसे देखी है कि कपास लगा दी, थोड़ा बहुत पानी गुड़ाई होगी, उसके बाद कपास की चुगाई होती थी, मैंने खुद अपनी आँख से देखा है। उसमें कीड़े भी होते थे, कपास टूट के आती थी, सुखाई जाती थी, न कोई कीड़ों को मारता था, न कोई कुछ करता था, कपास हो जाती थी, अच्छे से हो जाती थी, बढ़िया हो जाती थी। हम खूब उस पर, जब वो आती थी सॉफ्ट होती तो हम लोट मारते थे उस पर कपास पर, उनके लाल लाल ऐसे कीड़े होते थे, बड़े अच्छे लगते थे, हम अपने हाथ पे ले लेते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में एक संतुलन है, और वो संतुलन जो कहीं ना कहीं टूटता है अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य जब भी खराब होता है, या तो कोई चीज जो उसकी नहीं है उसको हम अत्यधिक मात्रा में डालें, या जो उसके अंदर है उसको ज्यादा मात्रा में हम निकाल लेना, तो असंतुलन क्रिएट होता है। इसी से यही तात्पर्य है कि ये संतुलन बना रहे तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मिट्टी का स्वास्थ्य रखेगा तो खेती करना सुगम होगा, आसान होगा, कम खर्चीला होगा, कम समस्याग्रस्त होगा, और हमें मन चाहा उत्पादन उसमें मिल सके।
4: सर, मेरा दूसरा प्रश्न भी इसी बारे में था, आपने पहले प्रश्न में ही उसका भी जवाब दे दिया, हमारे दर्शकों को उसका भी जवाब मिल गया होगा कि खेती करते समय मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो क्यों जरूरी है उसका स्वस्थ रहना।
5: हाँ,
4: तो आपने उसका भी जवाब।
5: हाँ, देखिए आमतौर पर जो सारी बातें वही है कि अगर स्वस्थ होगी मिट्टी तो हमें खेती करने में बहुत आसानी होगी, खर्चे कम होंगे, और हम मनचाही फसल उगा सकते हैं। समय पर वो फसल तैयार होगी, पकेगी, पानी की कम मात्रा की जरूरत होगी, पानी ज्यादा समय तक रोक सकता है, पोषक तत्व तो उसमें ऐसी अवस्था में आराम से आ जाएंगे जिनको कि पौधा बड़ी आसानी से ले सकता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि दो चीजें हैं, एक जो आपके पैरामीटर होते हैं वैज्ञानिक पैरामीटर, एक को बोलते हैं पीएच, एक को बोलते हैं ईसी। पीएच का मतलब होता है कि खेत के अंदर क्षारों की मात्रा, क्षारीय तत्व की मात्रा ज्यादा होना, तो वो उसका पीएच ज्यादा होता चला जाता है। सामान्य पीएच 7.5 के आसपास है, 7-7.5, और वो उससे ऊपर जो जाने लगता है। और ईसी, ईसी का मतलब ये होता है कि खेत के अंदर जो साल्ट है, नमक की मात्रा है, वो ज्यादा होना। नमक की मात्रा ज्यादा होना या साल्ट की मात्रा होने से जो हम खेत में पानी लगाते हैं वो भारी होने लगता है। अगर वो साल्ट एक निश्चित मात्रा से ज्यादा बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पानी भारी होता जाता है, जो कि पानी हल्का होना चाहिए फसल के लिए। हल्का होगा तभी जो उसका सिस्टम है वो उसको सूख पाएगा और पौधे के दूसरे अंगों तक उसको पहुंचा पाता है। तो ये पीएच और ईसी ज्यादा होते चले जाते हैं तो हमारी भूमि का, हम जैसे मान के चले जैसे हमारा हाई बीपी होता है और शुगर होती है, वैसे हमें इस जो इंगित कर रहे हैं, जो पीएच है वो हाई बीपी लो बीपी का एक तरह से
4: पैरामीटर,
5: हाँ आपके पैरामीटर, और ईसी है शुगर का पैरामीटर। तो इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो ये अगर अच्छे से होंगे तो सारे पर फिर उसके बाद आ जाता है आपका जैविक तत्व है, वो हम उसमें अच्छे से रखें तो आगे बढ़ता चला जाता है।
4: तो हमारे श्रोताओं को अब ये बताएं सर कि खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य में अगर लगातार गिरावट हो रही है तो ये क्यों हो रही है और इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।
5: हाँ बिल्कुल, देखिए जो हो रही है, क्यों हो रही है गिरावट, सबसे पहला कारण ये है कि सघन खेती और एकल खेती। सघन से मतलब क्या है कि लगातार जो खेत में फसल लेना वो सघन खेती होगी। एकल खेती से अर्थ ये है कि एक तरह की फसलें लगातार हम ले रहे हैं, जैसे कि धान के बाद गेहूं हो गया, फिर मक्का हो गई, एक ही तरह की फसलें हैं सारी, एक ही स्तर से ये मतलब भोजन लेती है, एक ही तरह का इनका पूरा सिस्टम है। अब ये जो जब एक तरह की हम खेती क्यों ले रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि इनसे हमें आर्थिक लाभ होता है और कहीं कहीं आसानी भी होती है। जैसे कि बोलते हैं गेहूं की फसल बड़ी पक्की होती है, लगाया फिर काटने में कुछ न कुछ हो ही जाता है, धान की फसल भी उसी तरह से। तो ये एक जो एकल खेती का जो अपना सिस्टम है ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है। आर्थिक रूप से तो है लेकिन खेत के स्वास्थ्य के रूप में अगर इसको देखा जाए तो उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। दूसरा ये है कि जो सघन खेती हम करते हैं तो उसमें पोषक तत्व वो ज्यादा मात्रा में लेने लगती है एक ही तरह की, तो उस तरह के पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। जब वो कमी हो जाती है तो फिर उस फसल में भी उस तरह की गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा, हम आज की तारीख में जो खेत को एक ऊर्जावान रखने के लिए, खेत की मिट्टी में जो उसके हमारे ऐसे कीट हैं जो हमारे मित्र हैं उनको सक्रिय रखने के लिए हमें जैविक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर वो हम नहीं देते हैं तो उनमें कमी आने लगती है, उनकी सक्रियता जो है वो कम हो जाती है। तो हमें जो सहयोग होना चाहिए था उनकी तरफ से, जिससे कि फसल लेने में हमें आसानी होती थी या जो फसल हम उगा रहे हैं उसको पोषक तत्व लेने में आसानी होती थी, वो हमारी रुक जाती है। इसके अलावा जो सिंचाई का पानी है, जैसे कि आप देखो हमने पानी आज लगाया, एक जमाने में जब जैविक तत्व खूब था तो 20 दिन तक खेत में बढ़िया नमी रहती थी, 20 दिन एक महीने तक। अब आपने पानी लगाया, अगर जैविक तत्व नहीं है तो आप, हो सकता है कि 8-10 दिन बाद आपको लगेगी यार फिर पानी लगा दूं क्या, आपको ऐसा फील हो, सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है, हवामान अच्छा नहीं रहता उसमें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब मिला के हम देखें तो जो एक मूल स्वभाव है उस खेत की मिट्टी का वो धीरे धीरे जो है आपका खराब होने लगता है अगर हम जैविक तत्व का प्रयोग नहीं करते। फसल अवशेष है, जैसे हमने कोई जो मतलब फसल उगाई उसका अवशेष है, अगर आप उसको खेत में जो सड़ा दें या उसका खाद बना के फिर खेत में डालें तो वो सर्वथा उचित है। अब क्या किया कि हमने खेत से निकाला, आग लगा दी उसमें, या उसको कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जो कि हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है, तो वो जो खेत की ताकत हो सकता था वो ताकत में होकर वो आपने उसको अलग कर दिया। ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान में देखा गया है कि जब आप जो मतलब कोई भी फसल उगाते हैं तो उसने जो पोषक तत्व लिए हैं उसका करीबन 25-30% जो उसका अनाज बनता है या जो फल बनता है उसमें उपयोग होता है, और करीब करीब 70-75% उसके जो अवशेष होते हैं फसल के, जैसे उसका तना है, उसकी पत्ती है, उसकी शाखाएं, उनमें रहेगा। इसका मतलब ये समझिए कि जो जमीन से लिया गया 75% या 70% हम लौटा सकते अगर फसल अवशेषों को हम खेत में अच्छे से मिला दें। तो आप देखिए कितना बड़ा, पहले लोग जो थे कि उन्होंने फसल ली और खेत में ही उसको फिर दबा दिया अनाज निकालने के बाद, तो वो बहुत एक तरह से वैज्ञानिक उनका वो था दृष्टिकोण, अवैज्ञानिक नहीं थे कतई वो। अब हम एक बार जगह साफ कर दिया क्योंकि आग लगा देते, ये बहुत ज्यादा नुकसान की बात है। तो ये सारे कारण हैं जो कि धीरे धीरे मिट्टी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है, और इसकी हम जो पूर्ति कर रहे हैं हमें बस एक ही साधन दिखता है कि चलो दुकान से कुछ ले आते, पर वो ज्यादा उचित नहीं, वो एक जो मतलब माध्यम है, हो रहा है, लेकिन वो संपूर्ण जो इसका समाधान नहीं है।
4: वो सर उपाय क्या किया जाए?
5: हाँ उपाय, देखिए उपाय जैसे कि जो चीज से जो आपको नुकसान उसको उल्टा कर दो वो उपाय है। एक तो एकल खेती मत करो, एक जैसी जो फसल ले रहे हो ठीक है एकासर है, फिर उसमें कुछ न कुछ फेर फेर कर दो। जैसे एक उदाहरण में बताता हूँ, अरहर की खेती होती थी 6 महीने की 7 महीने की होती थी ना, उसकी अरहर भी बड़ी मीठी होती थी खाने में, उसकी दाल की इतनी मांग है कि अगर आप कहीं जाओ तो लोग कहेंगे हाँ यार वो कहीं मिल जाए तो लाना। अब तो वह शॉर्ट टर्म जो होती है वो खेत के स्वास्थ्य को ठीक करने का बहुत बड़ा माध्यम थी। अरहर की ढैचा होता था, सनई होती थी, ये लगा दी पूरे खरीफ के मौसम में रहती थी, जायद में लगाई और चलती रही 6-7 महीने, फिर खेत खाली हुआ, पानी निकला, फिर अच्छे से हल चला गया, गेहूं लगा दिया। आप ये समझो आपने एक तरह से इतना शानदार उपाय किया कि ये बीच में फसल लेके, और इस तरह की फसल लेके, इसको हरी खाद बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उनके जो आपके पत्ते होते थे नीचे गिरते थे, सड़ते थे, फिर खाद बजाय वो अन्य असंख्य जीव होते थे जो उसका एक तरह से डिकम्पोज करते थे। तो सबसे पहले ये कि एकल फसल सिस्टम को हम कुछ कहीं कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करें। दूसरा, अगर हमारे पास साधन है तो गोबर की खाद है, कंपोस्ट की खाद है, ये हम अच्छे से बनाएं और अपने खेत में मिलाएं। फसल अवशेषों को ज्यादा से ज्यादा हम उसी खेत में संग्रहित करके उसको जब हल चलाएं तो मिट्टी के साथ मिला दें। ये आपके हमारे जो अपने लोग खेती कर रहे हैं उनके स्तर पर ये पूरा किया जा सकता है। दूसरा कि भाई हम बीच बीच में आज के समय में बहुत सारी तकनीकी सहायताएं उपलब्ध हैं, जैसे कि मिट्टी की जांच है, मिट्टी की जांच करवाएं। और मिट्टी की जांच ऐसा नहीं है कि हर बारी आप के पास साधन नहीं, हर बारी नहीं, बहुत सारी संस्थाएं जो फ्री में करती है, जैसे हमारी अपनी लैब है, हम साल के करीब करीब 70,000 सैंपल चेक करते हैं, 70,000। हमारी दो लैब है, एक तो हमारी फैक्ट्री में है और एक जो है मतलब आगरा में है। आप वहाँ सैंपल भेज सकते हैं, जो यहाँ पर PMKSK है वहाँ पर हमारे उर्वरक आते हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको भेजने का आपका खर्चा होगा। और अगर आप उसको भी चाहते हैं कि हम हमारी ओर से न हो, तो आपके क्षेत्र के किसान इकट्ठा होके नमूने इकट्ठे कर लें एक जगह, और वहाँ से हमारा आदमी ही लेके उनको ट्रांसपोर्ट से भेजेगा, वो भी खर्चा आपका नहीं होगा। सूचना पत्र है उसमें आप अपनी पूरी जानकारी लिख दें तो वो आपके पास जाएंगे। तो मिट्टी की जांच से आपको अपने खेत के स्वास्थ्य के बारे में बीच बीच में जानकारी मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है कि जो आपने फसल ली उससे मालूम पड़ जाएगा उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा, दूसरा ये कि इससे आप जांच, तो जब इससे जानकारी मिले तो बहुत सारे पोषक तत्व, तो कोई पोषक तत्व की बहुत ज्यादा कमी होगी। PHEC के बारे में जैसा मैंने आपको बोला वो आपको जाएंगे, तो उनके सुधार के लिए और क्या करना है वो आप समय पे कर सकते हैं। या कुछ ऐसा जो आपने आपकी तरफ से हो रहा है जो कि ठीक नहीं है तो उसको आप रोक सकते हैं। जैसे कि कहीं कहीं मैं बताऊं आपको, ट्यूबवेल का पानी जो होता है उसमें नमक की मात्रा होती है, खारा पानी होता है, और हम लगाए जाते हैं, धीरे धीरे खेत हमारा खेती के लिए अक्षम होता चला जाता है। तो उसमें ये कहा जाता है हम ऐसी फसलें उगाएं जो कि थोड़ा नमक को सह लेती है, जैसे कि सरसों है, गेहूं है, जौ सबसे ज्यादा सह लेती है, जौ की फसल, तो ऐसी फसलें हम उगाएं। उस पानी के साथ और अच्छा पानी उसको मिक्स कर लें, ऐसी फसल उगाएं कि जो ज्यादा पानी चाहती हो। और मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जो आपके जो आपकी चारे वाली जो जो मतलब जो रबी के सीजन में फसल होती है जैसे रिज़का बरसिंग होता है ना, ये आप उगाएं, ये जो नमक को लाइक करती है। तो ऐसे खेत में जहाँ जो खारा पानी से आपको लग रहा है कि थोड़ी सी वो है गिरावट, वहाँ ऐसी फसल आप 1-2 साल लगा ले लें तो उससे कुछ सुधार होगा। तो ये बहुत सारे, अच्छा कोई आप साग सब्जी की अगर कोई मंडी है तो एक जो सब्जी है पालक, वो आप लगाएं, वो अच्छे से उसको ठीक करने का, वो अच्छा नमक लेती है खेत से, ऐसे अनेकों कारण हैं। और अगर पीएच ज़्यादा है तो ढैचा की फसल लगा सकते हैं, उससे पीएच सामान्य होता है, अरहर लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनसे कि हम धीरे धीरे करके, लेकिन मिट्टी की जांच से आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिले, सही पैरामीटर मालूम पड़ जाते हैं। जैसे कि हम अपना स्वास्थ्य चेक कराते हैं, हमारे शुगर इतनी है, लिपिड्स इतने हैं, ये है ये, पूरी जानकारी। उसके बाद आपको दवा खानी है या आपने संयम से, भोजन से या व्यायाम से या अपने आहार से उसको ठीक करना, ये आपका निर्णय है, लेकिन आपको जानकारी होगी। इसी तरह मिट्टी की जांच से आपको खेत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल गई। अब उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन अपना के आप उसको ठीक, या थोड़ा थोड़ा अपना के, थोड़ा ये करके मैं ठीक कर सकता
4: हूं। सर, हमारे श्रोताओं को बताएं कि मिट्टी के स्वास्थ्य के खराब होने से क्या नुकसान है।
5: हाँ, खराब होने से नुकसान यही है कि आपको उपज कम मिलती है, आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर फसल नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। आपके जो जो क्षेत्र का हवामान है या जो आपका यहाँ का जो मतलब पर्यावरण है, तो वो नहीं होता है। अब जैसे मान के चले आपका स्वास्थ्य अगर खराब है तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते। आप कहते हैं मैं दौड़ नहीं पाता, आप कहते हैं मैं ये नहीं खा पाता, इससे मुझे एलर्जी है, आप ये नहीं कर पाते, आप वो नहीं कर पाते, तो बहुत सही। इसी तरह से खेत में भी मनचाही चीज नहीं हो पाती जब आप, और आर्थिक रूप से वो लाभकारी भी नहीं रहती, धीरे धीरे लाभ आपका कम होने लगता।
4: सर, मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अक्सर किसान भाई ये गलती करते हैं कि वो उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा उर्वरक खेत में डालने लगते हैं। जी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है खेत?
5: हाँ बिल्कुल, अत्यधिक चीज उर्वरक बिल्कुल फायदे की बात नहीं है। जैसे हम मान के चले कभी हमें कमजोरी आई तो हम बोलते हैं यार ज्यादा भोजन खाओ, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो कमजोरी आई उसका कारण क्या है, क्या हमारा हाजमा ठीक है, हमारे शरीर के पैरामीटर ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि आप जो जांच कराए उसके बाद उतना ही दें जितना जरूरत है, इसको बोलते हैं संतुलित पोषण, उर्वरकों का संतुलित उपयोग। संतुलित उपयोग से जो लाभ होता है वो ये होता है कि जितना पोषण चाहिए वो उस फसल को मिल जाता है। संतुलित पोषण में एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, अक्सर लोग बोल देते हैं मात्रा के बारे में बात कहते हैं, नहीं, मात्रा है लेकिन उसके साथ साथ संतुलित पोषण में जो सबसे ज्यादा अहम है किस समय पर दिया जाए और किस तरह से दिया जाए, किस समय पर दिया जाए और किस तरह से दिया जाए और कितनी मात्रा में दिया जाए, ये तीन चीजें शामिल है। तो इन तीनों का जो समावेश है वो उर्वरक उपयोग में किया जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जब आप ज्यादा मात्रा में या सही समय पर नहीं देते हैं, सही ढंग से नहीं देते हैं, तो उनका जो आशातीत लाभ होना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। दूसरा उनका नुकसान होता है। जैसे मान के चले अगर आप यूरिया उर्वरक आप दे रहे हैं ज्यादा मात्रा में दिया, अक्सर बहुत सी जगह मैंने अनुभव किया पहले सूखे खेत में यूरिया डाला फिर पानी ऊपर से लगा दिया तेज, क्या होगा, पानी जहां जहां जाता है यूरिया फट से घुल जाता है। तो पानी अगर उस खेत में 6 इंच नीचे गया तो सबसे पहले यूरिया 6 इंच नीचे चला गया उसके साथ, और जो आपने फसल उगाई है उसकी 3 इंच तक है जड़े, तो क्या वो यूरिया ले पाएगी? इसका मतलब आपने वेस्ट कर दिया। अब एक तो ये कि आपका आर्थिक नुकसान हुआ, आपने जो जो श्रम लगाया वो बेकार गया। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये कि अगर वो पानी रिस्क के आपके पीने के स्रोत में जाता है, जो हमारे जानवर भी पी लेते हैं, गाय भैंसे अक्सर पीती हैं, हम भी पीते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अनेक तरह की विकृतियां हमारे स्वास्थ्य में आती हैं क्योंकि उसमें वो नाइट्रोजन ऐड हो जाता है नाइट्रेट के रूप में, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है सभी जीव के लिए। तो आप ये देखिए कि उर्वरकों का अगर हम संतुलित या समय का उपयोग नहीं करते तो उनके क्या हानि हो सकती है। अब जैसे फास्फोरस के उर्वरक है, अगर हम सही जगह पर नहीं देंगे, सही समय पर सही मात्रा में नहीं देंगे तो उनका भी इस्तेमाल, जैसे कि मान के चले बीज हमने डाला है और उर्वरक उसके ऊपर पड़ गया या साइड में पड़ गया तो वो पौधा फास्फोरस वाले खाद को नहीं ले पाएगा, क्योंकि जहां पर उसका अंकुरण हो रहा है वहां उसकी जो जड़ें नीचे जा रही है, भोजन उसको वहां मिलना चाहिए था, वहां भोजन है नहीं, इधर उधर भोजन है, तो वो एक तरह से वेस्ट हो गया, कोई उसका लाभ नहीं हुआ। आपने पैसा भी दिया, और फास्फोरस में ये होता है कि थोड़े समय बाद वो फिक्स हो जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। तो क्या तरीका है कि जब आप फसल बोए तो बीज थोड़ा 2 सेंटीमीटर ऊपर हो और उर्वरक उसके नीचे हो। जैसे ही बीज उगे तो बीज में कुछ समय के लिए भोजन संग्रहित रहता है, तो उस पर वो अपना विकास करता है। जब वो जो उसका खत्म हो जाता है भोजन, तो फिर उसको अलग से भोजन चाहिए। तो जब उसकी रूट्स नीचे आ जाएंगी जड़ें, तो वहाँ उसको वो खाद घुली अवस्था में मिल जाएगा और उसको लेगा, बढ़िया से विकास करेगा। लेकिन अगर वहाँ खाद ही नहीं है, फास्फोरस ही नहीं, आपने डाला है तो उसको नहीं मिल रहा, तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। तो उर्वरकों का सही उपयोग अगर आपने किया है तो आपको आर्थिक लाभ होगा,

0: आपके खेत का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो जो खेत के आसपास का पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसके उलट आप करते हैं तो सारी चीज़ें उल्टी होंगी, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, आपका आर्थिक लाभ भी नहीं होगा, आपका श्रम ज़्यादा लगेगा और खेत के स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे गिरावट। जब फॉस्फोरस का फिक्सेशन होता है तो मिट्टी सख्त होती चली जाती है और मिट्टी सख्त होती जाती है तो उसमें पानी रोकने की क्षमता नहीं रहती, हवा का आवागमन सही नहीं होता है। तो ये सारे नुकसान उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के हैं। हम ये न देखें कि भाई हमने ज़्यादा डाल दिया और देखी देखा कि उसने इतना डाला था तो मैंने इतना डाल दिया, ये बिल्कुल भी समयक बात नहीं है। अब मेरे साइड में कोई आदमी बैठा है, उसने 8 रोटी खा ली, उसे हजम हो गई, तो मैं उसकी होड़ से भी 8 रोटी थोड़ी खाऊं, अपना भाई 2 रोटी से काम चल रहा है, 3 से चल रहा है और मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ तो अच्छी बात है। तो आपने अपनी आवश्यकताएं देखनी है, होड़ा होड़ी में नहीं करना। अक्सर किसानों को मैंने देखा है कि वो अक्सर ये देखते हैं कि अच्छा तूने इतना किया है मैंने इतना कर दिया, ये सब गलत है, इसका कोई मतलब नहीं, आपका नुकसान ही नुकसान है, उसने तो अपना नुकसान किया ही किया, उसको देखी देखा आपने भी नुकसान किया, नहीं फायदा किसका हुआ, शायद हो सकता है दुकानदार का थोड़ा हो गया लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं, सबका नुकसान है कहीं ना कहीं। तो ये उर्वरक उपयोग के बारे में है कि सही इस्तेमाल से फायदे हैं, अगर अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है।
1: सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें
0: जी,
1: श्रोताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, खेत की मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे उससे अधिक से अधिक लाभ लिया जाए, इस बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी श्रोताओं नमस्कार, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052। श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002243 0।
2: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे सिहतिया सिंह जी इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
3: अरे आरजे खुशी, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया, उन्होंने कहा अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप में पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ देखने को लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते कि ये सब शहरों की बातें हैं लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
2: अच्छा लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुल के विस्तार में बताइएगा।
3: देखिए HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है, ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
2: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
3: हाँ और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो खुशी जी?
2: क्या सिहतिया जी, अब आप तो थोड़ा डरा ही रहे हैं।
3: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
2: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता?
3: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
2: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
3: यही तो अच्छी खबर है आरजे खुशी जी। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
2: सच में? कैसे?
3: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
2: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें।
3: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
2: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
3: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आके नुकसान करने से रोकता है।
2: ओह, मतलब कि ये बीमारी को शुरू करने से पहले ही रोक देता है।
3: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
2: तो फिर ये टीका किस लिए लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या?
3: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
2: और अगर कोई इसे बड़ी उम्र की हो
3: तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में ये टीका भी लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
2: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हुआ, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
3: यही तो सबसे अहम बात है आरजे खुशी। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
2: जरा विस्तार से बताइएगा।
3: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को सही समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
2: सही कहा आपने।
3: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वही हारेंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
3: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
2: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
3: देखिए आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें।
2: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
3: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
2: और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
3: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
2: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत?
3: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे खुशी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सिहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
3: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचती वहाँ ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पूर्वा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था। और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाती है, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा वगैरह वगैरह। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती। कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आ गया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झंकोर दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत ध्यान देना, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती भी, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
2: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
3: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
2: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
3: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और सही समय पर लिया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
2: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ,
3: बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ।
2: तो चलिए जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
2: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ आप कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
2: कुछ नया है,
1: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
2: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
1: जी
2: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणोंवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
1: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
1: जी।
3: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
1: जिसका नाम है सोच बदलो। रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
4: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
1: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
2: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
1: करेक्ट?
2: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
1: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
2: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
1: एडवाइस
2: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारी हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं, और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है, क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
3: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की

0: से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
1: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चाकू के बारे में?
2: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
1: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बारी तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बारी लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर, अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है, कुछ

0: बीते न जाए रे नाम, कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट होंगे। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब
2: सुनी ही नहीं हूँ। तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खानपान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ।
0: हाँ, प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं। जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा। हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं।
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोता? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है दोस्तों? फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा दोस्तों। फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

0: ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल है। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
3: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारू से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
6: हुती विद्रोहियों के दियात पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हुती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हुतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैस और तूर अलबहा में हुती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हुती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हुती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध हुतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
7: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी ओर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

0: सेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतिहास लिख जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस और आसमान कभी किसी की मंजिल नहीं होता, वह तो बस उड़ान की शुरुआत होता है। ऐसे ही एक छोटी बेटी थी भारत की शान, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रेरणा की मिसाल कल्पना चावला जी की प्रेरणादायक कहानी।
4: और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना। और इस महिला मंच शो में खुशी ने बताई दिया कि हम आज बात करने वाले हैं कल्पना चावला जी के बारे में। अगर आपके सपनों में उड़ान है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह बात जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है उनका ही नाम है कल्पना चावला। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। परिवार में चार भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी इन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। बचपन से ही कल्पना का नाम आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखकर रोमांचित हो जाता था। जब दूसरे बच्चे गुड़िया, गुड्डे या खेलों में व्यस्त रहते थे तब कल्पना आसमान की ओर देखती और सोचती, एक दिन मैं भी इन बादलों के पार जाऊंगी। और 8वीं कक्षा में ही उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि उन्हें इंजीनियर बनना है। पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन माँ ने बेटी के सपनों को समझा और हर कदम पर उसका साथ दिया। और अब हम बात करने वाले हैं उनकी पढ़ाई और सपनों की उड़ान।
3: कल्पना जी ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एयर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री 1982 में हासिल की, लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी साल वे अमेरिका चली गईं, वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसके बाद एक और मास्टर्स तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। उन्होंने विमान उड़ाने का परीक्षण भी लिया। वह

मैकेनिकल इंजीनियर, मल्टी इंजीनियर, ग्लाइंडर और कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ान की लाइसेंस धारी पायलट थी। नासा तक का सफर 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्रा दल में हुआ। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार कल्पना बचपन से कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो हर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि पहली अंतरिक्ष यात्रा उनकी। 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 उड़ान भरी और इसके साथ इतिहास भी बन गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में आने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। उन्होंने इस मिशन में लगभग 365 घंटे अंतरिक्ष में बिताए, 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूरे भारत में खुशहाली की लहर दौड़ आई। हर बेटी के लिए कल्पना एक प्रेरणादायक लड़की बन गई। दूसरी और अंतिम उड़ान। पहले मिशन की सफलता के बाद उन्होंने दूसरी बार STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2000 को फिर स्पेन शटल कोलंबिया अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इस मिशन में वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, चिकित्सा, नई तकनीक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण शोध शामिल थे। कल्पना पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी रही। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी।
1: दर्दनाक दिन 1 फरवरी 2003। 16 दिन का मिशन पूरा हो चुका था। पूरी दुनिया को कोलंबिया की सुरक्षित वापसी का इंतजार, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा यान टूटकर बिखर गया। उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। भारत ने अपनी बहादुरी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी प्रेरणा आज भी जीवंत है। उनका परिवार कल्पना चावला ने 1983 में उड़ान प्रतीक्षण जीन पीरिये हैरिसन से मुलाकात की और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। 1990 में वे अमेरिका की नागरिक बनी, लेकिन भारत और अपने जन्म स्थान करनाल से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके प्रसिद्ध शब्द, कल्पना चावला अक्सर कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगी। उनके ये शब्द आज भी हर युवा को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनके निधन के बाद उन्हीं के कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए, जिनमें शामिल है नासा स्पेन फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेन मेडल ऑफ ऑनर और अब हम बात करेंगे उनके नाम पर बने स्मारक। आज भी दुनिया में कई संस्थान और स्थान उनका नाम गर्व से धारण किए हुए हैं। भारत के मौसम उपग्रह कल्पना एक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवास के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला तारा मंडल की स्थापना की। नासा ने उनके नाम पर सुपर कंप्यूटर सम्मानित किया। अमेरिका की कई सड़कों, भवनों और छात्रवृत्तियों का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया।
1: उनकी कहानी क्या सिखाती है? कल्पना चावला जी की कहानी केवल एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है साथियों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने छोटी शहर से निकलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसलिए आज भी जब कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर बड़े सपने देखती है तो लोग कहते हैं एक और कल्पना चावला तैयार हो रही है। कल्पना चावला भले ही आज हम बीच नहीं है, लेकिन श्रोताओं, उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत ईमानदारी से हो और सपनों पर विश्वास हो तो करनाल की एक साधारण लड़की भी सितारों तक पहुँच सकती है। कल्पना चावला केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान का दूसरा नाम है। सपने देखिए, क्योंकि सपने ही आपको आसमान से भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे। फिर बात करने वाले हैं हम कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिली प्रेरणा के बारे में। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है महिला मंच में, आपके दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिलने वाली प्रेरणा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस बीटी की, जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने बचपन में आसमान को देखा और फिर एक दिन उसी आसमान के पार चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी की। फ्रेंड्स, किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती बल्कि उसके विचारों से होती है। उसके सोचने का तरीका ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। कल्पना चावला भी ऐसी ही शख्सियत थी। उनके विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने की नजर, उस पर चलने का साहस और अंत तक चले रहने का धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मंत्र है। आज हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। कल्पना चावला जी कहती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कल्पना चावला जी ने भी यही किया। करनाल जैसे छोटे शहर से निकलकर नासा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, हमने कल्पना चावला जी के बारे में जाना, लेकिन उन्हीं के लिए उनकी जो कहानी है आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुका है। समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कल्पना चावला की कहानी भी ऐसी ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति हमें कुछ नया सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के युवाओं, बच्चों और हम सभी को कल्पना चावला जी के जीवन से क्या सीख मिलती है। बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। कल्पना चावला जी एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी। उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि भारत की कोई लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई और कभी छोटी नहीं होने दी। आज कई युवा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन कल्पना चावला की कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर सपना बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कल्पना चावला जी ने भी दिन रात पढ़ाई की, रिसर्च की, कठिन ट्रेनिंग पूरी की और हर चुनौती का सामना किया। उनकी सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और ये बात सही है, सपना सिर्फ आप देखते रहेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम रुक जाए। कल्पना चावला जी ने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। उन्होंने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ी, नई तकनीकी सीखी, रिसर्च की, खुद को लगातार बेहतर बनाया। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है। अगर हम रोज कुछ नया सीखते रहेंगे तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा है। इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर ही निकल जाए तो सपने पूरे नहीं होते। कल्पना चावला जी ने अपना समय सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाया। यही कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी तक पहुंची। समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। और कहते हैं न श्रोताओं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, तब भी कल्पना चावला जी कहती थी, मैं कोशिश करूंगी। उन्हें खुद पर भरोसा था। आज के युवाओं को भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। अगर

आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और इस समाज में लड़का और लड़की बराबर है। कल्पना चावला जी ने साबित किया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने उन सभी धारणाओं को तोड़ा जिनमें कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। आज हर बेटी को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वह मेहनत करेगी तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और हर बेटे को यह सीखना चाहिए कि बेटियों को बराबर का सम्मान और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला जी ने कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ा वे हमेशा अपने स्कूल, अपने देश को याद करती थी। आज की पीढ़ी को भी अपनी भाषा, संस्कृति और देश पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाए पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और मुश्किलों से कभी भागिए मत। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी हिम्मत रखते हैं। कल्पना चावला ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय से भागने के बजाय उनका समाधान खोजिए। सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कल्पना चावला की उपलब्धियां सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। उनकी सफलता ने लाखों बच्चों, खासकर बेटियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाए। और इस शो में युवाओं के लिए विशेष संदेश, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और शिक्षकों का आदर्श कीजिए, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कभी यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल्पना चावला ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं दी बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, सीखते रहो, डरो मत और कभी हार मत मानो। तो याद रखिए, कल्पना चावला का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो श्रोताओं, बस बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ इस महिला मंच शो में। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

0: तो दोस्तों, एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक अभी हमने लिया था और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर महिला मंच, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में और उनका तीसरा विचार बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आप सभी तक साझा करना चाहती हूँ। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा जुनून होगा जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर देता है। आज हम छोटी छोटी प्राणियों में अपना लक्ष्य बदल देते हैं, लेकिन कल्पना जी ने कभी अपना सपना नहीं बदला। उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, अंतरिक्ष। लक्ष्य बदलते रहेंगे तो सफलता भी दूर होती जाएगी। साथियों, आपने कभी सोचा है आपका सपना क्या है? क्या आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की थी या सिर्फ सोच रहे हैं? एक दिन करेंगे। याद रखिए, सपने इंतजार नहीं करते। जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, उसी में अपना भविष्य खोजिए। कल्पना चावला जी को बचपन से ही हवाई जहाज पसंद थे। लोगों ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी है आपका दिल क्या कहता है। अगर कल्पना चावला जी दूसरों की बातें सुन लेती तो शायद आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। और उनका पांचवा विचार, डर होना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। अंतरिक्ष मिशन आसान नहीं होते, हर उड़ान में खतरा होता है, लेकिन कल्पना चावला जी ने कभी डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खतरों को समझा, लेकिन अपने सपनों को उससे बड़ा रखा। और उनकी सीख, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मुरादाबाद। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और आज जो है ना, रविवार का दिन है, और रविवार का मतलब है काम थोड़ा कम, आराम थोड़ा ज़्यादा। और अगर साथ में हूँ, म्यूज़िक और मस्ती मिल जाए तो दिन भर कहते ना एकदम शानदार हो जाता है। तो आपका हेलो फरमाइश में स्वागत है। और आज खुशी जी की जगह मैं आपका साथ दूंगा, पूरा भाई साहब, पूरे 2 घंटे आपके साथ, आपकी फरमाइश। हाँ, तो अगर आपकी फरमाइश है तो ज़रूर हमें बताएं। और वही आज प्ले होगी 9837896896 पे। एक शायरी इस शो के लिए। रविवार की शाम है, चेहरे पर मुस्कान रखिए। हाँ जी, थोड़ी सी कहते ना, मुस्कान जो है चेहरे पे हमेशा ऐसी रखी जाए कि सामने वाला भी सोचे यार ये हंस क्यों रहा है। हाँ, तो इस रविवार की दोपहर में आप चेहरे पे मुस्कान रखिए, कुछ पुराने गाने और कुछ नए गानों का अरमान रखिए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए जनाब, आज बस हंसिए और दिल में थोड़ी सी जान रखिए। तो शुरुआत करेंगे प्यारे से गाने के साथ, आपकी भी फरमाइश होगी उसको भी सुना जाएगा। 9837896896 पर कॉल करें और खूब सारी बातें करते हैं आपके फेवरेट गानों की।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां ना इस समय आपकी फरमाइशों के लिए हम कहते हैं ना बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं, कब आपकी फरमाइश आए और कब जो है हम उसे पूरी करें। तो चलिए हमारे बात करते हैं पहले कॉलर से और पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो इस समय। हेलो सर, कैसे हैं आप?
1: ड्यूटी कर रहे हैं आपके लाइन में?
0: ड्यूटी कर रहे हैं इस समय? आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सर?
1: इस टाइम तो मानसरोवर में ड्यूटी कर रहे हैं।
0: मानसरोवर में किधर?
1: ये पैराडाइज होटल से आगे।
0: पैराडाइज होटल के आगे हैं आप इस समय? सही है। इस समय मानसरोवर वाली जो पैराडाइज वाली होटल है उस सड़क के कैसे हाल चाल है? पहले से सही हो गई है या अभी भी वैसी है?
1: ये समझ लो जो गड्ढे कम थे अब वो ज्यादा हो गए जो बारिश पड़ी है तो।
0: हाँ, इस बारिश की वजह से एक्चुअली जहाँ जहाँ काम चल रहा था मुझे भी ऐसी लग रहा है कि जहाँ काम चल रहा था सही उसका होने का वहाँ थोड़ी और देरी हो जाएगी।
1: ये तो रोड मानसरोवर वाली हो चाहे तुम्हारी लैंडपार वाली हो 2027 में ही पूरी होगी।
0: क्या बात है, चलिए साहब हम तो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी पूरी हो और 2027 आपने बोली तो 2027 तक पूरी हो ही जाए।
1: और सुनाओ।
0: बस आप बताइए क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अभी?
1: कोई सा भी आप अपनी मनपसंद से एक गाना सुना दो।
0: चलिए
1: तो कल बात होगी आपके शो में। गाने ढूंढ कर रखूंगा ना।
0: ठीक है कल उस शो के लिए आप गाना ढूंढ कर रखिएगा। अभी मैं एक फरमाइश, एक बढ़िया सा सॉन्ग आपके लिए प्ले कर देता हूँ। ठीक है नरेंद्र जी। तो दोस्तों नरेंद्र जी ने कहा है कि आज आप कोई सा भी अपनी पसंद का गाना प्ले कर दीजिए। तो देखिए ये भी एक फरमाइश होती है कि हाँ कुछ गाना आपकी पसंद के भी चलते हैं। तो ज़रूर आपकी भी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर हमें कॉल करें 9837896896। आज का समझिए यही लक्की नंबर है, जब यही दिल कि कोई आपका गाना जो आपको प्ले करवाना है तो आज इसी नंबर पे करना पड़ेगा। तो ठीक है करते हैं बात खूब सारी और इस गाने को फरमाइश को पूरा करते हैं।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं, तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और आज खूब संडे वाली मस्ती हो ही रही है, और भाई साहब क्यों ना हो, क्योंकि कल इतने धमाकेदार जो परफॉर्मेंस दी है इंडियन क्रिकेट टीम ने, गोल्ड मेडल भी जीत लिया है साहब, और किसे हरा के वो तो आप सबको ही पता है कि किसे हराया है। एशियाड गेमों में कल इंडिया की टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, एकदम जैसे कहते हैं मेडल, उन्हें कहते हैं भैया तुम नहीं जीत पाओगे, तो सच में ही नहीं जीत पाते वो लोग। तो कल खूब धूमधाम से मेडल जीता है, और क्रिकेट के अलावा भी हॉकी में भी और कबड्डी में भी हमें एशिया में गोल्ड मेडल मिला। तो भाई साहब डांस और पार्टी तो बनती है। तो चलिए अपने दूसरे कॉलर से बात करते हैं, पूछते हैं उनकी क्या फरमाइश है इस समय। हेलो हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप
1: जी? नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी सर, मैं सुजीत राय, जिला भागलपुर बिहार, कहलगांव से बात कर रहा हूं सर।
0: क्या बात है सुजीत जी, तो इस समय कैसा मौसम हो रहा है आपके बिहार में?
1: बिहार में तो सर क्या बताएं, थोड़ी बहुत उमस वाली जिसे गर्मी कहते हैं वही है।
0: अच्छा, मैंने कहा क्या पता मौसम ने वहां पे भी करवट ले रखी हो, बारिश हो रही हो।
1: नहीं नहीं अभी तो मौसम ने करवट नहीं ली है। हाँ इधर 10 दिन पहले हुई थी बारिश, लेकिन इधर फिर वही उमस वाली गर्मी जो परेशान करती है। तो और अब ऐसा लगता है ना अखिल भाई कि धीरे धीरे मौसम ऐसे ही करवट ले लेगा और अचानक से ठंड आ जाएगी, है ना?
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अब पता नहीं चलेगा कब एकदम बाजी पलटी आएगी और कब आप हाफ स्वेटर में घूमते हुए नजर आएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो क्या करते हैं आप?
1: अखिल भाई, वैसे तो मैं, मुझे बताने में थोड़ी झिझक हो रही, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, मैं दिव्यांग हूं, आंखों से बचपन से देख ही नहीं सकता हूं।
0: तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है. आपने ऐसा कोई बहुत मतलब ये तो अच्छी, क्या कहते हैं, मैं तो कहूँगा आपने इतने पॉजिटिव वे में करके बोली है बात, तो मैं तो इसे कहूँगा कि झिझक नहीं होनी चाहिए. और आप मन से इतने स्ट्रांग है, दिल से इतने स्ट्रांग है, कितनी अच्छी तरीके से आपने बातें करी हैं, तो ये शब्द अच्छा नहीं है.
1: नहीं, कई लोग, क्योंकि हमें कई लोग अंधा अंधा कह करके बुलाने लगते हैं ना, इसलिए थोड़ा मैं।
0: तो वो तो सर आपको ही पता है वो लोग किस चीज़ से अंधे हैं, तो उनको तो कहने दीजिए, दुनिया है कहती रहेगी. तो कोई नहीं, आप बाकी पूरे टाइम आपका दिन कैसे निकलता है ये बताइए आप.
1: सर, रेडियो सुनता हूँ और बचपन से म्यूजिक में रुचि है,
0: क्या बात है. तो म्यूज़िक
1: और जब आप लोग जैसे आरजे मिलते हैं बात करने के लिए, तो बात करके अपना दिल खुश कर लेता हूँ।
0: नहीं, बहुत ही बढ़िया सुजीत जी. कोई गाना गुनगुनाते भी हैं कैसे? म्यूजिक में किस तरह का शौक है?
1: म्यूजिक में मैं तो सबसे ज्यादा पुराना गाना का ही शौकीन हूँ। नए गाने भी आजकल के जमाने में चलते हैं, लेकिन जो नए गाने का अगर मैं फैन हूँ, तो अरिजीत सिंह का ज्यादा मैं फैन हूँ।
0: अरिजीत सिंह की तो साहब पूरा मुरादा है, मतलब मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान फैन है. और हिंदुस्तान क्या, आप मतलब सभी मुल्कों में इतना, जो भी म्यूज़िक सुनने वाला और कोई भी अगर इंडियन म्यूज़िक या बॉलीवुड म्यूज़िक सुनता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह को तो सुन ही रखा.
1: और इसलिए अखिल भाई, क्या है कि अरिजीत जी क्लासिकल सॉन्ग बहुत ज्यादा उन्होंने गाए हैं, तो
0: हाँ जी. और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है अजीत जी की, अरिजीत सिंह की. जितनी भी मैंने कभी कभी जब भी रील्स देखता हूँ या उनका देखता हूँ, तो बहुत ही कहते हैं ना एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी वाली उनकी वीडियोस सामने आती हैं. दूसरा अभी मतलब एक किस्सा मेरे को उनका याद है और अभी भी ध्यान में है कि अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में गए थे वो, और जैसे नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं, पहुँचे आराम से, क्यू में खड़े रहे, बच्चे का वेट किया, उसके बाद क्लास में गए. कोई ऐसा अपना सेलिब्रिटी टच होता है वो बिल्कुल भी आसपास नहीं रखा होता है ना, जैसे कोई भाई सिंगर बहुत है अपने साथ चार बाउंसर लेके चल रहा है या चार वीआईपी लोग उसके चल रहे हैं कि भैया जगह दो और ये करो, मगर वो बिल्कुल एकदम डाउन टू, मतलब एकदम जैसे नॉर्मल सिटीजन होते हैं वैसे ही आपसे इंटरेक्ट करते हैं.
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए सुजीत जी, कौन सा गाना आपकी फरमाइश पर सुनाई जाए?
1: आज हमें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत है, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है,
0: क्या
1: छोटी
0: बात
1: सी
0: है.
1: बात का फसाना बन जाता है, ये वाला
0: ये
1: गीत।
0: वाला गीत तो मुझे लग रहा है आपने ही आधे से आधा गा दिया है, तो जरूर इस गाने को सुनते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं. और खूब बहुत अच्छा
1: और
0: लगा
1: अखिल
0: आपके साथ.
1: भाई,
0: हाँ
1: अखिल
0: जी,
1: भाई, अखिल भाई,
0: क्यों
1: कुछ दोस्तों का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि
0: नहीं क्यों नहीं. अरे पहले पहले लीजिए नाम उनके.
1: रेडियो ने पूरे ऑल इंडिया लोगों से हमें दोस्ती करवाया है, जिसमें
0: हाँ जी.
1: कि फर्स्ट में आप हैं,
0: ये तो
1: और
0: आज ही
1: हमारी
0: हुई आपसे दोस्ती हमारी, और बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपसे ये बात.
1: और हमारी खुशी दीदी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, और हमारे एक है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आते हैं जेठालाल जी, समझ
0: हाँ जी,
1: गए होंगे आप
0: समझ गए, हम समझ
1: उनको कैसे भूल सकते हैं। अगर
0: गए.
1: उनको भूल गए, तो समझिए कि सभी लोगों को मैंने भूल गया।
0: नहीं, साहब हम आपको नहीं भूलने देंगे और हम भी आपको नहीं भूलेंगे. और ये गान आप दोस्तों के नाम और आप अपने जो और भी चाहे थे उनके नाम जरूर बोलिए.
1: और हमारे है ना परवेज भाई हैं, बिल्कुल पूरा वाराणसी से, एक चंद्र अग्रवाल जी हैं, प्रात्या छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, हालांकि बुजुर्ग हैं बेचारे और बहुत अच्छे से बातें करते हैं। और क्या है ना अखिल भाई, आप जैसे दोस्त जब मुझे मिलते हैं, मैं अपने बारे में बताऊं ना, कि मैं स्मार्टफोन चलाता हूँ और मैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जैसे इंस्टा, फेसबुक, सब कुछ चलाता हूँ मैं।
0: क्या बात है, क्या बात है. आपकी आईडी भी है कोई इंस्टा पे?
1: हाँ जी, सुजीत राय नाम से अगर आप सर्च मारेंगे फेसबुक पेज पे, तो आप हमारी आईडी मिल जाएगी आपको, सुजीत
0: किस नाम से है सर?
1: राय के नाम से। जी
0: सुजीत राय. जरूर जरूर जरूर आपको फॉलो किया जाएगा.
1: जी और फेसबुक चलाते हैं, और हम जब जैसे आकाशवाणी वगैरह में जब भी गाना वगैरह भेजते हैं, तो फेसबुक पे कमेंट या मैसेज के द्वारा भेजते हैं गाना, और काफी लोग जैसे आप लोग प्यार देते हैं, बहुत से लोग हमें प्यार देते हैं रेडियो के, जितने भी आरजे लोग होते हैं सब लोग हमें प्यार देते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, जरूर जरूर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात लगी आपकी। और ये, हाँ जी बोलिए।
1: और रेडियो ने हमें इतना करीब लाया, देखिए हमें पता नहीं था कि आज आपसे भी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन अब तो हमें दोस्ती का कोई समय नहीं होता है अखिल भाई,
0: बिल्कुल सही।
1: और आज से आप भी हमारे दोस्त हुए,
0: बिल्कुल सही, और आज आज से आप भी हमारे दोस्त हुए, हम भी यही कहेंगे आपसे सेम टू सेम।
1: बिल्कुल, और हम आपसे यही कहेंगे जब भी आप आएंगे हमारे लिए एक गाना जरूर आप अपने तरफ से सुनवाइएगा हमारे लिए।
0: जरूर जरूर सुनवाएंगे, गाना भी सुनवाएंगे, और जो बात होती है ना आपकी कभी कभी जो दिल से दिल की बात होती है वो भी आपसे करेंगे। मैं शो, हमारा एक शो है 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे रात में, तो जरूर कभी कोई दिल की बात होगी तो जरूर हाँ आपसे भी करेंगे।
1: अरे हम तो कोशिश करेंगे कि लालू को भी बुलाता बाजे फैम पे बुलाएं।
0: तो जरूर जरूर,
1: लेकिन क्या करें अब लालू जी अभी कैसे कैसे आए हैं हमारे बारे में, क्या तुम लोग बता रहा है भाई, किससे बात कर रहा है लालू जी, अखिल भाई है ऐसे मुरादाबाद वाले। हेलो अखिल जी, क्या हाल है जी?
0: बढ़िया बढ़िया लालू जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: अरे भाई कैसा, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत हमारी उम्र हो गई अखिल भाई, है ना?
0: कहाँ हैं आप, दिल्ली में हैं या इस समय बिहार में, पटना में हैं?
1: अरे पटना में हैं, पलटू जी हमको तो छोड़ करके राज्यसभा चले गए।
0: बहुत जरूर आपसे ही मुलाकात करेंगे, आपके दोनों लड़के खूब धुरंधर मचाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। लालू जी लगे रही है।
1: अच्छा वो तेजस्वी और तेज प्रताप के विषय में बोल रहे हैं ना? अरे वो दोनों तो है, कभी करेंगे आपसे बात, लीजिए हमारा किलवा से बात कर लीजिए।
0: सुजीत जी कैसे हैं? सुजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपने लालू जी से बात कराई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भाई की आपसे लालू जी से बात हो गई, और ऐसे ही बात कराते रहेंगे, है ना?
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, और आपसे मिलते रहेंगे, मुलाकातें और बातें खूब होंगी।
1: ओके ओके,
0: नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ सुजीत जी जो जुड़े थे बिहार से, और कह रहे थे साहब बच के रहना और ये गाना मेरा जरूर प्ले करना, तो जरूर उनकी भी फरमाइश पूरी करते हैं। आपकी भी कोई फरमाइश है तो 9837896896 बस सिर्फ यही डायल करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और चल रही है हेलो फरमाइश। इस समय हमारे पास एक मैसेज आया है शायरी का और ये शायरी लिखी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्रियंका सिंह जी ने। इस बाजार में हम कहीं खो जाएंगे, एक दिन गहरी नींद में सो जाएंगे, ये बात फिर मजाक में भी कहना नहीं, तुमसे बिछड़ के तो हम पागल हो जाएंगे। तो क्या बात है, और प्रियंका जी ने बहुत ही बढ़िया शायरी लिखी। तो चलिए अपने नए कॉलर से बात करते हैं, पूछते हैं उनकी क्या फरमाइश है साहब। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका, कैसे हैं आप?
1: फरमाइश सर, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं और क्या नाम है आपका?
1: सर, शेरपुर माफी से सालिम अंसारी बात कर रहे हैं सर। खाना खा के आए थे दोस्त के यहाँ शादी में और अभी आंटी लेट हैं, सो सुन रहे हैं।
0: तो दोस्त के यहाँ शादी में मतलब खाना खा के आगे लिफाफा भी दे के आए या नहीं लेके आए?
1: लिफाफा दे के आए सर।
0: दे के आए लिफाफा?
1: बिना दिए देखा थे सर।
0: अरे ये तो मजाक है, हमें ही पता है बिना लिफाफा दिए। ये तब होता है जब कॉलेज टाइम में आपके घर के आसपास शादी हो रही होती है और बैंक्वेट हॉल में जाके खाने का आनंद ले लेते हैं आप।
1: खासतौर से सिस्टर की शादी थी ना, सिस्टर की शादी में देना बेहतर समझते हैं ज्यादा।
0: नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्या कहते हैं आप, अच्छा मतलब मेरे को तो पूरा है कि अच्छा खा के आए होंगे और खूब मस्ती करके आए होंगे। भाई दोस्त के यहाँ शादी है तो बिल्कुल एकदम धमाल तो मस्त है। सही है साहब, ये आपकी आज शादी वाली बात से ना वो मेरे को थ्री इडियट मूवी में सीन याद आ गया, आमिर खान और जिसमें शादी में एंट्री चले गए थे और खा पी के पूरा मस्त होके लिफाफा अपनी जेब में डाल के घूम रहे थे मगर उन्हें पकड़ लिया गया था। बोले आप किसकी तरफ से? बोले भाई साहब लड़की वाले की तरफ से। वो लड़की वाले कह रहे हैं भाई साहब आप किसकी तरफ से? वो कह रहे हैं लड़के वाले की तरफ से। तो चलिए आप बताइए क्या फरमाइश है आज आपकी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: सर गाना वो जुगनी जुगनी, बॉबी देओल का।
0: जुगनी जुगनी किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप? अंसारी जी,
1: मोहम्मद हसन है, अयान अंसारी है, अजेश अनूर, अक्षय अनूर, रूहानी एंड मुस्कान।
0: क्या बात है क्या बात है। तो चलिए ये गाना करते हैं प्ले आपकी।
1: सर आप आइए सर, मेला देखने आइए छड़ियों का सर, सेफ में बहुत अच्छा मेला चल रहा है सर।
0: जरूर जरूर, अगर आएंगे उधर मेले की तरफ देखने तो जरूर आपसे भी करेंगे।
1: परसों तो बहुत ज्यादा भीड़ थी सर, सौ आदमी थे परसों।

0: इस समय बहुत है, क्योंकि अभी पहाड़ों पे मतलब भीड़ से ज्यादा है, पहाड़ों पे भी इस समय बहुत भीड़ है। नैनीताल और इधर भवाली और भीमताल की तरफ तो लोग रात में बेचारे सड़कों पे ही सोने पे मजबूर हो गए।
1: ये मौसम घूमने का आना चाहिए।
0: और लगातार 3 दिन की छुट्टियां भी मिल गई है ना, तो 1 दिन की उन्होंने सबने अपनी तरफ से कर ली छुट्टी, बोले भाई साहब चलो फ्राइडे सैटरडे संडे खूब एंजॉय करेंगे।
1: वही तो बहुत अच्छा लग रहा।
0: चलिए तो आप भी एंजॉय कीजिए संडे की शाम को अब अपने इस गाने के साथ।
1: ओके सर, थैंक यू।
0: ओके अंसारी जी। तो अंसारी जी भी जो हैं अभी अभी दावत से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे को मेरी फरमाइश का गाना मिल जाए। मतलब बहुत बढ़िया अंसारी जी, दावत भी और आज अपने गाने का मतलब फरमाइश भी, तो एकदम सोने पे सुहागा। तो चलिए आनंद लेते हैं इस गाने का, अंसारी साहब की फरमाइश का।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और साहब बिल्कुल सही सुना आपने, फरमाइश की बौछार है। आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई गाना है जो आप अभी सुनना चाहते हैं? जैसे अभी अंसारी साहब ने सुना था खाना खाने के बाद, तो ऐसा है आप भी अपना खाना खाने या आइसक्रीम खाने के बाद भी सुन सकते हैं साहब। ऐसा कहते ना, मौका मिलता है कभी कभी। गाड़ी चलाते समय और संडे का आनंद लेते समय, संडे में तो वैसे ही मोस्टली टाइम सोचते हैं कि भैया चलो आराम ही कर लो, अब तो संडे है, पूरा दिन जो है सोना और प्लानिंग करने में निकल जाता कि भैया आज जो जो हमारे पुराने काम थे ना उन्हें निपटाना है, चाहे कैसी हो जाए, वरना ये संडे फिर घूम के 7 दिन बाद ही आना है। और कुछ लोग संडे को सुबह ही 7 बजे उठ जाते हैं, तो कुछ लोग संडे को सुबह 7 बजे उठ के सिर्फ करवट बदलते, कहते हैं यार, मम्मी कहती है भैया उठ जाओ बेटा उठ जाओ, दोपहर हो गई, और बेटा ये बोलता मम्मी संडे है, सूर्य भी जो है ना आज, सूर्य भगवान भी जो है आज आराम कर रहे हैं, तो जब वो आराम कर रहे हैं तो हम ही करने दो। तो चलिए हम नहीं कर रहे हैं आराम, मगर आपकी सारी फरमाइशों को बिल्कुल बैक टू बैक प्ले कर रहे हैं। ये जो अभी फरमाइशी वाला सॉन्ग प्ले किया गया था, ये हमारे पास फरमाइश आई थी मुजफ्फरनगर बिहार से, और श्रोता हैं हमारे आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार जी ने ये फरमाइश भेजी थी, चांद छुपा बादल में। हाँ जी साहब, बादल में तो चांद छुपा ही है, और गाना बहुत ही बढ़िया था, सलमान खान और ऐश्वर्या राय ऊपर के ऊपर फरमाया गया सॉन्ग है। और चलिए अपने नए कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो कौन सी फरमाइश लेके आए। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया साहब, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सागुप्ता
0: नदी पार करके भी बोल लिया जी, कभी कभी हमेशा नदी के ऊपर से ही बोलेंगे आप।
1: मैं तो ठंडी हवा आती है ना सर उधर,
0: कहीं कहीं ठंडी हवा के चक्कर में हवा ना हो जाए उस्मान जी आप।
1: ये तो हो जाता था, कभी कभी हो जाता।
0: और इस समय क्या कर रहे हैं आज?
1: आपका प्रोग्राम सुनना है, गाना हमने सोचा कि हम भी गाना सुन लेते हैं, बढ़िया गाने अच्छे अच्छे कर रहे हैं।
0: अरे बस आप जो गाने सुन लेते हैं ना, तो दूसरे श्रोता कहते हैं कि भाई साहब अभी उस्मान जी, आप उस्मान जी का कॉल उठा लेते हैं, आप हमारी बात नहीं कर पाते, हमसे नहीं कर पाते, क्या कहेंगे उस्मान जी उनके लिए,
1: कॉल पहुंच जाती है आपके पास।
0: तो चलिए उस्मान जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: अरे भाग की बात है, कॉल लग जाती है।
0: बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, लगाते रहिए साहब, कॉल जब लगाते रहेंगे तो जरूर उठेगी। हम चांदनी का सुना देते हैं आज आपको, है ना? हापी को सुनाएंगे आप अकेले सुनना, हम सभी से कह देंगे भैया सब अपनी कानों में रुई डाल लो। सभी श्रोता सुनेंगे, किसी का नाम आप लेना चाहेंगे अपने, किसी दोस्त का या किसी पड़ोसी का? सुख और दुख दोनों में साथ देते हैं आपका,
1: दुख सुख में साथ देते हैं।
0: तो चलिए ये गाना प्ले करते हैं, और इस गाने को सुन के भी वो आपका पूरा साथ देंगे, और आपके पीछे गाते हुए आएंगे चांदनी और मेरी चांदनी।
1: अरे वेरी गुड सर,
0: ठीक है उस्मान जी,
1: बहुत प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से चालू करते हैं सर।
0: धन्यवाद उस्मान जी, और आपसे बातें होती रहेंगी, और खूब हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप बिल्कुल एकदम दिल खोल के सारी बातें करते हैं और हंसते हैं हमारे साथ।
1: शुक्रिया सर, मेहरबान,
0: धन्यवाद उस्मान जी। चलिए उस्मान जी की फरमाइश को पूरा करते हैं, और आपकी भी कोई फरमाइश है तो 9837896896 आप ही के पास है साहब।

0: नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
1: बिन पूछे ये काम किया,

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और खूब सारी फरमाइशें जो है ना आज हमारे पास आई हैं, उसमें से कई सारी फरमाइशें हमारी तरफ से पूरी भी हुई हैं और आपकी भी फरमाइश अभी जारी है साहब। तो कॉल करें 9837896896 पे, ज़रूर हमसे बात करें और अपनी फरमाइश को प्ले करवाएं। तो चलिए अपने नए लिसनर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका सर?
1: हेलो फरमाइश सर, मेरा नाम है फरोज खान।
0: फरोज खान जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं ये फर्नीचर का काम करता हूँ।
0: फर्नीचर का काम करते हैं, कहाँ पे है आपकी फर्नीचर की शॉप?
1: मैं ये कांट रोड दीकनपुर छजलाइट में मेरा शोरूम है अपना फर्नीचर वाला।
0: क्या बात है साहब, तो
1: नूर फर्नीचर हाउस के नाम से।
0: नूर फर्नीचर
1: सामान मिलता है,
0: शादी का बिल्कुल टोटल सामान मिलता है।
1: जी जी जी।
0: आपकी शादी हो गई है?
1: जी जी सर बिल्कुल।
0: तो फिर सही है, फिर आपका तो सामान यहीं से शादी से पहले था बिजनेस, या शादी के बाद हुआ था ये बिजनेस चालू?
1: नहीं नहीं, तो सर शादी से बहुत पहले से है, और जो है पापा के साथ बिजनेस संभाल लिया है पढ़ाई के साथ साथ।
0: बहुत ही बढ़िया फिरोज जी। तो
1: जी
0: क्या पूरा दिन आपका कैसे निकलता है, व्यापार में लगा रहता है पूरा दिन?
1: सर सुबह आते हैं अपना बच्चों से फ्री होके अपना जो है शॉप पर आ जाते हैं, अपना कारोबार करते रहते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं, और आपका एफएम मुरादाबाद लग जाता है 9 बजे से, और शाम को 7 बजे बंद होता है दुकान पे, फिर जाके 8:30 बजे फिर शुरू हो जाता है घर जाके 2 घंटे के लिए।
0: सही है सर, बहुत ही बढ़िया। हमें
1: ना आपका जो शो है ना, ये जो जैसे मतलब हम किसी के पास तो जाके बैठ नहीं सकते, काम करते रहते हैं।
0: हाँ जी,
1: कोई हमारे पास आके बैठ गया, बात हो गई तो आवाज कम कर दी इसकी।
0: बिल्कुल सही।
1: हाँ ये है कि आपके जो ना मतलब थोड़ी सी जो ना वार्तालाप हो जाती हैं तो ये सुनने को मिल जाता, थोड़ा आप जो चर्चा करते हैं इधर उधर की विषय मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल हाँ, तो इस तरीके से आप कनेक्ट रहते हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा
1: न्यूज मिल जाती है, मुरादाबाद की जानकारी मिल जाती है यहीं बैठे बैठे सर एक जगह।
0: तो बहुत ही मतलब हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप पूरा रेडियो का पूरा फायदा उठाते हैं साहब, पूरा।
1: जी सर मैं बहुत फायदा उठाता हूँ। वैसे देखो सॉन्ग तो हमें सुनने हैं, हम यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं सर। आजकल यूट्यूब पे कौन सा सॉन्ग नहीं है सुन सकते हैं, बस यहाँ पर सर जो सॉन्ग हम फरमाइश करते हैं ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है, और फिर जो हम तो फरमाइश करते हैं और भी लोग जो फरमाइश करके सॉन्ग सुनते हैं वो और भी बेस्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉन्ग हम मिस कर देते हैं, हम सुन ही नहीं पाते यूट्यूब पे भी।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही
1: जी।
0: तो अच्छा ये बताइए फिरोज जी कि कोई अगर फर्नीचर ले तो सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखे अपने?
1: सर सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि रेट देखे, अगर कस्टमर को रेट महंगे बता रहा है तो समझ लीजिए कि उसकी जो है ना क्वांटिटी बढ़िया रहेगी।
0: अगर प्राइस ज्यादा बताएंगे तो उसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया रहेगी।
1: बढ़िया रहेगी, अगर लो प्राइस में जा रहा है ना कारीगर कोई भी हो या मतलब जो है दुकानदार हो, तो वो समझिए कहीं ना कहीं कटौती कर देगा कुछ ना कुछ।
0: तो ये लो प्राइस और हाई प्राइस कैसे पता चलेंगे किसी कस्टमर को?
1: सर मटेरियल के ऊपर होता है ना, जैसे मतलब कुछ बंदे जो होते हैं ना, मतलब जो एक मार्केट में इस टाइम पार्टिकल बहुत चल रहा है बहुत ज्यादा,
0: ओके,
1: उसमें बेड ज्यादा होता है लेकिन जो फिनिशिंग भी अच्छी दिखाई देती है उसमें।
0: तो जो बेड आजकल जैसे बन रहे हैं तो वो किसी स्पेशल प्लाई बोर्ड के या किसी लकड़ी के, क्या किस चीज के बाद ज्यादा बनते हैं और कौन से ज्यादा मजबूती रहती है?
1: अच्छे प्लाई बोर्ड के जो बेड बनेंगे वो होते सर जो प्लाई में बनते हैं, 18 mm के जो प्लाई में अगर सामान आपका बना हुआ है, बेड अलमारी कुछ भी चीज बनी हुई है, तो वो सबसे बेस्ट है।
0: अच्छा।
1: और आजकल मार्केट में जैसे LDHMR भी चल रहा है इस टाइम, वो भी अच्छा होता है।
0: ओके ओके, तो मतलब
1: क्वांटिटी ऐसा होती है ना सर रेट के हिसाब से, मतलब हमने मानो आपसे रेट ले लिया और हमने बिल मटेरियल काम ले लिया, तो हम उसमें क्या करते हैं थोड़ी बहुत कटौती कहीं ना कहीं कर देंगे।
0: ओके।
1: तो वो चीज सही नहीं है, रेट जो है ना अच्छे होंगे तो माल भी अच्छा लगेगा उसमें, क्योंकि हमारा दिल भी खुश होगा काम करते हुए और आपका दिल भी खुश होगा काम कराते हुए।
0: बहुत बढ़िया बात कही आपने फिरोज जी, तो जरूर इस बात का जो भी हमारे श्रोता हैं, और उन्हें कहते हैं ना कभी कभी कोई चीज़ें कुछ बातें जो हैं आपस में सुन के ही पता चलती हैं, किसी जो व्यापार कर रहा है वो अपनी बातें अच्छे से बता सकता है इन चीज़ों में। तो ज़रूर अगर
1: कुछ क्वांटिटी ऐसी बता दी, कुछ जो रेट बता देते हैं हाई फाई बता देते हैं तो वो भी गलत है, नॉर्मली रेट के हिसाब से जो रेट बनते हैं ना अपने अपनी जिसमें मजदूरी भी निकल जाए और पार्टी का सामान भी के पैसे भी निकल जाए तो वो सबसे अच्छा बेस्ट होता।
0: तो कोई एफएम श्रोता सुनने वाला जो एफएम सुन रहा हो और कभी आपके पास पहुंचे तो उसे क्या फायदा होगा? एकदम बढ़िया क्वालिटी का माल मिलेगा और उसके अलावा क्या फायदा होगा उसे?
1: उसको मैं सर अगर ऐसा नंबर आया तो मैं कम से कम मैं लो प्राइस में उनका जो है बेहतरीन वाला बहुत शानदार वाला काम करके दूंगा।
0: चलिए जरूर, बहुत ही कोई ना कोई अगर पहुंचे और कोई कहे कि हाँ जी हम FM पे हमने आपकी बात सुनी थी तो जरूर उसे कुछ ना कुछ फायदा।
1: मेरा अपना जो क्या नाम है कारोबार है, ये जो शॉप है मेरी अपनी, ये सजलेट कांट रोड है, सजलेट नायरा पेट्रोम के सामने, ढाका धर्मपाटा।
0: क्या बात है, तो चलिए अब आप बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, कौन सी फरमाइश?
1: सैड सॉन्ग की बड़ी अच्छा लगता है मेरे को, बहुत टाइम हो गया सुने हुए। वो सैड सॉन्ग है, राजा मूवी का सॉन्ग है, जा सजना तुझको बुला दिया।
0: अरे क्या बात है,
1: संजय कपूर की जो आवाज आएगी ना वो बहुत मस्त लगती है उसके बोल मुझे।
0: चलिए साहब ये भी फरमाइश पूरी करते हैं, मतलब आज खाना वाना तो आप लेके आए थे साथ में, ये खाना भिजवाया जाता है भाग?
1: खाना तो सर घर पास में ही है, समथिंग 1 किलोमीटर, तो मैं डेली मतलब गरम खाना खाता हूँ घर जाकर ही।
0: तो आज क्या ठंडा मिल गया जो एकदम सैड सॉन्ग याद आ गया आपको?
1: सैड सॉन्ग सर बहुत मतलब अच्छे लगते हैं मेरे को।
0: चलिए जरूर, गाना तो पता है क्या होता है, गाने के सैड और हैप्पी नहीं होता, गाने में तो वो चीज है जो बिल्कुल आपके दिल तक छू जाती है ना, जो आपको बिल्कुल पसंद करती है, तो उसके बाद
1: वही सर सैड सॉन्ग में जो है ना मतलब दिल को बातें छू जाती है, बाकी तो हम डांस तो अच्छे सॉन्ग कर ही लेते हैं।
0: तो चलिए साहब आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, किसी का नाम किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये? ठीक है जी, आज ऑल सभी को आपने ये डेडिकेट कर दिया है और सभी इस गाने का आनंद लेते हैं। धन्यवाद फिरोजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू।
0: तो ये थे हमारे साथ फिरोजी जो फर्नीचर का काम करते हैं, इनका बिजनेस फर्नीचर का है, और कितनी अच्छी प्यारी बात उन्होंने बताई है कि आप प्राइस पे जाएं तो, अच्छे प्राइस पे जाएं तो आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा, सस्ते के चक्कर में ना कहते हैं ना कि महंगा खरीदे तो कुछ नहीं और सस्ता खरीदे तो पछताए बार बार, कुछ समथिंग ऐसा है, बाकी आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और आपकी फरमाइश सुनेंगे 9837896896 पर।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां आपकी फरमाइशों की जो लड़ी है ना वो पूरी एक के बाद एक पूरी होती जा रही है। हाँ जी हाँ, आप ही की, अभी आप ही से तो बात चल रही थी और आप ही की फरमाइशें पूरी हो रही थी। अगर कहीं अटके हुए हैं और दोपहर में भी जाम में फंसे हुए हैं तो ज़रूर हमें अपडेट दीजिएगा, हमें बताइएगा कहाँ हैं आप और किधर फंसे हुए हैं। तो क्या पता दूसरे लोग भी थोड़ा इधर उधर होके निकल जाएं साहब, ना फंसें उस जगह पे। एक शायरी जो बहुत देर से मेरे को ध्यान आ रही है, मैंने कहा चलिए बोल ही देते हैं और आप लोगों को सुना ही देते हैं। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ लोग पास होकर भी पास नहीं होते और कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं। हाँ, तो आपके भी कई

0: अरे लोग जो है ना, जो कुछ दिल के एकदम करीब होते हैं, भले ही महीनों से उनसे बात नहीं हो रही होती है, कई टाइम से उनसे बात नहीं हो रही होती, मगर जब भी बात होती है तो ऐसे खुल के बात होती है कि आप भी भूल जाते हैं, यार कब किया था इसने लास्ट टाइम उससे बात। तो चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से और पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप? हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: सर, मैं अक्तूबर जिला मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा जी, कैसी हैं आप और इस समय क्या कर रही हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ सर। इस टाइम पे हम कार्ड शॉप की कढ़ाई कर रहे थे और आपका प्रोग्राम सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप शो में आ रहे हो तो।
0: धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा तो बताइए, अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे तो इससे पहले वाला गाना कौन सा था?
1: मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम।
0: अरे मतलब ऐसे थोड़ी बोला जाता है, मतलब आप ऐसे ही बोल दोगे ऐसे? अभी खुद ही कॉल किया और खुद ही कह रहे हो मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, क्या बात।
1: नहीं सर, मतलब ये तो सॉन्ग बताया ना मैंने। अच्छा, तो तुमने बोला कौन सा सॉन्ग था तभी तो।
0: इस गाने में कौन था, फीचर किसको किया था, कौन सा हीरो है?
1: सर मैंने देखा नहीं है, बस सुना है ये।
0: चलिए अब की बार देखिएगा तो बताइएगा जरूर कि कौन सा हीरो था जो इस गाने में फीचर किया गया था। तो क्या करती हैं आप और इसमें क्या फरमाइश है आपकी, ये बताइए पहले। कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: सर आज मैं सॉन्ग सुनूंगी बंजारे मूवी का।
0: बंजारे मूवी का
1: जी, कब आएगा मेरे बंजारे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना आपने चुना। कौन कौन से बंजारों को आप ये डेडिकेट करना चाहती हैं गाना?
1: सर ये तो मूवी, मतलब मैंने ये मूवी देखी है लेकिन ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मूवी भी देखी है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात है, मतलब कुछ होती हैं कुछ मूवीज जो होती हैं वो सच में आपका मन करता है उसे एक नहीं दो नहीं तीन बार, जब भी कभी सामने दिख रही हो चल रही हो तो देख लो उसे।
1: हाँ सर, अच्छा लगता है। वैसे भी इसमें काफी अच्छी, मतलब श्रीदेवी जी है ना, तो बहुत अच्छा सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगता है और डांस भी बहुत अच्छा किया है।
0: तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? श्रीदेवी जी आपकी फेवरेट हीरोइन में से रही है क्या?
1: हाँ
0: ओके,
1: काफी अच्छी लगती है वो, आगे बहुत बहुत बड़ी है ना।
0: ओके, श्रीदेवी जी की तो बात ही अलग है, और मतलब जब वो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट तक, जब उनका भी हाल फिलहाल में वो जब चल बसी थी तो उस समय भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी जी जो है अब हमारे बीच में नहीं है।
1: सर अब भी नहीं लगता है, अब भी ऐसा ही लगता है कि वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो यहीं पे है। अब भी लगता है मतलब सुनते तो अच्छा लगता है उनका, ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कि वो नहीं है हमारे बीच।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ एक्टर्स और कुछ एक्ट्रेस ऐसे होती हैं जो आपके सीधे एकदम दिल में जगह बनाते हैं, आपको कभी रियलाइज नहीं होने देते कि वो इस समय हैं या नहीं हैं, मगर आपके आसपास जरूर वो उस मूवी या उस गाने के थ्रू आपके आसपास हमेशा जुड़े रहते हैं।
1: जी सर, आपकी मतलब आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है सर?
0: मेरी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मेरी फेवरेट हीरोइन मैं यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कौन सी है, तो बताऊंगा आपको भी बताऊंगा जब गाना बजाऊंगा ना, तो आप खुद ही गैस कर लेना मेरी फेवरेट हीरोइन कौन सी है। तो कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई शायरी या कोई कोई गाना?
1: हाँ सर, मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी है, मतलब शायरी ऐसी है कि दिल को छू जाए।
0: अरे अरे जरूर जरूर जरूर सुनाइए साहब
1: जी। सर, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था।
0: क्या बात है क्या बात है, क्या मतलब एंड में इतनी बात हमने डीपली बात कह दी कि भैया चाह तो चांद को पाने की है मगर जो दिल है दीवाना तितली का है।
1: जी सर,
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत
1: ऐसी होती है सर, इंसान के दिल को छू जाती है।
0: बहुत ही बढ़िया कहा आपने फातिमा जी। तो ये गाना और ये शायरी किसे डेडिकेट थी ये बताइएगा जरूर।
1: ये शायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा के लिए थी और ये सॉन्ग में जितने भी लिसनर सुन रहे हैं सभी को सुनवाना चाहती हूँ।
0: जरूर जरूर, तो चलिए सबको ये आपकी फरमाइश का सॉन्ग सुनवाते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से बातें करी और जो शायरी आज आपने बोली बहुत ही सुंदर थी।
1: जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, अच्छा लग रहा है संडे को, मतलब
0: खुशी जी जो है वो आपको जरूर कल से आपको अपने टाइम पे मिलेंगी और खूब सारी बातें भी आप उनके साथ करिएगा। और आज जो है ना खुशी जी भी हम कहेंगे, खुशी जी आपके लिए भी ये गाना डेडिकेट है जो ये गाना फातिमा जी कह रही हैं।
1: सर वैसे तो दोस्त है मेरी वो
0: हमें पता है वो आपकी दोस्त है।
1: हाँ
0: ठीक है, करते हैं इस गाने को प्ले और पूरा आनंद लेते हैं इसके साथ।
1: थैंक यू पापा।
0: थैंक यू जी। तो हमारे साथ जुड़ी थी फातिमा जी जो कह रही हैं कि मैं ना जब जब FM सुनती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ ऐसे गाने सुनूं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो हाँ जी हाँ, फरमाइश होती ही उन्हीं गानों की है जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। तो अब प्ले करते हैं उनका फेवरेट सॉन्ग, मूवी है बंजारन, सॉन्ग है तेरी बंजारन और गाना गाया है अलका याग्निक जी ने और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। तो गाना तो अब आपको पता ही चल जाएगा कितना सुंदर और कितना रोमांटिक है।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि फरमाइश जो है ना, आप ही की पसंद की हो रही है। कोई अपने फ्रेंड को डेडिकेट कर रहा है तो कोई अपने हम सफ़र को। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया है, और हमारे एक लिसनर ने हमें एक मूंगफली की चटनी की रेसिपी भेजी है और कहा है कि सर प्लीज़ एक बार ज़रूर इस चटनी की रेसिपी को बताइएगा। हमने सोचा चलिए ठीक है, अगर कोई फरमाइश ऐसी भी है तो क्यों नहीं उसकी पूरी की जाए फरमाइश, और आपको हम बता देते हैं कैसे बनती है मूंगफली की चटनी जो उन्होंने हमारे पास भेजी है रेसिपी। सामान जो हमें चाहिए उसके लिए चाहिए आधा कप भुनी हुई मूंगफली, आधा कप नारियल, एक से दो चम्मच हरी मिर्च, एक से दो कलियां लहसुन की, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी मात्रा में इमली, आवश्यकता अनुसार पानी। बनाने का तरीका है अखिल जी, सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें, इसमें मूंगफली डालकर करीब 2 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ज़ीरा डालें और सभी सामग्री को अच्छी तरह से भून लें। जब प्याज सुनहरा हो जाए तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पूरी सामग्री को मिक्सर जार में डालें और ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए बारीक पीस लें। चटनी को अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ा या थोड़ा पतला रखें। अब आप चटनी एक बाउल में निकाल लें और तड़के की तैयारी करें। क्या बात है सुलेखा जी रामपुर से, क्या बात है सुलेखा जी, आपने क्या बढ़िया सी एक आपने ये रेसिपी भेजी है। और ज़रूर हमारे लिसनर्स जो इस समय सुन रहे होंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तिकड़म अपनी भिड़ा के इसका आजमाइन करेंगे। तो चलिए हम लास्ट कॉल लेते हैं, क्योंकि वक्त का पता ही नहीं चला कब 5 बज गए और सफ़र ऐसे ही निकल गया। तो लास्ट हमारे लिसनर हैं, उनकी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी आज क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं, अच्छे हैं सर, आप सुनाए?
0: सब बढ़िया हैं, सभी बढ़िया। और क्या करते हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, सिरसमद राय से।
0: तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके आसपास शोर ज्यादा लगता है, दोस्तों के साथ बैठे हैं आज आप रिजवान जी?
1: आज छुट्टी में है ना संडे की, तो दोस्तों के साथ में बैठे हैं।
0: क्या बात है, आपने एकदम सब जो है ना, जैसे संडे हुआ तो दोस्तों ने सबको एक दूसरे को बुला लिया, चलो आओ भाई बैठ के एक साथ जरा गपशप कर ले। तो चाय कौन बना रहा है, आप बना रहे हैं आपके दोस्त बना रहा है?
1: दोस्त बना रहे हैं, जो हमारे ठेकेदार है वो बनाएंगे चाय।
0: जो ठेकेदार है वो पिलवा रहे हैं चाय आपको। सही, बहुत ही बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? क्या बात है, क्या बात है। आपके सभी जो आवाजें आ रही हैं, सभी दोस्तों के लिए एक शायरी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। दोस्ती वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, दोस्ती वो है जो दूर होकर भी खास हो, हंसी हो या परेशानी का दौर, दोस्त वही जो बोले भाई मैं हूँ ना। तो चलिए ये वाला गाना जो आपने फरमाइश करी है इसको सुनाते हैं आपके और आपके दोस्तों को। सबका नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी कयूम भाई है, फरियाद भाई है और अब्बास भाई है,
0: और सलमान भाई भी हैं साथ में।
1: सलमान भाई ना, सद्दाम भाई है।
0: सद्दाम भाई हैं। चलिए साहब, सभी के लिए ये गाना जो आपने फरमाइश की है जरूर इसे प्ले करते हैं। धन्यवाद रिजवान जी जुड़ने। तो हमारे साथ रिजवान जी जुड़े थे शेरुआ चौराहे से। शेरुआ चौराहे के पास आप सभी को पता है इस समय मुरादाबाद हॉट प्लेस बना हुआ है, क्योंकि वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ था एक पिज़्ज़ा की शॉप में, और वो अभी तक उसका पता चल नहीं रहा है कि क्या उसका वजह थी। और उसके लिए पूरी पूरी कहते हैं ना इस समय छानबीन और बम निरोधक दस्तक भी आके अपनी तहकीकात करने में लगा हुआ है। तो चलिए आपकी तो फरमाइश हम पूरी करते हैं, इस गाने के साथ आपसे लेते हैं विदाई, क्योंकि ये पता ही नहीं चला, सच में नहीं पता चला कि आपकी और हमारी फरमाइशों के बीच ये वक्त कैसे निकल गया। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश, जहां आपकी फरमाइश हमारी जिंदगी है और आपकी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी है कमाई। तो अगले शो तक खूब हंसिए, खूब खुश रहिए और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखिए। संडे की शाम को बस इतना ही कहूँगा, टेंशन को बोलो बाय बाय और मुस्कान को बोलो हाय हाय। तो करते हैं इस गाने के साथ विदाई, बाय बाय मुरादाबादीस।

रिकॉर्डिंग इसलिए है कि आई वॉज नेवर अ ब्रेव मैन, लेकिन उस दिन हिम्मत जुटा के तुम्हें माला पहनाई थी। और अभी न्यू ब्रेव मी ये सोचता है कि फाइनली तुमसे पूछ ही डालूं कि सितारा क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और आज फिर से की वुमेन राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर वुमेन को पता होना बहुत जरूरी है। महिलाएं सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालती, बल्कि समाज और देश के निर्माण में भी उनकी उतनी ही बड़ी भूमिका है। लेकिन अपने अधिकारों की जानकारी होना उतनी ही जरूरी है जितना आपने सपना देखा हो। कानून महिलाओं को कई ऐसे अधिकार देता है जो उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का हक दिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे हक क्या महिलाओं को पता है उनके राइट्स के बारे में? तो इन्हीं राइट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ कनेक्ट हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा सर। तो हम इनसे ही विमेन राइट्स के बारे में जान लेते हैं, महिलाओं के अधिकार कौन से अधिकार हर महिला को जरूर पता होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानून की मदद कैसे ले सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी। वैसे आप काफी टाइम के बाद फिर से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जरा।
2: देखिए, मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके स्टूडियो में आने का, और जो आपका शो है लीगल टॉक, ये अच्छी अच्छी आप जो है लीगल जो है जानकारी हमारे ऑडियंस को, जो कम्युनिटी हमारे लिसनर्स हैं रेडियो के, उनको आप देते हो। लेकिन पिछले 2 वीक से मैं नहीं आ पा रहा था, कुछ थोड़ा सा कहीं मेरे को कुछ प्रायोरिटी के कुछ काम थे, तो उसके लिए मैं पहले तो अपने लिसनर्स से उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। और जो है आज मैं आपके समक्ष दोबारा से आया हूँ, और मैं एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली आजकल जो हम देखते हैं लेडीज के साथ अक्सर बहुत क्राइम बढ़ गया है, और महिलाओं को जानकारी भी नहीं होती कि हमें किस तरीके से जो है अपने जो है हितों का ध्यान रखना है या लीगल जो उनके राइट्स हैं उसके बारे में। तो आज हम वुमेन्स राइट्स के ऊपर एक टॉपिक हमारा है, उसको लेंगे चाहेंगे कि रीना हमसे उस विषय में बात करें।
1: जी बिल्कुल सर, मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ कि सर जब भी मौका मिले तो आए, और सर को जैसे ही मौका मिलता है वो आ जाते हैं हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, आप सभी के साथ बातें करने के लिए। क्योंकि देखिए, अक्सर हमें अच्छी अगर गाइडनेस का पता होगा, किस चीज के बारे में पता होगा, तभी हम डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, महिलाओं के लिए सबसे जरूरी कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं?
2: देखिए, महिलाओं के लिए जो ज्यादातर आपने सुना ही होगा कि आजकल जो घटनाएं होती है उनके साथ में घर में मारपीट है, या शादी की वजह है डॉरी से रिलेटेड है, या जो है उनको संपत्ति में हिस्सा है, भरण पोषण है, मेंटेनेंस है। तो बेसिकली महिलाओं को घरेलू हिंसा में से सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण, स्त्री धन संपत्ति भरण पोषण, कार्यस्थल पर जहाँ पे आप वो वर्क कर रही है वहाँ पे हैरेसमेंट की बहुत घटनाएं सुनने में आती है, और साइबर अपराधों से संबंधित जो भी उनके राइट्स हैं उनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए।
1: साथ ही साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा क्या है?
2: देखिए, जब एक महिला घर में रहती है तो उसके साथ कभी ऐसा होता है कि घर में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मारपीट होती है, तो केवल घरेलू हिंसा जो होती है केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अगर उसके साथ जो है कोई जो है मौखिक या उसको इमोशनल भी किसी तरीके का, या कोई फाइनेंशियल उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या कोई फिजिकल भी कोई उसको जो है मोलेस्टेशन कुछ अगर उसको हर्ट कर रहा है, या उसके इमोशंस को, उसको फीलिंग्स को, तो वो भी एक घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है।
1: क्या केवल मारपीट को ही घरेलू हिंसा माना जाता है सर?
2: नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था मारपीट को ही घरेलू हिंसा में नहीं गिन सकते। अगर लगातार जो है घर में किसी महिला को अपमानित किया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, आर्थिक रूप से उसे नियंत्रित करना या अन्य किसी प्रकार का व्यवहार भी परिस्थितियों के अनुसार कानूनी संरक्षण का आधार बन सकता है, तो ये सारी परिस्थितियां भी घरेलू हिंसा के दायरे में आती।
1: मानसिक प्रताड़ना होने पर महिला क्या कर सकती है?
2: देखिए, अगर किसी महिला को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है तो सबसे पहले तो ये कि उसको घटनाओं को क्रम में रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि कौन सी घटना किस दिन हुई। फिर अगर उसको एविडेंस कुछ मिल जाता है, उसको एविडेंस को सुरक्षित रखे वो, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार जो ऐसे पुलिस है या प्रोटेक्शन ऑफिसर है या महिला हेल्पलाइन है या न्यायालय से वो हेल्प मांग सकती है। अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है या महिला को लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुला सकती है।
1: और सर, जिसके पास फोन ना हो, उसे घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए, तो फिर कैसे कर सकती है?
2: भाई देखिए, आपको अपने जो अड़ोसी पड़ोसी है उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप जो है पुलिस को सूचित करवाइए, तभी आपको हेल्प मिल पाएगी।
1: और कभी कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर, घर में ही धमकी दे दिया जाता है।
2: देखिए आजकल ये जो घटनाएं ये बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, है ना, घर में परिवार में जो आपसी मनमुटाव की वजह से महिलाओं के साथ जो एक शोषण की वारदात जो हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे महिला को भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, या ऐसा कोई उसको अपना कोई नंबर उसको ऐसा एक नोट करके रखना चाहिए, जैसे अपना कोई घर का नंबर है या किसी फ्रेंड का नंबर है, पुलिस के नंबर पे आप तुरंत 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसी आप

0: कोई कानूनी मदद मांगते हैं तो हमारे जो जुडिशरी में जो महिला को वुमेन्स राइट्स जो उसको प्राप्त हैं तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस तुरंत उस केसेस में हेल्प करती है।
1: आर्थिक प्रताड़ना क्या होता है सर?
0: देखिए, आर्थिक का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। जैसे कोई फाइनेंशियल अगर कोई आपको किसी तरीके से, उदाहरण के लिए अगर महिला की आय या उससे अधिक आर्थिक संसाधनों पे कोई अनुचित उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है या उसको जरूरी खर्चा कोई, जैसे भाई हस्बैंड की शादी होती है तो उसका दायित्व बनता है कि वो घर पे जो अपनी पत्नी का बच्चों का पालन पोषण करे, अगर उसको वो खर्चा नहीं दे रहा है या उसको रहने में खाने को पहनने को कपड़े नहीं दे रहा है तो ये भी एक तरीके से आर्थिक रूप से जो एक निर्भर है उसके ऊपर महिला जो है अपने हस्बैंड के अपने पति के ऊपर, तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना का शोषण के रूप में ऐसे माना जा सकता है। तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना होती है, तो इसे आर्थिक एब्यूज भी कह सकते हैं हम लोग।
1: सर, जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात होना, इस क्वेश्चन पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दहेज की मांग होने पर महिला क्या करे, क्योंकि ऐसा बहुत से घरों में देखा भी जाता है अभी भी।
0: देखिए, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, और अगर दहेज की कोई मांग करी जा रही है, प्रताड़ना करी जा रही है दहेज से रिलेटेड, तो आप पहले तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, परिस्थितियों के अनुसार पुलिस में शिकायत करिए या उपलब्ध जो भी आपके पास कानूनी जो आपके पास राइट्स हैं उसको आप जो है फॉलो करिए। और जो है सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलूंगा कि दहेज ना ले ना दे, क्योंकि दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमारे समाज को दहेज मुक्त समाज बनाना है, आप बिल्कुल एक आदर्श विवाह करिए जिसमें जो है दहेज का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, बस यही मैं समझाना चाहूंगा।
1: क्या अभी भी है ऐसा सर कि जहाँ पे दहेज ना दिया जाता हो?
0: देखिए, अभी भी प्रचलन है, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली केसेस आते हैं दहेज का आरोप तो देखिए लगता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हो जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, इस वजह से भी मोस्टली केसेस आते हैं कि लोग दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे लीगल राइट्स एक महिला को भी मिले हुए हैं तो उसमें एक छोटी छोटी बात का जो एक कहते हैं कि बतंगड़ बन जाता है, छोटी छोटी जो बातों का बड़ा रूप हो जाता है। और उसमें क्या होता है, कानून जैसे महिला को अधिकार मिले हुए तो महिला उस अधिकारों के तहत वो अपने पति और परिवार वालों पे दहेज का केस दर्ज करा देती है। लेकिन अगर हम कई केसेस जैसे हमारे पास आते हैं, अगर हम उसमें काउंसलिंग भी करते हैं, पहले हम कोशिश यही करते हैं कि घर बस जाए, क्योंकि देखिए घर जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, टूटने को दो मिनट में आप तोड़ सकते हो। मेरे पास भी कई केसेस ऐसे आते हैं, तो हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं दोनों पक्षों की, हस्बैंड की भी करते हैं और वाइफ की भी उसके करते हैं, लड़की पक्ष की भी करते हैं। तो उसमें जो मुद्दे असल में निकल के आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे मोबाइल की वजह से लोगों में झगड़े आजकल बढ़ गए हैं। फिर जो है सबसे बड़ी चीज है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, ठीक है। फिर कहीं जगह हमें आर्थिक तंगी को लेके भी मुद्दे मिले हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन असल वजह कुछ और होती है। और उसको एक क्योंकि लीगल राइट मिला हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि जो लड़की होती है या महिला पक्ष होता है वो जो है दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाना शुरू कर देता है। तो मैं यही बोलूंगा कि कानून अगर आपको दिया गया है, आपके हित के लिए दिया गया है, हितों की रक्षा के लिए दिया गया है, उस कानून को आप कवच बना के उसका मिसयूज ना करें, एटलीस्ट कम से कम।
1: बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है,
0: बहुत मिसयूज हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दहेज कानून बना हुआ है इसको एक लीगल टेररिज्म की भी संज्ञा दे दी है, मतलब एक वर्ड लीगल टेररिज्म तक यूज करा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप सोच सकते हैं कि घर टूटने का कारण कुछ और होता है और उसको आजकल मुकदमों की इतनी बाढ़ आई पड़ी है, असल वजह जो कुछ और होती है, लेकिन वो उसको एक, क्योंकि कानूनों का ऐसा मिसयूज भी कई बार हमें देखने को मिला है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई भी बात है, अगर आपका रिश्ता बच सकता है तो आप कम से कम उसको काउंसलिंग के थ्रू या थोड़ा अपने परिवार जनों के थ्रू बैठ के उसको मैटर को रिजॉल्व करिए। जो आपको कानून दिए गए हैं वो वास्तव में पीड़ित लोगों के लिए दिए गए हैं, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि कुछ लोग सिर्फ इस चीज को मिसयूज करके सामने वाले पक्ष पे दबाव बनाने का काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
1: क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर चीज पक्ष लड़कियों की तरफ है, महिलाओं के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि जो पक्ष है उनकी तरफ, तो उसमें जो लड़के हैं तो उनकी भी मुझे लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए सर।
0: बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, कई बार हमने देखा है कि अगर आपको कानून दिए हैं एक पीड़ित के लिए दिए, जब कानून बने थे तो उस टाइम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, सब चीजें थी, लेकिन आज की डेट में महिला बहुत स्वावलंबी हो गई है, सेल्फ डिपेंड हो गई है,
1: ठीक है।
0: लेकिन अगर आपको कानून एक दिए गए हैं तो कानून वास्तव में पीड़ित के लिए दिया गया, आप उसको कम से कम उस जो आपको राइट दिया गया उसका उसका मिसयूज ना करें, मैं यही बोलूंगा। और जो है पुरुष के लिए तो देखिए कानून हमारे जो है इतना मेंटेनेंस वगैरह का पुरुष के लिए भी अब थोड़ा सा जुडिशरी में हो गया कि अगर महिला कमा रही है और पुरुष अगर असक्षम है, हैंडीकैप्ड नहीं कमा पा रहा, तो वो भी अपनी वाइफ से क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस।
1: ओके,
0: तो फिलहाल ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि देखिए असल वजह कुछ और होती है, और लीगल जो टर्म्स में अगर हम जो कानून बने हुए हैं अगर उसको हम देखेंगे तो आजकल लोग बहुत मिसयूज करने लग गए हैं।
1: करेक्ट, ये तो है सर।
0: तो कई बार जो है परिवार टूटने का कारण ये भी होता है, हो सकता है आपका परिवार बच जाए, लेकिन आप सबसे पहले असल चीज जो असल वजह है उसको आप जानिए। हाँ, आपको अगर कानून दिए गए हैं, आपको सरकार ने या जुडिशरी ने आपके लिए कोई कानून दिए हैं, तो आप उसका एटलीस्ट मिसयूज ना करें। और अगर वास्तव में आप पीड़ित हैं तो आपको जरूर कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, स्त्री धन क्या होता है?
0: देखिए, जब एक लड़की शादी होके परिवार में दूसरे परिवार में जाती है, तो उसको जो उपहार उसकी माँ की तरफ से, उसके मायके वालों की तरफ से, या जो उसको ससुराल की तरफ से जो भी उसे गिफ्ट ज्वेलरी जो भी दी जाती है, उसको हम स्त्री धन बोलते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। तो महिला की शादी से पहले, शादी के बाद में मिले जितने भी उपहार हैं, आभूषण है, संपत्ति है, उन सबको हम स्त्री धन बोलते हैं, और उसका स्वामित्व जो है महिला को, अधिकार उसको मिल जाता है, ये उसी का होता है ये।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये राइट है उसका, अगर उसको गिफ्ट दिए गए हैं उसके परिवार की तरफ से या ससुराल की तरफ से, तो वो उसका राइट है, वो उसका है, वो स्त्री धन बोलते हैं।
1: मतलब वो बोल सकती है कि मेरा है।
0: हाँ, मेरा है नहीं, है ही उसका, ये अधिकार है।
1: ओके सर, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा, स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं उसने?
0: देखिए, अगर स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो पहले आप गहनों और सामान की सूची, बिल, फोटो, बैंक रिकॉर्ड और अन एविडेंस जितने भी सुरक्षित रखें, वो सारा रिकॉर्ड लेके आप एक कानूनी नोटिस दीजिए, या पुलिस में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या न्यायालय के माध्यम से आप जो है मुकदमा भी पंजीकृत करा।
1: सर आपने पुलिस की ही नाम ली है, तो मेरा अगला क्वेश्चन भी यही है, पुलिस फायर दर्ज ना करे तो क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको पुलिस के उच्च अधिकारी है, सबसे पहले आपको चौकी को सूचित करना चाहिए, चौकी इंचार्ज अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप एसएचओ को, थाने को संपर्क करें, थाने अगर थाना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई नहीं करता तो आप उससे नेक्स्ट सीओ जो सर्किल ऑफिसर है उस जोन का, वो आप संपर्क करें, अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप एसपी सिटी या एसएसपी के माध्यम से भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या महिला अकेले पुलिस स्टेशन जा सकती है?
0: जी बिल्कुल जा सकती है, महिला स्वयं शिकायत दे सकती है, जरूरत पड़ने पे वह परिवार के किसी सदस्य, अधिवक्ता या सहायता संगठन की भी मदद ले सकती है, ये उसका अधिकार है।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है?
0: जी बिल्कुल मांग सकती है, कानून में निर्धारित परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है, जो भी अमाउंट है और जो भी उसका राइट है, मामलों के तथ्यों को, दोनों पक्षों को की आर्थिक स्थिति को सुनने के बाद, उसको देखने के बाद जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय जो ऑर्डर देगा, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा उसको।
1: सर हमारा अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस तय करते समय क्या देखा जा सकता है?
0: देखिए मेंटेनेंस तय करते समय दोनों की जो है जीवन स्तर देखा जाता है, उनकी दोनों की इनकम देखी जाती है, उनकी परिस्थितियां देखी जाती है, और एक जजमेंट 2020 में या 21 में शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन दी थी, रजनीश वर्सेस नेहा, एक गाइडलाइंस, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि दोनों पक्षों की इनकम देखी जाएगी, उसके आधार पे दोनों पक्षों को अपना बैंक का 3 साल का ITR, ठीक है, उनके बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब देनी होगी, उसको दोनों पक्षों को देखने के बाद, दोनों पक्षों की इनकम प्रूफ देखने के बाद ही कोर्ट संज्ञान लेके उसका डिसाइड करेगा कि कितनी मेंटेनेंस देनी है या नहीं देनी है, वो दोनों पक्षों की इनकम देख के ही होता है। क्योंकि अधिकतर हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं, जैसे हम अगर हम मेंटेनेंस का केस देखते हैं कि हस्बैंड की आमदनी तो कम है और जो है पत्नी क्लेम कर रही है जो है लाखों में
1: जी,
0: तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया पिटीशन में, आपने कुछ भी मांग लिया वो कोर्ट से मिल जाएगा आपको। कोर्ट दोनों पक्षों का एविडेंस देख के, उसका आधार देख के, उसका जो क्या बेस है उसका, उसका इनकम प्रूफ देख के ही आगे डिसीजन लेती है। कई बार हमने ये भी देखा है, ऐसे भी केसेस आते हैं कि पत्नी की बहुत अच्छी जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है,
1: जी जी जी,
0: ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में आके बिल्कुल जो है क्लीन हैंड दिखा देगी अपने आप को और मेंटेनेंस मांगती है, तो ये गलत है, ये कोर्ट का का कानून का खोल उड़ाने वाली बात होती है। अगर कोर्ट के संज्ञान में आ गया तो कोर्ट आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती है, इसलिए आपको कोई भी झूठा एफिडेविट कोर्ट में फाइल नहीं करना चाहिए। आपकी जो इनकम है आपको वही शो करनी चाहिए, और अगर आप इस तरीके से कोर्ट में अनक्लीन हैंड दिखा के अपने आप को जो है प्रेजेंट करेंगे तो ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, मैंने महिलाओं के केस में देखा है, अगर उनका कोई आपसी पारिवारिक विवाद हो जाता है हस्बैंड से तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अधिवक्ता के माध्यम से जो है वो कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि भाई हमारे इतने खर्चे हैं, ये हमें दिलाया जाए, वो दिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बिना चीजों को संज्ञान लिए या बिना चीजों को देखे ऐसी डिक्लेयर कर देता है, तो उस चीजों से भी बचना चाहिए। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी जुडिशरी जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और खास तौर पर न्यायालय में ये जो मैट्रिमोनियल केसेस है, पारिवारिक विवाद है, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको जो हमारा न्यायालय भी है वो बहुत गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे लोग क्या करते हैं, वो केसेस एफआईआर लिखा देते हैं, दहेज की लिखा दी या मेंटेनेंस की लिखा दी। फिर लड़के वाले पक्ष की तरफ से भी कई बार क्रॉस एफआईआर भी हमने देखने को मिली है। तो न्यायालयों पे एक बहुत ज्यादा केसेस का भार है, तो निश्चित तौर पे अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि हर केस को मॉनिटर करके, और स्पेशली जो है मैट्रिमोनियल केसेस को बहुत कमतर से जांच हो रही है उसमें।
1: सर अभी आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी है, जिस महिला की गवर्नमेंट जॉब होती है, तो मेरा इसी पे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए उस महिला का पति ही पढ़ा रहा है उसको, फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो बहुत से आपने केसेस देखे भी होंगे और आते भी है,
0: सोशल मीडिया पे भी आया था
1: काफी, कि तलाक दे देती है फिर बाद में, तो इसके लिए भी कार्रवाई की जाती है?
0: देखिए तलाक तो देखिए दोनों पक्षों का आपस का एक म्यूचुअल रिकनसाइल का मैटर है। अगर उनको लगता है कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो आप म्यूचुअली भी अलग हो सकते हो। कोर्ट अगर आपके साथ क्रुएल्टी हुई है तो आप कोर्ट में सिद्ध करो, प्रूफ करो कि भाई मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो है वही गवर्नमेंट जॉब है महिला की और हस्बैंड ने उसको पढ़ाया है और गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो देखिए कोर्ट को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि आपने जो है गवर्नमेंट जॉब उसकी लग गई और आप किसने पढ़ाया और क्या। कोर्ट बेसिकली जो आपने प्रेयर करी है, जो आपने रिक्वेस्ट करी है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष, उस प्रेयर के अकॉर्डिंग वो कोर्ट, उसका डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है कि वो देखती है कि सपोज करिए किसी लेडी ने अपने पति से 2 लाख रुपए की मेंटेनेंस मांगी भरण पोषण के लिए, खर्चे के लिए, अब वो खुद ही 2 लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रही है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो ऐसे नहीं मिलता है।
1: अच्छा नहीं मिलता
0: है, ऐसे नहीं मिलता है, वो कोर्ट प्रॉपर उसको एविडेंस देखेगी, ठीक है, फिर वो खुद भी जॉब कर रही है वो, तो कोर्ट सारी बातों को देखती है। और अगर वो ऐसे केसेस में अगर वो झूठा शपथ पत्र महिला देती है तो उसके विरुद्ध भी कोर्ट संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई जुडिशरी में कोई आपको रिलीफ दिया गया है या कोई आपको फेवर के लिए कोई लॉ दिया गया तो आप उसका मिसयूज ना करें एटलीस्ट।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, तलाक के बाद महिला के क्या अधिकार हो सकते हैं?
0: देखिए परिस्थिति को अनुसार जो है मेंटेनेंस है, एलिमनी है, बच्चों की कस्टडी है, स्त्री धन है और अन्य वैधानिक राहतों के लिए वो आवेदन कर सकती है। और जो है तलाक के बाद भी अगर देखिए आपकी तलाक की पिटीशन में अगर ये सारी चीजें मेंशन है कि भी दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग रहेंगे और तलाक विवाह विच्छेद होता है और भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और वन टाइम अगर आपका सेटल्ड हुआ है तो देखिए आपका राइट सब वही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: एलिमनी अगर आपने वन टाइम उससे ले ली, लेकिन अगर तलाक आपका हुआ है और उसके बाद भी आपने मेंटेनेंस की मांग की हुई है तो आपका राइट है, जब तक आपकी सेकंड मैरिज नहीं हो जाती या आप कहीं सेटल नहीं होती तो आपका राइट है, आप जो है अपने पति से आप मेंटेनेंस ले सकते।
1: सर दोनों की अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो तब भी महिला बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे खर्चे तुम उठाओगे तलाक के बाद?
0: देखिए मैंने आपको क्या बताया, आप कोई भी प्रेयर करते हो तो उसके साथ में आपको एविडेंस कोर्ट उससे मंगाती है, आपको बैंक स्टेटमेंट देने पड़े, आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
1: ओके सर अगला क्वेश्चन है, क्या माँ बच्चे की कस्टडी मांग सकती है?
0: हाँ बिल्कुल मांग सकती है कस्टडी। कस्टडी का निर्णय केवल माँ या पिता के आधार पर नहीं होता, जो न्यायालय का प्रमुख जो विचार होता है वो बच्चे का वेलफेयर होता है, कि बच्चे का वेलफेयर होना चाहिए और मामले की परिस्थितियों को देख के कोर्ट जो है उसकी कस्टडी मदर या फादर किसी को भी दे सकती है।
1: ओके बच्चे की कस्टडी में क्या महत्वपूर्ण है?
0: देखिए बच्चे की जब कस्टडी मांगी जाती है तो जो कोर्ट देखती है सबसे पहले बच्चे की उम्र देखती है, उसकी जरूरतें देखती है, क्या उसकी नीड्स है, ठीक है, फिर उसकी एजुकेशन है, उसकी सुरक्षा है, उसकी देखभाल है, ओवरऑल जितने भी वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है या जो भी फैक्टर्स है उसको देख के ही कोर्ट आगे अपना डिसीजन दे।
1: क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिलता है?
0: देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत जो कॉपरेंसी प्रॉपर्टी में बेटी को बेटे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, और हालांकि संपत्ति की जो प्रकृति है या जो पुराने जैसे ट्रांसफर जैसे केसेस होते हैं, तथ्य होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा इफेक्ट

0: लीगल नोटिस दे सकते हैं, पार्टीशन सूट डाल सकते हैं, या और जो कोई लीगल रेमेडी आपको मिली हुई है आप उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकते हैं।
1: विधवा महिला के संपत्ति संबंधी अधिकार क्या है सर?
0: देखिए, विधवा महिला के अधिकार से संबंधित जो है पर्सनल लॉ जो भी होते हैं और संपत्ति की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उत्तराधिकार में अगर उसका हिस्सा है तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स देखकर ही जो भी एक कानूनी स्थिति है वो हम बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे ही सारी चीजें चलती हैं।
1: क्या महिला अपनी संपत्ति की बिल बना सकती हैं?
0: हाँ, समानता सक्षम व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में कोई भी बिल बना सकता है। उचित तरीके से अगर आप बिल तैयार और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो जरूरी होता है, तो कोई भी आदमी अपनी संपत्ति की बिल बना सकता है।
1: कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न पर क्या कानून है?
0: देखिए, अगर वर्क आपका प्लेस है वहाँ पे अगर हैरेसमेंट का कोई केस आता है तो पॉश एक्ट 2013 अगर बनाया गया है उसमें अगर कार्यस्थल पे आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप उसके तहत जो है आप जो है शिकायत कर सकते हैं।
1: हमारा अगला क्वेश्चन है सर, POSH का क्या मतलब?
0: हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। POSH जो पॉश एक्ट है उसका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये वर्क प्लेस पे ही किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये कानून उसी के तहत बनाया गया। इसका उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पे महिलाओं को सुरक्षित रखना और उनकी शिकायत को प्रक्रिया को समझ के और एक्शन लेना।
1: ऑफिस में इंटरनल कमेटी नहीं है तो क्या करें?
0: देखिए, संस्था के जो संस्था का जो आकार है ये कह सकते हैं उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वॉल्यूम है और जो लागू कानून की रिक्वायरमेंट है जो भी कानून है उसके अनुसार अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी नहीं है तो उसके लिए आपको एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मतलब पूरे एक आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और संबंधित लोकल कमेटी या सक्षम जो भी अधिकारी के समक्ष उस शिकायत डेस्क एक आपको कंप्लेंट डेस्क बनानी पड़ेगी। तो ये जरूरी है। ये
1: सर, और ऑफिस की बातें हो रही है तो एक और क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस में अश्लील मैसेज या अनवांटेड एडवांस आए तो क्या करें?
0: देखिए, कई बार केसेस में हमने देखा है कि भाई ऑफिस में ही वर्क प्लेस ऐसा होता है वहाँ लड़के लड़कियां भी काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है मजाक करते हुए वल्गर मैसेज भेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ईमेल है उसको सुरक्षित रखिए, डिलीट करने के बजाय उसको एविडेंस प्रिजर्व करें और जो भी कंप्लेंट मैकेनिज्म है उसका उपयोग करते हुए आप जो उसने भी आपको हैरेस करने की कोशिश करी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें।
1: सर, कई बार व्हाट्सएप पे भी इस तरीके के मैसेज आते हैं
0: जी,
1: तो उस समय क्या करना चाहिए?
0: देखिए, संदेशों को, स्क्रीनशॉट्स को, जो नंबर है, जो चैट डिटेल्स है उसको आप सुरक्षित रखें और जो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो पुलिस को या साइबर क्राइम मैकेनिज्म में आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, निश्चित तौर पे एक्शन होगा।
1: महिला की फोटो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर डाले तो उस समय हम क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपने, बहुत सारे आजकल केसेस आ रहे हैं, आपने सुना हुआ एक वर्ड डीप फेक।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो डीप फेक क्या होता है, लोग क्या करते हैं आपकी फोटो को मिसयूज करके उसका वल्गर कंटेंट बना के और आपको डिफेम करते हैं, आपको जो है बदनाम कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो परिस्थिति और फोटो की प्रकृति जो है उसके आधार पर अगर प्राइवेसी और क्रिमिनल और साइबर लॉस लागू होते हैं उस पे तो आप उस एविडेंस को सुरक्षित रखिए और तुरंत कंप्लेंट करिए तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होगा।
1: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर स्टॉकिंग क्या है?
0: देखिए, किसी व्यक्ति को अगर अनवांटेड आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहे हो बार बार, ठीक है, उसको मॉनिटर कर रहे हो बार बार उसको, या उसको हैरेसमेंट के माध्यम से आप उसको परेशान कर रहे हो तो ये साइबर स्टॉकिंग में आता है और ये एक तरीके का क्राइम माना जाता है।
1: निजी फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी मिले तो क्या करें? क्योंकि इसकी धमकी बहुत दी जाती है सर।
0: आजकल देखिए, बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बहुत साइबर जितने भी क्राइम्स होते हैं कि वो क्या करते हैं आपकी फोटो, निजी फोटो जो हैक कर लेंगे, फिर उसको एडिट करके कुछ उसको ऐसा कंटेंट बना देंगे कि वो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको किसी भी थ्रेट में नहीं आना है, ठीक है, जो पहले कोई भी पैसे ना दे, ना किसी धमकी के दबाव में आए, कोई भी नया कंटेंट ना भेजें, स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल नंबर, मैसेज जितने भी सुरक्षित रखें और तत्काल उसकी सूचना साइबर क्राइम में या पुलिस कंप्लेंट तुरंत करें।
1: अगर कोई फोन पर धमकी दे रहा हो तो सर?
0: देखिए, फोन पे अगर धमकी दे रहा है तो आप पहले कॉल डिटेल पूरी उसकी सुरक्षित रखिए, मैसेज सुरक्षित रखिए, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखिए और खतरे की गंभीरता के अनुसार पुलिस को तत्काल सूचित।
1: सर, एक जो मैसेज आप महिलाओं तक पहुंचाना चाहे, प्यारा सा संदेश जो आप विमेन को देना चाहें?
0: देखिए, मैं बस आपसे, जितनी भी मेरी माताएं बहने हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी कानून आपको दिए गए हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है आप खुद भी कानून का पालन करें, है ना। अगर आपके लिए कोई कानून दिए गए हैं तो वास्तव में पीड़ित के लिए हैं, आप पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए कानून है, उसको आप सजग रह के आप उसका जो है हेल्प मांग सकती हैं, लेकिन कानून का मिस

0: यूज ना करें, बस मैं यही बोलूंगा मैं। और क्योंकि देखिए, जो सरकार आपके लिए कानून बनाती है, जुडिशरी बनाती है, वो पीड़ित के लिए बनाती है, लेकिन हम लोग जैसे कोर्ट में देखते हैं मोस्टली जो है छोटी छोटी बातों पे लोग जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में FIR करा देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो है वास्तविक जो जड़ झगड़े की वो जानना चाहिए, है ना
1: जी।
0: एक जो है हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में छोटी छोटी बातों पे जो आजकल मैं देखता हूँ कि तुरंत दहेज की FIR हो जाती है
1: जी जी।
0: फिर लड़के पक्ष भी मारपीट की FIR लिखा देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें रिश्तों में कटुता बढ़ती है। अगर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जहाँ बैठ के आप समस्या को सुलझा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल, ये तो सही कहा सर आपने, क्योंकि कोई भी समस्या है अगर हम सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे तो मिल ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए श्रोताओं, हम लेते हैं से एक जाने की इजाजत और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी से। आई होप कि जितने भी विमेन्स हमें सुन रही हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला है, क्योंकि आपको राइट्स दिया गया है तो उसका सही तरीके से यूटिलाइज करिए, गलत तरीके से यूटिलाइज मत करिए। और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ जरीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का हमारा टॉपिक है भैया बहुत ही खास है, डिफेमेशन टॉपिक हम लेकर आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा मेरी मानहानि हुई है, लेकिन आखिरकार मानहानि होती क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी झूठी या अपमानजनक बात कहना, लिखना या फैलाना जिससे उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा या समाज में सम्मान को नुकसान पहुँचे, उसे आम तौर पर मानहानि कहा जाता है। यानी किसी की छवि को जानबूझकर खराब करना सिर्फ मजाक की बात नहीं हो सकती, इसे कानूनी पहल भी कह सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो पर।
5: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, थैंक्स।
4: तो सर, हमारा सबसे पहले टॉपिक यही होगा कि मानहानि होता क्या है।
5: देखिए, सरल शब्दों में अगर हम मानहानि की बात करते हैं, यानी डिफेमेशन की बात करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई झूठ या उसकी प्रतिष्ठा को या उसकी इमेज को नुकसान करने वाला कोई आरोप लगाया जाए या कोई बयान दिया जाए, उसको प्रकाशित कराया जाए कहीं, वो पब्लिशिंग फॉर्म में, या उसको संचारित किया जाए, यानी उसको प्रचार प्रसार करके उसको संचारित फैलाया गया हो, जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा हो, तो उस परिस्थिति के अनुसार जो भी उसकी रेपुटेशन का नुकसान होता है उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, यानी कि उसको मानहानि बोला जाता है कि उसकी डिफेमेशन, उसकी इमेज का डिफेमेशन हुआ है।
4: ओके, क्या किसी को बुरा भला कहना ही डिफेमेशन है?
5: देखिए, आमतौर पर मजाक में आजकल लोग आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, या नेता एक दूसरे को, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप का एक जो है लोगों पे बयानबाजी होती है, राजनीतिक विश्लेषण हम लोग देखते हैं, तो उसमें नेता एक दूसरे पे खूब आरोप लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर भाषा जो है वो डिफेमेशन के कैटेगरी में आए। अपमानजनक या अशोभनीय शब्द अगर आप डिफेमेशन, मतलब उस पर नहीं बनता है, या कोई ऐसा वर्ड आपने यूज किया जो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार डिफेमेशन हो। मामले में यह भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति ने जो कथन किया है वास्तव में उस व्यक्ति की रेपुटेशन उससे हर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और कानूनी अर्थ में नुकसान अगर पहुंच रहा है तो डिफेमेशन बनता है। और डिफेमेशन के साथ साथ कुछ ऐसे, कुछ हमारे कानून में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी जो एक पैरामीटर दिए गए हैं, अगर उस पैरामीटर के अंदर वो उसने स्टेटमेंट दिया है तो वो तभी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
4: ओके सर, इसके टाइप्स कितने होते हैं?
5: देखिए, डिफेमेशन आमतौर पर समान सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन की बात की जाती है। सिविल एक्शन में कंपनसेशन और डैमेजेस मांग सकते हैं, और जबकि क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है, क्रिमिनल लॉ में प्रेस्क्राइब उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि अगर आपका सिविल डिफेमेशन हुआ तो सिविल डिफेमेशन में आप सिविल कोर्ट में वाद दायर करके उसमें हर्जाना मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ तो क्रिमिनल कोर्ट में आप जो है वाद दायर करके मजिस्ट्रेट से रिलीफ मांग सकते हैं कि इसकी वजह से ये क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ है, इस तरीके से जो है ये अगेंस्ट में इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए।
4: सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर किसी के खिलाफ गलत पोस्ट करना भी डिफेमेशन हो सकता है।
5: देखिए, ये तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, हम देखते हैं, आप अगर मोबाइल उठा के देख लेते हैं, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप ट्विटर देख लीजिए, या आप यूट्यूब देख ली, तो बाढ़ आई पड़ी है तमाम मैसेजेस की, सोशल मीडिया मैसेजेस की। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मैसेज अगर आप देख रहे हैं तो उसको बिना देखे, बिना समझे आप फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिए। अगर सपोज करिए कोई आपके पास कोई डिफेमेशन मैसेज आया और आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप भी उसमें बराबर के भागीदार बन जाते हैं। हाँ, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। परिस्थितियों के अनुसार सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी डिफेमेशन पब्लिकेशन मानहानि का आधार बन सकता है। ऑनलाइन होने से कानून समाप्त, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चीजें ऑनलाइन हो गई है तो कानून आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आपने ऑनलाइन भी किसी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए या किसी ने कोई अपशब्द लिखा और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया दूसरे ग्रुप में, तो आप भी बराबर के भागीदार बन जाते हो।
4: ओके, मतलब शेयर करना भी,
5: शेयर करना भी हो जाता है। पहले जो है हमारे कोर्ट में एक जो है क्वेश्चन था कि भाई किसी ने अगर अपशब्द लिखे हैं और दूसरे ने फॉरवर्ड किया है तो उसको भागीदार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप गलत चीज का साथ दे रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो और कंटिन्यूस डिफेमेशन कर रहे हो, तो आप भी बराबर के उसमें कल्प्रिट माने जाओगे, आप भी उसमें दोषी माने जाओगे। तो लिहाजा अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको सोच समझ के वहीं डिलीट कर दिए या उसको आगे फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना है।
4: सर ये भी होता है ना कि जैसे हम केस दर्ज करवा रहे हैं तो आगे से भी पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है इसकी कोई साइट?
5: देखिए वो सब साइबर क्राइम जब होता है ना तो जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारे लीगल जुडिशरी में और पुलिस के पास एक टीम होती है वो सब ढूंढ लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कहाँ करी थी। आईपी एड्रेस से पता चल जाता है, आपका सोशल मीडिया हैंडल से पता चल जाता है कि आपने कब कौन सी पोस्ट करी है, तो वो डाटा आप कितने डिलीट कर ले वो सब फाइंड आउट हो जाता है वो।
4: ओके, तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति के बारे में गलत आरोप लगाने पर क्या मामला बन सकता है?
5: यदि कोई लीगल उसमें जो इविडेंसेस है, लीगल कोई सब्सटेंस उसके अंदर है जो आपने कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में किया है उससे किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो है डिफेमेशन का मामला बनता है और एज पर सिचुएशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन 100% हो सकता है। तो इसलिए व्हाट्सएप पे भी आप किसी के बारे में अपशब्द लिख रहे हैं या कुछ ऐसी अशोभनीय बातें लिख रहे हैं तो वो भी लीगल एक जो है डिफेमेशन की कैटेगरी में आती है वो भी।
4: मतलब वही ना सर कि मजाक मजाक में भी बोलती है, रोज दिल पर ले गया तो ये बुरा ही है।
5: हाँ, तो सोच समझ के आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी आप चैट कर रहे हैं तो आपको किसी को डिफेम करने का राइट नहीं मिल जाता है, है
4: बिल्कुल
5: ना? हाँ। तो आपको सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए और कोई भी अगर डिफेमेटरी कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया है तो आपको उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है।
4: सर अगर कोई व्यक्ति किसी गलत पोस्ट को या सिर्फ फॉरवर्ड करे तो क्या वह भी जिम्मेदार हो सकता है?
5: देखिए मैंने जैसे बताया अभी आपको, ये फैक्ट्स पर निर्भर करता है, फॉरवर्ड करने वाले की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, कंटेंट नेचर ऑफ कंटेंट क्या है। अगर इन सारी चीजों में उसका इंटेंशन मैलाफाइड है और वास्तव में वो भी डिफेमेशन करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी एक्शन बनता है, इसमें डिफेमेशन का केस बनता है उसके खिलाफ भी।
4: तो सर क्या किसी की फोटो लगाकर कैप्शन लिखना भी गलत है?
5: आपने देखा होगा आजकल खूब जो है एक डीप फेक नाम का वर्ड आपने सुना होगा।
4: जी जी,
5: तो डीप फेक वर्ड क्या होता है? देखिए डीप फेक एक वर्ड जो आपने सुना होगा, डीप फेक में ये होता है कि लोग जो है किसी की भी फोटो से कुछ और फोटो बना देते हैं, उसकी वास्तविक फोटो को चेंज करके।
4: ये तो अब चला भी हुआ है।
5: हाँ, तो ये डीप फेक का जो आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे शिकार होते हैं, पॉलिटिशियंस शिकार होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर जो पर्सनैलिटीज हैं उनके ऊपर उनकी डीप फेक जो है वीडियोज बना दी जाती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन प्रभावित हो रही है और ये गंभीर कानूनी मुद्दा है तो फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट, यूआरएल और डेट वगैरह अगर सब आपका एविडेंस के रूप में फाइंड आउट हो गया कि आपने भी उस पार्टिसिपेट किया है उस कैटेगरी में, तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर डिफेमेशन केस बनता है।
4: आजकल तो ये बहुत चला भी हुआ है सर।
5: हाँ बिल्कुल बना हुआ है,
4: एआई का जमाना है।
5: एआई के कुछ नुकसान भी है
4: और कुछ फायदे भी हैं
5: कुछ, तो हमें जो चीज अच्छी है वो एडॉप्ट करनी चाहिए।
4: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला क्वेश्चन है, क्या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कोर्ट में एविडेंस बन सकता है?
5: हाँ बिल्कुल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइंस भी आई है। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस हो सकता है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एडमिसिबिलिटी कानून के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो तभी वो एडमिसिबल हो।
4: अगर पोस्ट बाद में डिलीट कर दी जाए तो क्या मामला खत्म हो जाता है या फिर ये मामला चलता ही रहता है? सर
5: देखिए ऐसा है, आपने ये तो वही वाली बात होगी, पहले आपने अपराध कर दिया फिर उस अपराध का साक्ष्य मिटा रहे हो आप उसका एविडेंस, मतलब एक तरफ आपने अपराध किया फिर उसका एविडेंस आप मिटा रहे हो, तो इसमें कैसे माफी मिल पाएगी आपको, है ना? तो इसमें ये है कि अगर आपने उस चीज को पब्लिश कर दिया और उसका एविडेंस अभी भी उपलब्ध है, उसका साक्ष्य उपलब्ध है और आपने बाद में अगर उसको डिलीट भी कर दिया है लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर समाप्त नहीं होता क्योंकि आपने साक्ष्य मिटाया है।
4: ओके,
5: आपने अपराध तो कर दिया ना, और फिर आप अपराध करके बाद में उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जब अपराध हो गया तो अपराध की तो सजा मिलनी चाहिए ना,
4: मतलब
5: तो
4: माफी मांगने से भी नहीं होएगा कुछ भी।
5: वो देखिए विक्टिम के ऊपर है, अगर विक्टिम माफ कर देता है ठीक है, या कोर्ट उसको माफ कर देती है, लेकिन अपराध तो हुआ है ना।
4: ये तो है सर, मतलब वही है ना, किसी के ऊपर पत्थर मार के सॉरी बोलो तो क्या ही फायदा।
5: तो अपराध आपने किया है तो अपराध अगर करा है तो आपके ऊपर केस बनता है।
4: ओके
5: ये विक्टिम का विक्टिम के ऊपर है कि विक्टिम उसको माफ करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है या कोर्ट उसको कोई ग्रांट देती है।
4: अगर सर मान लीजिए उसने कोर्ट में भी मतलब बता दिया उसके बारे में और उसने खुद भी माफ कर दिया तो फिर क्या कोर्ट तक?
5: देखिए डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज्यादा बड़ा अपराध नहीं था तो वो हो सकता है कि उसको माफ भी कर सकते हैं और लगता है कि वास्तव में एक कॉन्सिक्वेंसेस था तो उसमें पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट या उसपे पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकती है, कंपनसेशन दे सकती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
4: अगर मैंने किसी के बारे में सच बात कही तो क्या ये भी मानहानि हो सकता है सर?
5: देखिए क्रिमिनल डिफेमेशन के संदर्भ में ट्रूथ जो होता है एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके साथ अगर कानून में अनकंडीशन मतलब और दूसरी कंडीशंस भी लगी हुई है जैसे कि सच है कह देना हर मामले का ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं होता है, है ना। अगर आपने कह दिया कि भाई इस आदमी ये आदमी ऐसा है और वो वास्तव में सच भी है तो आप ये कह के कोर्ट को नहीं कह सकते साहब ये बात ठीक थी और इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, ये इसका नेचर ऐसा था, बदतमीज आदमी है, ये लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन अगर उससे डिफेमेशन हुआ है या उसका जो है कुछ लीगल इंफ्रिंजमेंट हुआ है उसके राइट्स का तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है।
4: मतलब तारीफ करना भी गलत है सर?
5: तारीफ डिफेमेशन में नहीं आता ना, अगर आप उसकी रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं।
4: Okay.
5: उसकी रेपुटेशन हर्ट होने से अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके जीने का आप राइट जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो आपके ऊपर इन डिफेमेशन का केस बनता है।
4: किसी व्यक्ति की आलोचना करना और मानहानि में क्या अंतर होता है सर?
5: देखिए फेयर क्रिटिसिज्म जो होता है और डिफेमेटरी एलिगेशंस होती हैं दोनों अलग अलग कंसेप्ट होती हैं। किसी काम पॉलिसी या पब्लिक कंडक्ट की उचित आलोचना और किसी व्यक्ति के बारे में रेपुटेशन हार्मिंग फॉल्स एलिगेशन में अंतर किया।

0: जाता है। अगर आप उसकी उचित एक आलोचना कर रहे हो, फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो चीज अलग है। लेकिन आप उसका इंटेंशन ही आपकी उसको डिफेमेशन करने की है, जिससे उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़े, उसके काम पे इफेक्ट पड़े, उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़े, तो निश्चित तौर पे आपको लीगल जो प्रोसीडिंग्स है फेस करनी पड़ सकती है।
1: क्या पब्लिक फिगर की आलोचना करना भी अपराध है?
0: नहीं, देखिए, पब्लिक फिगर की फेयर क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म और डिफेमेटरी एलिगेशन के बीच लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना होता है कि लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन उस बाउंड्री से बाहर निकल के अगर आप कर रहे हो तो वो दिक्कत है थोड़ी सी।
1: तो क्या सर बिना किसी के नाम लिए भी बात करना मानहानि हो सकता है?
0: हाँ, यदि परिस्थितियों से लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि ये बात आपने इस व्यक्ति के बारे में कही है, ठीक है, तो केवल नाम ना लेने से आपका मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। ये जरूरी नहीं कि आपने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आपने ये जता दिया एक पब्लिक के बीच में कि उस व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, भले ही आपने नाम नहीं लिया। अब सपोज करिए आपने किसी देश के, किसी भी देश के, मैं मतलब वर्ल्ड की बात करूं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करी और देश का आपने नाम लिया
1: जी।
0: आप किसी देश का नाम ले रहे हो, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो आपने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया ना
1: जी, जी,
0: लेकिन आपने देश का नाम लिया और प्रधानमंत्री का नाम लिया।
1: ओके,
0: तो आपने एक क्राइम कर दिया अगर आपने कोई अपशब्द बोले उनके खिलाफ, तो है ना, कोई डिफेमेशन अगर आपने करी है तो क्राइम बनता है फिर वो।
1: अगर किसी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी थी, तो क्या ये भी हमेशा बच सकता है या फिर गलत है?
0: देखिए, आप ये कह के कोर्ट से जो है, आप जो है कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट कथन की जो वास्तविकता होती है, नेचर होता है उसका, कंटेक्स्ट होता है, और उसके प्रभाव को देखती है कि आपने किस इंटेंशन से, किस प्रभाव से उस चीज को यूज करा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है सिर्फ अपनी राय दी थी, तो इसको कह के आप नहीं बच सकते।
1: सर, अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारिता में मानहानि से कैसे बचा जा सकता है?
0: देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आमतौर पर रिपोर्टर्स को ये डिफेमेशन के केसेस बहुत झेलने को मिलते हैं
1: जी जी जी,
0: क्योंकि रिपोर्टिंग आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की भी खिलाफ रिपोर्टिंग कर देते हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो
1: जी,
0: तो सीधे डिफेमेशन का नोटिस भेज देती है जो विक्टिम होता है या जो जिसको लगता है कि डिफेमेशन हुई है उसकी। तो मीडिया को खासतौर पर डिफेमेशन से बहुत सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता में और मीडिया में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई भी खबर प्रसारित करने से पहले फैक्ट्स की जानकारी करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, रिलायबल सोर्स पर भरोसा करना चाहिए कि कौन से सोर्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है
1: जी।
0: आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि लोग आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनलों
1: जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि वो खबर चला देते हैं तुरंत ब्रेकिंग कि साहब यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे पहाड़ गिर गया, यहाँ पे कुछ हो गया, और पता चलता है कि वो खबर जो है वो ऐसी कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे
1: जी, जी, जी।
0: तो एक कंपटीशन के दौर पे मीडिया को भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो खबर आ रही हो रिलायबल सोर्स से आ रही हो, तभी आप उसे प्रसारित करें, उस फैक्ट्स को वेरीफाई करें कि वास्तव में ऐसी कुछ घटना हैपनिंग वहाँ हुई है या नहीं हुई है, और उसमें संबंधित व्यक्ति का भी आपको पक्ष लेना पड़ता है। अगर आप किसी के बारे में कह रहे हो कि साहब इस आदमी ने जो है धोखाधड़ी कर ली, एक के खिलाफ चला रहे हैं, एक के पक्ष में चला रहे हैं, एक के विपक्ष में चला रहे हैं
1: जी,
0: तो मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, उसको पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन के दोनों के स्टेटमेंट फैक्ट्स को अच्छी तरह पब्लिश करना ही उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफेमेशन का सामना करना पड़ सकता है।
1: सर, अगर किसी की मानहानि हो जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, सपोज करिए कि अगर आपके बारे में किसी ने अपशब्द कह दिए या आपको फेसबुक पे कुछ अपशब्द कह दिया है, कुछ गाली दे दी है, कुछ और दे दिया, तो आप सबसे पहले तो उस एविडेंस को इकट्ठा करिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए
1: जी,
0: ठीक, उस पोस्ट को, मैसेज को, कोई न्यूज़पेपर में आया, कोई क्लिपिंग है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई यूआरएल है, कोई स्क्रीनशॉट है, उन सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा करिए और एक अच्छे एडवोकेट से आप लीगल एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप उसको एक डिफेमेटरी नोटिस दीजिए, और नोटिस के बाद आप सीधे कंप्लेंट केस भी कोर्ट में डाल सकते हैं।
1: सच बताऊं तो सर, इस टॉपिक के बारे में मुझे आज पता चला है कि किसी के मानहानि के बारे में भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी कोर्ट तक बात जा सकती है।
0: बिल्कुल जा सकती है। अगर आपने फेसबुक पे भी किसी को अपशब्द कह दिए तो आपको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ सकता है।
1: क्या मानहानि के मामले में लीगल नोटिस भेजना जरूरी है?
0: जी हाँ, डिफेमेशन के मामले में मोस्टली लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है, लेकिन अगर आमतौर पर अगर डिफेमेटरी नोटिस आपने नहीं भी भेजा, आप सीधे कंप्लेंट केस भी डाल सकते हैं। हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली मामलों में लीगल नोटिस भेजकर एक क्लैरिफिकेशन और अपोलॉजी और विड्रॉल या कंपनसेशन की मांग करना प्रैक्टिकल पहला कदम माना जाता है।
1: ओके,
0: तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप लीगल नोटिस भेजें, उसके बाद आप केस फाइल करें।
1: क्या मानहानि का मामला सीधे पुलिस में दर्ज कराया जा सकता है?
0: देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन की प्रक्रिया समानता कंप्लेंट केस के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष ही शुरू की जाती है, इसलिए केवल पुलिस कंप्लेंट पर निर्भर रहने के बजाय एप्लीकेबल जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा, और लीगल प्रोसीडिंग के तहत ही आप सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो। तो क्योंकि पुलिस जो है हमारी बड़े कोई मैटर्स होते हैं उनके लिए होती है, लीगल केसेस जो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं और ये, तो ये मजिस्ट्रेट के समक्ष ही जो है कंप्लेंट केस में वाद दायर कर सकते हैं आप इसके लिए।
1: क्या सिविल डेफिमेशन में क्या मांग की जा सकती है?
0: देखिए, जो भी आपका डेफिमेशन हुआ है, सिविल डेफिमेशन होता है, फैक्ट्स के आधार पे जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी आप जो है कंपनसेशन चाह रहे हैं, और कुछ परिस्थितियों में इंजेक्शन जैसी रेमेडीज भी मांगी जा सकती हैं, तो एज पर सिचुएशन डिपेंड करता है कि उसमें आपको जो है क्या कंपनसेशन डिमांड करनी चाहिए। और बेहतर होगा कि आप इसे किसी अच्छे, अगर कोई ऐसा आपको कोई आपको फेस करना पड़ रहा है डिफेमेशन, तो आप किसी अच्छे लॉयर से डिस्कस करके और उसको कंप्लेंट केस एक फाइल करें कोर्ट में।
1: डिफेमेशन केस में इविडेंस कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, डिफेमेशन केस में इविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा गया है, किस टाइम कहा गया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूआरएल पे कहा गया है, फेसबुक पे कहा गया है, किसी मैगजीन में छपाया, किसी अखबार में छपाया, उसका कंटेक्स्ट क्या था और रेपुटेशन पे उसका क्या इफेक्ट आया है, ठीक है, तो इन सबको इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है। इसलिए डिफेमेशन में जो भी चीज होती है, जो एविडेंस होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं, तो आपको एक एक चीज को संभाल के रखना है और जो भी फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो है डिफेमेशन आगे कंप्लेंट केस फाइल करना है। पब्लिक अपोलोजाइज जो होती है वो अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो रहा है या अप्रोप्रिएट अपोलोजाइज से डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है और इसका इफेक्ट केस की स्टेज और एप्लीकेबल लॉ पर निर्भर करता है, अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट कर रही हैं और एक विक्टिम जो है वो अगर इससे संतुष्ट है कि हाँ पब्लिक अपोलोजाइज कर लें या पब्लिकली वो माफी मांग लेता है अपने किए गए कृत्य के लिए या उसने जो उसकी मानहानि करी है, तो पब्लिक अपोलोजाइज से भी डिफेमेशन केस समाप्त हो सकता है।
1: क्या सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखना पर्याप्त है?
0: देखिए, स्क्रीनशॉट यूजफुल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और लीगल एडमिसिबल के लिए आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो स्क्रीनशॉट के साथ साथ कोई ऐसी बात किसी के सामने कही गई हो, कोई विटनेस हो, कोई पब्लिश हुई हो किसी मैगजीन में या कहीं पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सारी चीजों को जो एविडेंस के तौर पे जब आप प्रेजेंट करोगे तभी आपका केस मजबूत बनता है। तो निश्चित तौर पे देखिए, स्क्रीनशॉट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी एविडेंस आपको रखने पड़ सकते हैं।
1: क्या गाली देना हमेशा मानहानि है?
0: नहीं, देखिए, हमेशा मैं नहीं बोल सकता, हर एब्यूसिव स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली डिफेमेशन नहीं होता, और किस माहौल में कौन सी बात कही गई है और किस इंटेंशन से कही गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो सबसे बड़ी चीज आपकी जो नेचर ऑफ कंटेक्स्ट है उसका, प्लस उसमें जो आपका इंटेंशन है, वो सारी चीजों को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफेमेशन कैटेगरी में है या नहीं है।
1: क्या किसी की रिपुटेशन खराब करने के लिए झूठी खबर फैलाना कानूनी अपराध हो सकता है?
0: देखिए, फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप किसी के खिलाफ झूठी खबर प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है और इसके लिए आपको लीगल जो है प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है।
1: मानहानि और साइबर क्राइम में क्या संबंध है?
0: देखिए, जो मानहानि होती है ऑनलाइन डिफेमेटरी कंटेंट होता है वो डिजिटल मीडियम का उपयोग करता है, लेकिन हर ऑनलाइन डिफेमेशन को आप ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम नहीं कह सकते, ठीक है, तो एप्लीकेबल ऑफेंस और लीगल प्रोविजन फैक्ट्स पर निर्भर करता है कि वो डिफेमेटरी कंटेंट था या वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में जाएगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, साइबर क्राइम हो गया एक तरीके से, आपसे ऑनलाइन किसी ने फ्रॉड कर दिया, पैसे का नुकसान हो गया, और डिफेमेशन हो गया आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाना।
1: ओके,
0: तो इसीलिए ऑनलाइन अगर डिफेमेशन हो रही है तो उसको आप साइबर क्राइम नहीं कह सकते, है ना, कहीं ना कहीं वो जो है दोनों की एक प्रोसीडिंग्स अलग अलग है और दोनों में जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि कौन से फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वो चीज लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएगी।
1: अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी बात व्हाट्सएप पर सिर्फ 2-3 लोगों को बताता है तभी भी एक्शन हो सकता है?
0: देखिए, पब्लिकेशन का प्रश्न और अन्य लीगल रिक्वायरमेंट फैक्ट्स के आधार पर देखे जाएंगे, अगर ऑडियंस की संख्या अकेला है तो निर्णायक फैक्टर अगर मतलब एक ही आदमी है तो उसको हम कहते हैं कि भाई एक उसको हम नहीं मानेंगे डिफेमेशन, लेकिन अगर पब्लिक ग्रुप में आपने डाला है और व्हाट्सएप ग्रुप पे कई मेंबर्स हैं तो निश्चित तौर पे वो डिफेमेटरी प्रोसीडिंग्स का आपको सामना करना पड़ सकता है।
1: अगर आम नागरिक को मानहानि से बचाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए पहली चीज तो आपको कोई भी स्टेटमेंट को फॉरवर्ड नहीं करना है ना, बिना किसी को जांचे परखे अगर कोई आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट देख लिया किसी के बारे में, कोई बात किसी ने अपशब्द लिखी और आपने उठा के उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया, तो उस चीज को आपको नहीं करना है। बिना वेरिफिकेशन के किसी पर गंभीर आरोप ना लगाएं, सोशल मीडिया पर सोच समझ के लिखें और किसी विवाद या फैक्ट्स और एविडेंस के बिना आरोप को पब्लिक में ना कहें। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
1: ये तो है ही सर। और जो ये टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा रहा है और हमारे श्रोताओं को भी पता चला है कि भैया हम किसी के बारे में अपशब्द बोल देते हैं, मतलब किसी की तारीफ भी करते हैं और उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है।
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: तो मुझे नहीं पता था कि भैया कानूनी तौर इसके लिए किया जा सकता है, कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगी, आखिरकार रेपुटेशन को लेकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए तो क्या करना चाहिए? रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया हो तो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए किसी ने अगर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है तो सबसे पहले तो आप एविडेंस इकट्ठे करिए, उसे सुरक्षित करिए, गुस्से में ना आए, उसकी जवाबी उसके पोस्ट का जवाब ना बिल्कुल भी, और फैक्ट्स के अनुसार उचित लीगल रेमेडी जो भी है वो क्वालिफाइड लॉयर से मिलकर आप सलाह लें। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि अगर उसने आपको एक गाली बक दी तो आप चार गाली उसको भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे दो, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी डिटेल पूरी लीजिए और उस बात को लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू अपने एडवोकेट को बताइए, उसको लीगल नोटिस भेजिए, देन आफ्टर आप कंप्लेंट केस फाइल करके उसको पनिश कराइए।
1: सर आपने जैसे बोला कि गाली दिया उसने सामने वाले ने, तो क्या जब सामने वाले गाली दे रहा है तो क्या अगर दूसरा व्यक्ति भी गाली से ही रिप्लाई कर रहा है तो दोनों के ऊपर?
0: हाँ तो डिफेमेशन दोनों तरफ से बन सकता है।
1: ओके,
0: आपने भी तो वही काम कर दिया जो उसने करा, तो आपने उसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर?
1: जी बिल्कुल करेक्ट।
0: तो कोर्ट आपको रिलीफ क्यों देगी फिर, जब आपने उसका जवाब दे दिया तो कोर्ट में आप किस मुंह से कह सकते हैं कि मेरा डिफेमेशन हुआ है?
1: ओके,
0: तो डिफेमेशन तो तब हुआ ना जब उसने आपका डिफेमेशन किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आप शांत बैठे हुए हैं, तो आप अपनी लीगल लिमिट्स जो आपकी लीगल बाउंड्रीज है उसको समझिए, है ना, उसके हिसाब से ही आप जो है व्यवहार करिए। अब ये नहीं कि आपने अगर जो है किसी ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में गाली दे दी एक तो आपने तो उसको 10 बातें लिख के भेज दी, आप पे भी उन पर भी डिफेमेशन हो सकता है।
1: सर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, आमने सामने हम बात कर रहे हैं, आमने सामने गाली दे रहे हैं, तो मतलब हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि हमने इसके
0: तो
1: बारे में कुछ
0: कैटेगरी में नहीं आएगा ना फिर, तो आपकी पर्सनल एक जो है गॉसिप हो रही है ना बंद कमरे में।
1: ओके ओके,
0: डिफेमेशन तब होगी जब उस इमेज से तीसरे आदमी आपकी इमेज का आपको नुकसान पहुंच रहा है।
1: मतलब प्रूफ होना चाहिए तभी।
0: बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, कोर्ट में हर चीज प्रूफ पे ही एविडेंस पे ही डिपेंड करती है।
1: चलिए इस चीज का तो भाई कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास प्रूफ है तो देखिए भैया आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है इसने कैसे बोल दिया तो बिल्कुल आप जाइए और केस करिए। बाकी इस चीज के बारे में मुझे भी आज ही पता चला है, आई होप कि आपको भी आज ही पता चला होगा। तो आप किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचेंगे कि भैया आगे एक्शन भी लिया जा सकता है आप सभी के लिए। तो सर एक छोटा सा मैसेज।
0: देखिए मैसेज बस यही है कि आप लोग जो है अपने लीगल राइट्स को जाने, ठीक है, और कभी भी किसी से कोई भी ऐसा डिफेमेशन का काम ना करें, कोई भी पोस्ट को बिना देखे आप आगे फॉरवर्ड ना करें, और अपने जब आपको लीगल राइट्स पता होंगे तो निश्चित तौर पे आपके व्यवहार में वो चीजें आएंगी, आप क्राइम भी नहीं करेंगे और आप सुधरेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे।
1: ये तो है।
0: और जो है ऐसी हमारा कम्युनिटी रेडियो 89.6 आप सुनते रहिए
1: और से यही निवेदन करेंगे कि आते रहिए।
0: मैं तो हर बार ही आऊंगा जब आप बुलाएंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम श्रोताओं अब हम यहाँ से लेते हैं जाने की इजाजत, बाकी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा है, क्योंकि आप सभी के लिए हम टॉपिक लेकर आते हैं रहते हैं अलग अलग टॉपिक। बिल्कुल सर सही है ना?
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं वेट करता हूँ कि कब जो है आपका ये लीगल टॉक शो आप आए और आप मेरे को इनवाइट करें, मैं कोई अच्छा सा नया टॉपिक अपने जो हमारे लिसनर्स हैं 89.6 कम्युनिटी रेडियो के उनको एक नई जानकारी उन्हें मिले।
1: जी बिल्कुल ये तो सही कहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, करेंगे ढेर सारी बातें।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और आरजे खुशी। मतलब भाई देखिए, जब भी टाइम मिलता है शाम को भी शो करने का, तो हम सोचते हैं कि क्यों आए जाते हैं शो करने के लिए, क्योंकि आप सभी से दूर तो हम भी नहीं रह पाते हैं, घर आने के बाद थोड़े बोर होने लग जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो यार स्टूडियो चलते हैं, आप सभी के साथ कुछ गप्पे सप्पे लगाते हैं। फिलहाल आप ऑफिस से निकलने की तैयारियों में होंगे और बहुत से तो अभी ऑफिस में ही होंगे, और क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है 10 बजे तक भी होती है। तो फिलहाल खुशी, तुम ये बताओ, अभी घर से भागी भागी आई हो, क्या हाल है तुम्हारे?
6: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं, और शाम की चाय, ओए होए होए,
1: मतलब तुम चाय पी के आ गई हो?
6: हाँ, मैं चाय पी कर आई हूँ, मम्मा ने गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय बनाई थी, तो उन्होंने कहा बेटा अब आप ऑफिस जा ही रहे हो, तो क्यों ना एक कप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पी कर जाओ, आपका दर्द भी नहीं होगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो मैंने कहा चलिए, एनर्जी हाई लग रही है या नहीं लग रही है आपको, बताओ मुझे।
1: नहीं, एनर्जी तुम्हारी हाई है क्योंकि तुम मम्मी के हाथ से चाय पी कर आई है ना, इसलिए।
6: हाँ, लड़की इशारा मेरा समझ गई है।
1: हाँ, और देखिए, एक कप चाय मिल जाना तो आपकी थकान वैसे भी दूर हो ही जाती है, छूमंतर हो जाती है। तो फिलहाल हम इस इवनिंग शो में हम करने वाले हैं ऑफिस का मूड, यानी कि जब भी हम ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं ना, तो जल्दबाजी में कभी कभी हम कुछ चीजें ऑफिस में ही छोड़ जाते हैं।
6: मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है यार। अभी देखो, मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो कभी मैं अपना चार्जर भूल जाती हूँ, कभी मैं,
1: ये तो तुम डेली भूलती
6: हो, कभी मैं कुछ जो यू नो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, कुछ ऑर्डर्स मेरे आते हैं
1: वो भी बहुत टाइम तक रहते हैं तुम्हारे ऑफिस में,
6: एंड कोई मुझे गिफ्ट देकर जाता है तो वो भी मेरे यहीं पर रखे रहते हैं, और वो काम पहुंचाना रीना का होता है। रीना मेरे घर आती है, कहती है बहन आप अपनी ये जो चीजें हैं, जो गिफ्ट्स हैं, इनको संभालो वरना मैं रख लूंगी।
1: हाँ, एक्चुअली मैं शाम को ऐसा होता है कि जब मेरे को यहाँ मौका नहीं मिलता है तो मैं अकेली बोर होती हूँ, तो मैं इसके घर चलाती हूँ और देखती हूँ कि इसका सामान यहीं रखा है, तो मैंने कहा चलो यार पहुंचा देते,
6: काम भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा।
1: यही है ना, किसी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले ही सामान आपका हो।
6: हाँ, एक तीर से दो निशाने, देख रहे हैं आप हमारे श्रोता, सुन रहे हो ना आप। चलो अभी हम कार्यक्रम को ना आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करने वाले, जैसे अभी रीना ने कहा कि ऑफिस में ना हमारी कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाती हैं, है ना। अपने ऑफिस का आप काम पूरा किया, लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और सीधा घर की तरफ निकल गए, रास्ते में मूड एकदम अच्छा है, लेकिन घर पहुँच कर जैसे ही फोन निकालते हैं एंड बैटरी देखते हैं 8% होती है, और तभी याद आता है चार्जर, लेकिन चार्जर तो ऑफिस में ही रह गया जनाब, अब वापस ऑफिस जाने का मन भी नहीं है और फोन बंद होने का डर भी है। कई बार घर जाने की इतनी जल्दी होती है ना कि हम अब फोन का चार्जर, ईयरबड्स एंड बॉटल जैसी छोटी छोटी चीजें वहीं छोड़ आते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है दोस्तों, अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वही चीज ढूंढते हैं जो हम शाम को भूल जाते हैं, है ना। आप भी ऐसा करते हो ना, मुझे पता है, तभी आप इतना मुस्कुरा रहे हो जनाब। देखिए, सबके साथ ये होता है, कॉमन सी बात है। ऑफिस से जब हम पूरा दिन काम करके थक कर घर जाने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है।
1: और तुमने ऑफिस की बात करी तो मेरे को ना कॉलेज की बात एक याद आ गई।
6: हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए।
1: मैंने, जबकि मुझे पता था कि 10 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है, और मैं लंच बॉक्स कॉलेज में भूल आई थी।
6: ओहो,
1: 10 दिन बाद गई तो सोचो मैं उस लंच खोलने के बाद। और मेरी मम्मी डेली सुनाती थी, पड़े होंगे ऐसे ही, ना तूने उसे धो के रखा होगा, अब जाएगी ना 10 दिन बाद, जब उसको खोलेगी अच्छी परफ्यूम वाली खुशबू आएगी तेरे को।
7: तो वो दिन मेरे को याद ही रहते हैं। बाकी ऑफिस से जब हम निकलते हैं तो जल्दबाजी इतनी होती है कि कुछ चीजें हम ठीक जाते हैं।
6: और सुबह जब हम ना बड़े प्यार से ऑफिस निकलते हैं ना, तो मम्मी बड़े प्यार से ना जो लंच बॉक्स पैक करके देती हैं, दोपहर में खाना खाया और फिर काम में लग गए। शाम जब आती है ना तो घर जाने की जल्दी इतनी होती है कि बैग उठाया और निकल गए। घर पहुंचकर बैग खोला और अचानक याद आया, अरे यार लंच बॉक्स तो ऑफिस में ही रह गया। फिर दिमाग में पहला सवाल आता है, अब कल सुबह कौन लेकर आएगा? और दूसरा सवाल, क्या उसमें कुछ बचा भी है या ऐसे ही छोटी छोटी चीजें ऑफिस लाइफ का हिस्सा है? खासकर जब दिन भर काम ज्यादा हो और शाम को जल्दी निकलना हो तो दिमाग बस घर पहुंचने पर लगा रहता है। तो बताइए, आपने ऑफिस में अब तक सबसे अजीब चीज क्या छोड़ी है लंच बॉक्स में? हाँ बताओ। चार

0: कि मैं तुम्हारे लिए सुबह उठ के लंच बनाती हूँ, यानी कि मुझे तो नींद आती नहीं है, तुम सबको ही नींद आती है, इसीलिए तुम लंच खाते नहीं हो, वापस ले आते हो। मतलब इतने ताने सुनने को मिल जाते
1: नहीं
0: हैं।
1: वो ताने सुनाने का उनका पूरा राइट भी बनता है ना रीना। देखो ना, हमारी मम्मा सुबह 5 बजे उठ जाती है और इतनी मेहनत सबके लिए करती है ना, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो होती है।
0: बिल्कुल, इसीलिए जब भी आप लंच लेकर जाए
1: तो उसको पूरा फिनिश करें,
0: करके
1: ओके?
0: ही लाए। अगर देखिए आप नहीं भी खा रहे, आपने सोचा कि हम बाहर से कुछ खा लेते हैं,
1: हाँ।
0: तो कुछ जरूरतमंद को खाना आप दे दीजिए,
1: आप दे, हाँ, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ये ज्यादा बेस्ट आइडिया है।
0: लेकिन हम मिलेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद, वो भी बहुत जरूरी है।
1: अरे हाँ यार, चलो गाना सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा, उसके बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। बने रही है फिर मुरादाबाद 89.6 पर मजेदार गानों के साथ, बातों के साथ। दो कुड़ी इतने बैठी है जी।

0: श्रोताओं, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। फिलहाल आप सभी को गुड वाली इवनिंग है। आई होप कि आप सभी ने भैया घर में पकवान है ना बना ली होंगी, है ना। खुशबू जो आ रही है मुझे यहाँ तक आ रही है, खुशबू तुम्हें आ रही है?
1: हाँ, मुझे खुशबू आ तो रही है,
0: सोंधी सोंधी सी।
1: मुझे ना आलू गोभी की खुशबू आ रही है।
0: ये लड़की आलू गोभी बहुत खाती है इसलिए इसको आलू गोभी याद आ रही है।
1: मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है, आलू गोभी मटर और भी उसमें बहुत सारी सब्जियां हूँ। और हो
0: बहन, ठंड का मौसम आने वाला है, मटर आलू मटर ही मिलेगा, टेंशन मत ले।
1: हाँ, आलू मटर फिर तो बस हर घर में यही
0: आलू मटर गोभी मटर।
1: कोई रिलेशन वालों को फोन आते रिश्तेदारों का भी तो हाँ जी ठीक है, हाँ आज खाने में क्या बनाया? गोभी आलू। आज बनाया मटर आलू। आज क्या बनाया? गाजर आलू।
0: मोस्टली ये सुनने को मिल जाता है। फिलहाल देखिए हम काम की बात पर आते हैं।
1: हाँ।
0: यानी कि घर से शॉपिंग लिस्ट, शाम को ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और तभी घर से फोन आता है, आते हुए सब्जी ले आना और हाँ वो वाला सामान भी। अब वो वाला सामान तो पता नहीं कौन सा होता है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया इसका। और दूध भी। और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, हाँ हाँ सब याद है, रहेगा, सब ले आऊंगा। फोन रखा और दो मिनट बाद आधी लिस्ट गायब हो जाती है। रास्ते में ट्रैफिक मिला, फोन आया, किसी फ्रेंड से बात हुई और शॉपिंग वाला बात दिमाग से निकल गई। घर पहुंचते ही पहला सवाल, सामान लाए? और हम बैग की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे शायद सामान खुद बैग में आ गया हो। तो आज शाम घर से अगर शॉपिंग लिस्ट मिले तो उसे याद रखने की कोशिश मत करना, फोन में लिख लेना और बताइए आपके घर में शाम को सबसे ज्यादा कौन सी चीज लाने की बोली जाती है, तुम बताओ।
1: मेरे घर में सबसे जब मैं घर की तरफ जाती हूँ तो मेरी मम्मा का मुझे कॉल आता है कि बेटा जब आप आओ ना तो उधर से दूध लेकर आना।
0: हाँ।
1: और कुछ सब्जियों की लिस्ट वो बता दी थी को कॉल पे, ये सब्जी लेकर आनी है। तो मैं जब घर ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं सामान जरूर लेकर जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे अभी आपने बोला कि फ्रेंड का कॉल जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मेरी दोस्तों का कॉल आ जाता है। और आपको बताया कि जब लड़कियां बात करना शुरू करती है ना तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। एग्जाम्पल हमारे दोनों का ही ले लीजिए। तो क्या होता है, मैं भूल गई एक बार ऐसा ही, तो मम्मी ने बोला बेटा मैंने आपको सामान लाने के लिए बोला था, कहाँ है? तो मैंने सोचा वो तो मैं भूल गई और मैंने मम्मी को मतलब एक बहाना दिया। मैंने बोला मम्मी वो ना रास्ते में एक आंटी जी मिल गई थी तो उनसे मैं बात कर रही थी और मैं भूल गई आपको सामान लेकर आना।
0: तो मम्मी बोलती है कि दोबारा जाओ, है ना।
1: हाँ, फिर मम्मी बोलती है अभी दोबारा जाओ, सामान लेकर आओ, उसके बाद घर पे बैठना आराम से।
0: लेकिन पता है खुशी, ऑफिस से निकलने से पहले घर से कॉल भी आ जाता है, अरे कितने मिनट में निकलना है? तो हम बोलते हैं बस 10 मिनट में निकल जाएंगे।
1: हाँ, बहुत कॉल आते हैं यार, मेरी फैमिली के तो बहुत ज्यादा कॉल आते हैं।
0: ऑफिस में शाम को एक लाइन बहुत बोली जाती है, बस ये काम खत्म कर लूं फिर निकल लूंगा, और बस और यही बस कभी कभी आधा घंटा खा जाता है। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा सामने, दूसरा खत्म हुआ तो कोई और मैसेज आ गया, फिर अचानक लॉक देखते ही अरे इतना टाइम हो गया। घर पर भी बोल रखा है कि आज जल्दी ही आऊंगा, अब जल्दी निकलना है तो काम भी करना है और बैग भी पैक करना है। ऐसे में दिमाग की हालत ऐसी होती है जैसे एक साथ 5 ऐप चल रहे हो। तो बताइए आपके ऑफिस में बस 10 मिनट वाली बात सच में 10 मिनट रहती है या लंबी हो जाती है? मेरी लिस्ट तो हमेशा लंबी हो जाती है।
1: जब हम ऑफिस से घर की तरफ निकलते हैं ना तो हम सबसे कह देते हैं कि हाँ बस 10 मिनट लगेगा, लेकिन वो 10 मिनट ना कब 10-15 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता है। और ऑफिस से निकलते वक्त अपने लैपटॉप बंद किया, चार्जर निकाला, बैग उठाया, बाहर आ गए, लिफ्ट में पहुंचे, अचानक दिमाग में ना सवाल आता है लैपटॉप बंद किया था या नहीं यार, अब वापस डेस्क पर जाने की इच्छा भी नहीं होती है, है ना, लेकिन मन है कि मानता नहीं है। फिर किसी आप कलीग को कॉल करते हैं, यार मेरे टेबल पे देखा लैपटॉप बंद था या नहीं, और अगर कोई बोले हाँ बंद है तब जाकर चैन मिलता है। सच में एवरीवन यही होता है जब दिमाग घर जाने की जल्दी में होता है, छोटी सी बात भी बड़ा डाउट बन जाती है ना, डाउट हो जाता है ना मन में ना। कई बार मेरे मन में भी डाउट हो जाता है कि पता नहीं मैंने चीजें ठीक से ऑफ की है नहीं की है, फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम बोलती हो हाँ ठीक है, तब मुझे लगता है कि चलो थैंक गॉड सब चीजें अच्छे से हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे इसकी टेंशन नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाद भी कोई शो करने के लिए आने वाला है।
1: हाँ, फिर तो कोई इशू नहीं है, बट मेरे साथ होता है।
0: और मेरे साथ ऐसा कब होता है, जब मैं घर से निकलती हूँ ना तो ताला बार बार चेक करती हूँ, ये बंद हुआ या नहीं हुआ कभी? खुल तो नहीं रहेगा?
1: हाँ, मेरी फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही करते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है घूमने के लिए या फिर कहीं भी रिलेशन में कहीं भी हम जाते हैं, मार्केट ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ऐसे ही मैं भी ताला चेक करती हूँ लॉक किया है ठीक से या नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमने सोचा कि हाँ लॉक कर दिया लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए चेक करना पड़ता है।
0: ऑफिस से जब भी आप निकले तो एसी, लैपटॉप ये जरूर चेक करें कि बंद किया है या नहीं किया है। पता चले अगली बार आप अगले दिन ऑफिस जाए तो आपके बॉस बोले अहो बेटा ध्यान कहाँ रहता है, घर जाने के जल्दी में सब कुछ भूल जाते हो, ऐसे ही देख लो कुछ खराबी हुई ना तो सैलरी से पैसे काट लूंगा, ये बात जरूर सुनने को मिल जाती है। आप जरूर बताइएगा कि आपको मिलती है सुनने को या नहीं मिलती है। हमारा नंबर है 9837896896। फिलहाल बात करेंगे ट्रैफिक में सबको जल्दी क्यों लगती है। अब ऑफिस खत्म हुआ, शुरू हुआ घर पहुंचने का दूसरा चैलेंज। ट्रैफिक, पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम किया और अब लगता है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए, लेकिन सड़क पर निकलते ही हर किसी को जल्दी होती है। आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही है, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है और साइड से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से सड़क खाली होने वाली नहीं है। इसीलिए जितनी जल्दी घर जाने की हो उतनी ही जरूरी है पेशेंस रखें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है और उसकी जल्दी नहीं, आप बस सुरक्षित पहुंच जाइए। तो आप देखिए जब ऑफिस से निकलते हैं तो आपको जल्दबाजी रहती है या फिर सोचते हैं कि यार घर ही तो जाना है, कौन से मुझे बॉस का डांट सुनना है जो मैं इतने जल्दबाजी करूं। पेशेंस के साथ गाड़ी चलाइए जी, क्योंकि शाम के वक्त ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है। लेकिन देखिए ट्रैफिक के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे,
1: अब बात कर लेते हैं हम सिग्नल पर जल्दी। आजकल ना पता है रीना क्या हो गया है ना, आज के टाइम में ना इंसान के अंदर धैर्य बहुत कम हो गया है, पेशेंस नाम सुना है ना, धैर्य,
0: पेशेंस। हां बिल्कुल,
1: आजकल लोग सोचते हैं जैसे 5 मिनट में मैगी बन जाती है ना, वैसे ही सारी चीजें 5 में हो जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। शाम को ट्रैफिक में सबसे ज्यादा टेम्पेशन कब होता है, जब रेड लाइट लगी हो और आपको लगता हो कि बस अभी निकल जाऊं तो 2 मिनट बच जाएंगे, लेकिन वही 2 मिनट कभी भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। घर जाने की जल्दी में ट्रैफिक रूल्स को भूलना बिल्कुल समझदारी नहीं है। रेड लाइट है तो रुकना है, हेलमेट है तो पहनना है, सीट बेल्ट है तो लगानी है, और ड्राइविंग करते समय फोन नहीं चलाना है, क्योंकि ऑफिस में आज का काम ना भी जरूरी क्यों ना हो, घर पहुंचने के बाद कल भी काम किया जा सकता है, लेकिन आपकी सेफ्टी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आज शाम घर निकलते समय एक प्रॉमिस करें, जल्दी होगी लेकिन रूल्स नहीं भूलेंगे।
0: ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है, जल्दी हो लेकिन जल्दबाजी में जो ट्रैफिक रूल है उसको नहीं भूलना चाहिए। बस पहुंचने वाली हूँ, है ना, यही बोलते हैं। घर से फोन आया, कहाँ पहुंची, और जब जवाब बस 10 मिनट में, अब असली कहानी शुरू, 10 मिनट बाद फिर फोन, अब कहाँ हो, जवाब बस ट्रैफिक में हूँ, और 20 मिनट बाद फिर से वही ट्रैफिक। शाम के समय हम सबने कभी ना कभी ये 10 मिनट वाला झूठ बोला ही होगा, और शायद अभी भी आपने बोला होगा। मतलब झूठ नहीं, उम्मीद होती है कि सच में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक वाली प्लानिंग से नहीं बचता। इसीलिए घर वालों को एग्जैक्ट टाइम बताने की बजाय थोड़ा सस्पेंस, मतलब देखिए आप कभी भी घर से फोन आए तो ये मत बोलिए कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उनको बोलिए कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपके पास कॉल भी आधे घंटे बाद ही आएगा। अगर आपने 5 मिनट बोला तो घड़ी में घर वाले ना टाइम देखते रहते हैं, भैया जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट हुआ कॉल आ जाता है आपके पास, और अगर देर हो गई तो एक कॉल करके बता दे, आखिर घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। और इसी इंतजार के साथ मैं लेती हूँ यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक, और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ श्रोताओं, यही मिलने वाले, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है जी।

0: अरे वारीना, ये गाना कितना खूबसूरत है ना। हमारी शाम कितनी खूबसूरत हो गई और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये गाना अब बहुत पसंद आया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, रास्ते में ना याद आया काम, ऑफिस से जब आधा रास्ता हम निकल चुके होते हैं ना, फिर अचानक याद आता है, अरे वो जरूरी फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल गई या भूल गया। जब मन में दो आवाजें कहती हैं वापस जाऊं, दूसरी आवाज कहती है कल देख लेंगे, काम जरूरी है तो वापस जाना पड़ेगा, और अगर जरूरी नहीं है तो पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचते हुए निकल जाएगा। देखिए, जब आप ऑफिस से घर आते हैं ना, तो उससे पहले ना, घर आने से पहले ऑफिस में आप 5 मिनट ये चीजों चेक कर लीजिए, जो आपकी इम्पोर्टेंस फाइल हैं, जो मोस्ट फाइल्स हैं, कुछ काम है, कुछ चार्जेस वगैरह हैं, तो इनको पहले चेक कर लीजिएगा, एंड आपको शाम का ना, आपका जो शाम का आधा घंटे का स्ट्रेस है ना, वो बच जाएगा। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखो, बाकी अपने सफर को एंजॉय करो। और आगे क्या बोलने वाले हो रीना, तुम क्या क्यों मुस्कुरा रही हूँ इतना? हाँ,
1: अरे मैं ये इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि घर पहुंचकर भी आराम नहीं मिलता है ना।
0: घर पहुंचकर आराम तो मिलता है, फोन चला। अच्छा चलो, अभी ये आराम की बात आपने की है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ऑफिस से घर जाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो आप ऑफिस से घर जाने के बाद?
1: देखिए, सबसे पहले मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मेरा पहला काम यही होता है पूजा, क्योंकि यहाँ तो मेरी मम्मी पापा नहीं, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो भाई पूजा टाइम पर होनी चाहिए। 7 बजे, 7 बजते ही घर में दीपक जलने स्टार्ट हो जाते हैं, 6 बजते ही।
0: जी जी जी,
1: लेकिन मैं तो लेट जाती हूँ, 7:30 भी हो जाते हैं, तो मेरे दिमाग में पहले पूजा ही क्या ख्याल आता है, उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ बहुत सोच समझ।
0: पूजा का ख्याल आता है और दीपक का ख्याल नहीं आता है?
1: अरे पूजा दीपक एक ही साथ जल जाता है ना,
0: पूजा तो अलग होती है और दीपक अलग होता है।
1: नहीं, हम भगवान जी का नाम लेते हैं।
0: हाँ देखिए, पूजा करना उसके बाद दीप जलाना, ये बहुत ही हाँ घर में एक पॉजिटिव वाइब आती है और अच्छा भी लगता है। अरे जब हम पूरा दिन ऑफिस से थक जाते हैं, जब हम भगवान के सामने मस्तक अपना झुकाते हैं और दिया जलाते हैं, तो मन को सुकून मिलता है।
1: हाँ, उनके सामने मतलब दिन भर की जो थकान होती है ना, मैं कभी कभी मतलब मैं परेशान भी होती हूँ ना, तो तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठ।
0: अरे वाह क्या बात,
1: वहाँ जाकर मैं गुनगुनाती हूँ, कुछ मैं बातें कहती हूँ,
0: वहाँ पॉजिटिव वाइब फील होती है आपको?
1: मतलब मेरे अंदर जो भड़ास होती है ना, मैं सारी कहती हूँ वहाँ पे, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं अच्छा मतलब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाँ नहीं, कोशिश अच्छी बात है, अपनी ना दिल में ना कोई भी बात रखनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी चीजें हैं वो उसको एक्सप्लेन करने से ना हमारा मन हल्का हो जाता है।
1: और मैं कहीं भी, चाहे घर रहूं चाहे बाहर रहूं, तुलसी का पौधा जरूर मैं अपने पास अपने घर में लगाती हूँ, और परेशान होती हूँ तो मेरा वही अड्डा होता है।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, अब नेक्स्ट टाइम कभी तुम परेशान, मुझे लगा ना कि लड़की दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अब मेरे को आइडिया मिल गया, ये पक्का तुलसी जी के पौधे के पास जाकर बैठी होगी।
1: हाँ, अब तुम्हें आइडिया मिल गया ना।
0: हाँ
1: तो देखिए, ऑफिस से निकलते समय हम सोचते हैं आज घर जाकर आराम करेंगे, आराम करूंगी, लेकिन घर का दरवाजा खुलते ही दूसरा शेड्यूल सामने आ जाता है। सब्जी काटनी है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, घर का कोई काम है, या अगले दिन की तैयारी करनी है। जो हमारी लेडीज होती है ना, प्यारी विमेन होती है, उनके दिमाग में ये खुराफात जरूर चलता है जो ऑफिस से काम करके आती है। और साथ ही साथ खासकर वर्किंग वुमेन के लिए ऑफिस खत्म होने के बाद, मतलब हमेशा काम खत्म होना नहीं होता, इसीलिए अगर आप ऑफिस और घर दोनों संभाल रही हैं, तो खुद को भी थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी कभी खाना सिंपल हो सकता है, कभी घर थोड़ा मिस हो सकता है। आखिर इंसान है, मशीन तो नहीं है ना कि वो जाते ही सब कुछ रेडी कर देगा। क्यों सही कहा ना मैंने खुशी?
0: हाँ रीना, देखो आजकल ना, चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, एंड सभी वर्किंग हो गए हैं आजकल, क्योंकि वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क है, घर का भी मैनेजमेंट है, सारी चीजें मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंसान है, बॉडी है, कोई AI तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है जो थकेगा नहीं, इसको जब चाहे काम पे लगा दो, है ना, तो उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि काम हमारा बाकी है तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप रेस्ट करो, थोड़ा खुद को बॉडी को रेस्ट देना, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप काम शुरू कर लो, आपकी जो शाम है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बच्चों का इंतजार, ओहो मत पूछो भैया, बच्चे ना बार बार कॉल करते रहते हैं, हेलो दीदी आप कब आ रहे हो, कब मेरे लिए चॉकलेट लेकर आ रहे हो, मैं बोलती हूँ कि बस मैं आ रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे, वो फिर कॉल आता है 5 मिनट के बाद, दीदी आपके 5 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुए। हमारे जो नेबर्स है ना, तो वहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे चाइल्ड हैं, बच्चे हैं चाइल्ड्स, और वो मेरे को ना एवरी इवनिंग उनको इंतजार होता है कि खुशी दीदी

0: ये आएंगी तो कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आएंगी। और जब मैं शाम को जाती हूँ तो फिर उन बच्चों से मैं बातचीत करती हूँ, उनके लिए मैं कुछ लेकर जाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है वो। मुझे भी खुशी होती है और उन बच्चों को भी खुशी होती है। कई वर्किंग पेरेंट्स के लिए शाम को घर जाने की जल्दी सिर्फ आराम के लिए नहीं होती है, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह जाते वक्त कह दिया आज जल्दी आऊंगा, शाम को साथ बैठेंगे, लेकिन ऑफिस में काम बढ़ जाते हैं और निकलते निकलते देर हो गई। फिर रास्ते भर मन में वही बात चलती रहती है, ऐसे में अगर देर हो रही है तो बच्चों को बता देना अच्छा है। और जब घर पहुंचे तो फोन लाइट में रखकर कुछ समय सिर्फ उनके साथ बिताइए, क्योंकि बच्चे शायद ये याद ना रखें कि आपने कितने घंटे काम किया, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि आपने उनको उनके साथ कितना समय बिताया, उनको आपसे बात करके कितना अच्छा फील हुआ। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि माना आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा काम होता है ऑफिस का, तो जब आप घर जाते हैं तो ऑफिस के बारे में भूल जाइए, सिर्फ अपने बच्चों पर अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ऑफिस से निकलते समय बहुत दूर से ऑफिस से आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में फोन का जो बैटरी है वो नहीं देखते हैं, 5% होता है या फिर 2% होता है, ऐसे में अचानक स्विच ऑफ भी हो जाता है और फिर घर से कौन आने लग जाते हैं, और जब फोन स्विच ऑफ आता है ना तो घर वाले बहुत टेंशन लेते हैं, अरे कुछ हो तो नहीं गया
0: मेरी मम्मा रह गया। मैं आपको बताती हूँ रीना, इसी बात को मेरे को याद आया। एक्चुअली जब कहीं भी मेरे बड़े ब्रदर, मैं खुद ट्रैवल करती हूँ तो मेरी मम्मा ना फोन करती रहती है, मेरा फोन डाउन हो जाता है, मतलब फोन करते ब्रदर को, लेकिन वो उनको ना सुकून नहीं मिलता जब तक बच्चे बोलना देना कि हाँ हम पहुंचने वाले हैं मम्मी, तब तक वो कॉल करती रहती है। और कभी अगर जैसे फोन डाउन हो गया है तो वो बेचैन रहती है, बार बार दरवाजे से बाहर आती है, बार बार अंदर जाती है, मतलब देखती रहती है कि बच्चे कब,
1: और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे घर पर
0: सही समय पर सलामत घर पहुंच जाए। इंडियन पेरेंट्स ये कल्चर है कि वो ना बस चाहते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं तुरंत अपने बच्चों के लिए,
1: जैसे बच्चे लेट हुए उनके फोन स्विच ऑफ है, दिमाग में भी पता नहीं और ख्याल आने लगता है,
0: ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। पर ना देखो हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम पेरेंट्स के लिए ना हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं, वो हमें भी अभी भी ऐसे ही गाइड करते हैं जैसे अभी हम 2 ईयर्स के हैं। संभल के जाना, ठीक है, गाड़ी ठीक से चलाना केयरफुली होकर, और हाँ किसी से अनजान व्यक्ति से ज्यादा बात मत करना।
1: हाँ ये तो आता ही है। और देखिए रास्ते में सामान लेने निकलते हैं, जब हम ट्रैफिक से आते हैं तो घर जाते समय याद आया कि एक सामान लेना है, सोचा रास्ते में दुकान से ले लूंगी, दुकान पहुंचे सामान लिया पैसे दिए और घर आए, घर पहुंचकर पता चला जिस चीज के लिए दुकान गए थे वही नहीं लाए।
0: अरे ओ यार लड़की कैसी कैसी बातें कर रही है,
1: मेरे यही होता है खासकर
0: शाम। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, पता है मैं क्या करती हूँ, मैं लिस्ट तो बनाकर नहीं लेकर जाती हूँ रीना। और जब मैं मार्केट में से सोच के जाती हूँ कि ये मेरे को सामान लेकर आना है मोस्ट, और मैं शॉपिंग करने जाती हूँ जो सामान की मुझे नीड नहीं होती है मैं वो ले लेती हूँ, और जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है वो मैं भूल जाती हूँ। फिर घर आकर मुझे याद आता है, अरे यार ये तो मुझे सामान लाना था लेकिन भूल गई, फिर दोबारा जाना है। तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा?
1: हाँ मेरे साथ होता है, जो मतलब मेरे साथ बहुत कम होता है, लेकिन जो मेरा भाई है ना, लगता है कि जरूरतमंद चीजें वही भूल जाता है। हाँ, और फिर बोलेगा मम्मी को तुमने नहीं बताया था मुझे। अच्छा? मुझे बोलेगा अरे तूने बोला ही नहीं, मैं तो लाऊंगा कहाँ से, तुम बोलती तो पक्का ले आता ना, अरे इतना सामान लेकर आया वो भी ले आता।
0: वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
1: वो देखिए अगर आपको लगता है कि मैं भूलता हूँ या भूलती हूँ तो अपना लिस्ट जरूर बना कर रखे। और घर पहुँचते पहुँचते भूख भैया बहुत जोरों से लग जाती है। ऑफिस से निकलते वक्त सिर्फ घर पहुँचने की जल्दी नहीं होती, कभी कभी भूख भी बहुत लगी होती है। दोपहर के लंच के बाद पूरा काम और शाम होते ही पेट बोलता है अब कुछ खिलाओ। रास्ते में समोसे चाट गोलगप्पे या चाय की खुशबू मिल जाए तो घर का खाना कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, खासकर शाम का ट्रैफिक और खाने की खुशबू, ये अनएक्सपेक्टेड बड़ा ही डेंजरस वाला हो जाता है। लेकिन रोज बाहर का खाना भी सही नहीं है, कभी चाय और हल्का स्नैक, कभी घर का खाना बैलेंस जरूरी है। तो बताइए ऑफिस से घर जाते वक्त रास्ते में सबसे ज्यादा किस चीज को देखकर आपका मन लल जाता है?
0: तो दोस्तों आज की शाम हमने बात छोटी सी जल्दी की जो हर ऑफिस गोइंग इंसान महसूस करता है, शाम होते ही घर जाने का मन, डेस्क पर छूटता चार्जर, ऑफिस में पड़ा लंच बॉक्स, रास्ते में याद आने वाली शॉपिंग लिस्ट, ट्रैफिक में फंसा घर वालों का फोन, और फिर घर पहुंचकर भी कामों की एक नई लिस्ट। यही तो है हमारी रोज की जिंदगी, है ना? लेकिन इस पूरी भाग दौड़ में ना एक चीज कभी मत भूलिएगा, अपनों के पास वापस जाना। इसलिए सुरक्षित वापस जाना है। आज जब आप ऑफिस से घर निकले, एक बार पीछे मुड़कर अपनी टेबल चेक कर लेना, सामान भी साथ ले, जो आपका सामान है वो भी साथ लेकर आए, और ट्रैफिक रूल्स भी याद रखिएगा। और अब मुझे दीजिएगा घर जाने की अनुमति, मैं भी चलती हूँ। एंड टेक केयर एवरीवन, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, केयरफुली गाड़ी चलाइएगा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
2: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ। माना कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अंदर की जो बातें हैं ना, जो अंदर की फीलिंग्स है, वो निकल जानी चाहिए और अच्छा होता है यार। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं, जो जनाब हैं, वो भी बस इसी के सरताज बनने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आज बहुत सारी बातचीत होगी आपके साथ, आपकी शाम को थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ जो है हम ब्यूटीफुल बनाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, वहीं शुरू होती है हमारी महफिल, दिलों की बात दिलों के साथ। आपका अपना रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद, जहां पर आज प्यार, मोहब्बत, इश्क और न जाने कौन कौन सी बातें होने वाली है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो सिर्फ आपके काम की होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज भी देंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है अब उन्हें नहीं करने देंगे आराम, उनसे बातचीत करना है यार, यही तो हमारा काम है। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में आपका।
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आनंद जी।
2: जी, हालांकि इनकी आवाज आपने पहले भी सुनी है, लेकिन ये अभी काफी सीरियस होके बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सर, मतलब लंच वंच खा पी के आए हो ना आप स्टूडियो में हमारे?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जरा एक शुरुआत होती है तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है, तो वही मैं उस इंजन को स्टार्ट करने के।
2: बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप इंजन स्टार्ट कीजिए, हमने तो पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दी है सर। वेल, आगे बढ़ते हैं सर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए जरा आपने आपको।
3: जी, मेरा परिचय क्या है कि मैं आप ही के बीच का हूँ।
2: बिल्कुल सर।
3: मेरा नाम मनोज बनू है
2: जी,
3: और शायरी और कविताओं से मुझे निस्बत है।
2: क्या
3: मैं
2: बात है?
3: अपने परिचय के बारे में चार मिसरे ही क्यों ना रखूं?
2: बिल्कुल इरशाद जनाब, मजा आ जाएगा फिर तो। आए हाय,
3: कहता हूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है।
2: अरे वाह।
3: अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है। कौन है कैसा खबर है मुझको, सब होशियारी मुझमें है।
2: क्या बात है।
3: पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है।
2: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। तो मनु जी, एक बात मैं आपसे, मैं आपको मनु जी बोल सकता हूँ ना सर?
3: क्या बात है मेरा।
2: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी आवाज में बेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना बढ़िया आप डिलीवर कर रहे हैं अपना, लेकिन ये जो आपने अभी अपने आप को भी इन शब्दों में पिरो दिया, मुरादाबाद, और फिर अपने आप को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये खूबसूरती कहाँ से आती है मुरादाबाद के कलाकारों में? अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सबका कुछ ना कुछ रहा है मुरादाबाद की चीजों से रिलेटेड, अपने आप को भी उसमें शामिल कर देना, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग जब लिखते हो तो उसके अंदर खुद को फील करते हो क्या?
3: आपने सुना होगा कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
2: एग्जैक्टली,
3: तो ये बस प्रभु का आशीर्वाद है।
2: क्या बात है,
3: जिसने जो शब्द अता किए हैं उनके माध्यम से जो जहन में आता जाता है, उतरता जाता है, वही कहा जाता है। कहते हैं ना कि शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, पढ़ा जाता है,
2: पढ़ा जाता है, फील किया जाता है।
3: जी जी, तो बस वही जो वो दे देता है वही हम ले लेते हैं।
2: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर। और ऐसी खूबसूरत बातें जो है आज सुनते रहेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपके शाम को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज वर्मा मनु जी, और आज आपकी शाम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो अपनी डायरी में चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरा एकदम भारी भरकम तैयारी के साथ आए हैं। तो सर, शुरुआत कैसे होने वाली है, क्या है जो आप हमारे श्रोताओं को आज की शाम सुनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं मैं, मतलब बता दूं आपको गाइज, जैसे मनु जी हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि आनंद जी अपनी रफ्तार थोड़ी कम रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ऐसे में कौन सी एक्सप्रेस में सवार होता हूं जो सर ने मेरे को ये पहले से अलर्ट भेज दिया। ऐसा क्यों बोला सर आपने? माना कि आपका फ्लो वो अपना शायर वाला चलेगा, बट मेरा तो वो जॉकी वाला ही रहेगा ना सर।
3: जी, एक शेर कहा जाता है,
2: हर बार
3: बर्क रो था,
2: हाँ,
3: वो बर्क रो था,
2: हाँ,
3: कहाँ रह गया जाने पीछे,
2: हाँ,
3: अब इंतजार करेंगे सकिश्ता पा उसका।
2: हाँ, अरे वाह,
3: सकिस्ता पा, यानी कि जो धीरे धीरे कदमों से चलने वाले हैं,
2: हाँ, हाँ,
3: वो इंतजार करते रह जाते हैं।
2: ओके।
3: तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन है और आप जुड़े हुए हैं, शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं
2: जी।
3: तो ये एक बहुत, जो उसकी स्पीड है आपकी, वो स्पीड काबिले तारीफ है, लेकिन ये जो शायरी है,
2: हाँ,
3: ये हसास का विषय है,
2: इसमें ठहराव चाहिए
3: का विषय है,
2: और इसमें
3: ठहराव की
2: बहुत जरूरत है।
3: बस इसीलिए मैंने आपसे दर्ज की थी
2: कि नहीं तो मैंने वो पब्लिकली रख दी ना सर, देखिए इतनी अच्छी बात है, ताकि वो चीज हमें पता तो चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले।
3: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, जब हम पब्लिक के सामने होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है,
2: क्या ही होता है, उसी के लिए होता है।
3: बेशक इसमें कोई जरा सा भी गुंजाइश नहीं कहने की, मुरादाबाद की और आपके एफएम की जो जनता है, जो श्रोता है, वो निहायत खास हैं, कोई आम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं रेडियो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला, और आप भी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है आरजे बन जाएंगे आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती रही तो। खैर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मनु जी आपसे बातचीत करके, और वैसे तो कई मरतबा मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है आते जाते रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग गुफ्तगू करने लग जाते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आज जो ये इंट्रैक्शन हो रहा है ना सर, मेरा आपका पहली बार हो रहा है शायद ये कॉन्वर्सेशन ना?
3: जी जी, ये पहली बार ही है जो मैं हिम्मत समेट के आपके सामने हूँ।
2: अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हमेशा इतना अच्छा करते हैं, मैं इवन आपकी स्टेटस भी देखता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जब भी कोई ओकेजन होता है सर का हम देखते रहते हैं, मान सम्मान और आपकी जो चीजें आप करते हैं मतलब बढ़िया है, और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास कलाकारी है, अगर वो पहचान के उसमें कुछ अच्छा करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
3: सही कहा आनंद जी, ये बिल्कुल आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इतनी आपने सम्मान प्रदान किया है। मैं फिर अपनी दो लाइनें रहूं?
2: जरूर सर,
3: ये यही शेर में दो लाइनें दो मिसरे होते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जो सामाईन जो श्रोतागण है
2: जी जी
3: उनके लिए भी है कि मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं।
2: वाह।
3: मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं, उसकी बख्शी हुई नेमत है मेरा कुछ भी नहीं, और चंद मिसरों को जो तरजीह अता करता है, ये तेरा हुस्न समात है मेरा कुछ भी नहीं।
2: क्या बात है,
3: ये तेरा हुस्न समात है मेरा कुछ
2: गजब भाजी गजब। मुझे लग रहा है कि दोस्तों कल सुबह अगर मैंने उर्दू के कुछ भी शब्द नए बोले तो उसमें सारा योगदान मनु जी का होगा, आज पूरी उर्दू सिखा के जाने वाले हैं। मतलब क्या इनके शब्द है, मतलब तलफ्फुज देख रहे हैं आप इनका कितना गजब का है सर, मतलब
3: शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए सर।
3: ये कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए,
2: एब्सोल्युटली सर आप डिजर्व करते हैं, और गाइस हम जो है आपकी शाम को ऐसे ही रॉकिंग बनाते रहेंगे। काम करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सर से कुछ बेहतरीन सा सुनेंगे जो आपकी शाम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना देगा। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा जी आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज मैं भी थोड़ा उर्दू में, थोड़ा शायराना अंदाज में मैं भी कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। जब इतने खास लोग सामने बैठे हों शानदार प्रस्तुति के साथ तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो मनु जी वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में, और मैं चाहूंगा कि कुछ बढ़िया से अपने अल्फाजों में कुछ बढ़िया से हमारे लिसनर्स को सुना दें आप।
1: शुक्रिया आनंद जी, मैं फिर रखता हूँ दो मिसरे
0: जी।
1: तमाशा बन के रह जाए मरासिम,
0: वाह,
1: मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना। तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ लिखते हैं सर, या यहीं पे ये लाइन जो है एंड हो जाती है?
1: जी लाइनें तो हैं, लेकिन जो मौजू है वो ये
0: क्या बात है। लेकिन सर एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो प्यार करने का तरीका होता है, जब आप शेर व शायरी के साथ आते हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। आप लोगों तक वो बात पहुंचा देते हो जो एक्चुअली आप जानते हो, और जो सुन रहा होता है ना, जो उसको फील करता है तो वो समझ पाता है, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना वो दिल से दिल तक का होता है। और ये बात जो आप अपने अल्फाज के थ्रू कह रहे हैं हमारे लिसनर्स से, जो अपनी शायरियों के थ्रू रख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे जो दिल से इस चीज को फील करते हो या इस चीज से जुड़े हो कहीं ना कहीं।
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि शायरी का जो अपना मकाम है, जो उसकी सफलता है
0: जी जी,
1: वो भी यही है कि जो मन कह रहा है वो मन सुने सामने वाला।
0: वही वही, बिल्कुल सही कहा,
1: कनेक्ट करता है, तो ये शायरी वास्तव में अपनी सार्थकता महसूस कराती है।
0: गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आजकल के प्यार के बारे में कुछ है आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग? आजकल का जो सोशल मीडिया वाला जमाना है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, जहां एक घंटे के अंदर प्यार हो जाता है, वहीं दूसरे घंटे में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर कोई नया मिल जाता है, तो इस आजकल का जो जमाना चल रहा है, अगर उसकी बात करूं तो उस पर कुछ अगर आप रखना चाहें।
1: देखिए चीज तो होती है, दरअसल क्या है, बाकी की चीजें मौका ही नहीं देती। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है मौजूदा हालात में
0: 100%
1: कि उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते। जहां रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। लेकिन आप इस बारे में ये नहीं कह सकते कि जो कली, जो जो जो एक पौधा, उसके जो बीज मोहब्बत का उस दिल में फूटा था, वो दबके रह गया, हो सकता है वो खत्म हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। उनके लिए मैं दो लाइनें बताता हूँ आपको।
0: प्लीज, श्योर।
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई,
0: वाह,
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है
0: जी।
1: तो जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है, बस यही सच्चाई का एक सार्थक गुण है। ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई। हमने माना कि तेरा साथ नहीं किस्मत में, मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुकम्मल नहीं होता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्चा इश्क वही होता है जो आपको ना मिले, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते मैंने सुना है। इवन मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल एकदम सच्चा वाला प्यार करते हैं, एकदम सत्यवान टाइप वाला, बट उनको जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं सच्चा प्यार तो वही है जो नसीब ना हो। क्या सच में इसमें, इस बात में सच्चाई है? वैसे आप लोग इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं?
1: सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये है कि जब तक, जैसे मैं एक आपको फिर वही शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा
0: जी, प्लीज।
1: हमारे एक उस्ताद शायर ने कहा है
0: जी जी,
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वसल।
0: क्या बात,
1: वसल यानी कि मिलन का जो समय होता है
0: जी जी।
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वसल, आज तू दिल से निकाली जाएगी। यानी कि जो चीजें पूरी हो जाती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं। और जैसे हमारे गालिब चचा ने भी कहा है कि वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर का पार होता।
0: क्या बात,
1: तो जाहिर सी बात है कि जो उस तीर की खलिश है, दर्द है, वो जब तक गड़ा रहता है तब तक मुकम्मल रहती है, लगातार रहती है। यही अधूरी मोहब्बत का सिलसिला भी है, जो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं लगातार वो अपनी टीस बनाए रखती है, और जो पूरी हो जाती है वो अपना दम तोड़ देती है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसी तमाम जानकारियां जो आज हम सर से निकलवाते रहेंगे और तमाम ऐसे उनके दिल की फीलिंग्स कह सकते हैं जो आज वो हमारे साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने थॉट्स, अपनी बातें, अपनी शायरी, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर आज की शाम हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। मेरा नाम आनंद है।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन जिसमें आज हमारे साथ मनु जी मौजूद हैं। ढेर सारी आपको शेर व शायरी के साथ एक कह सकते हैं फ्लो बना रहे हैं आपका और मेरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं। नए नए शब्दों से हमें रूबरू करा रहे हैं, ढेर सारी बातें उनके साथ चल भी रही हैं और उनकी अंदर की जो कलाकारी है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से।
1: शुक्रिया। थैंक
0: जी जी। मनु जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, और मतलब पूछना क्या, साफ शब्दों में कहूँ तो सुनना चाह रहा हूँ, शेर व शायरी और ये जो कविताएं हैं जो आप रचनाएं हैं वो तो आप करते ही रहते हैं, इवन आप गीत भी बढ़िया गाते हैं, मैंने आपके सुने हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आप अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वही नज्म की, क्योंकि शेर व शायरी से हटके कुछ अलग चीज लगती है मुझे नज्म, है ना, तो कुछ अगर आप नज्म पे चर्चा कर लें, कुछ बढ़िया सी सुना दें तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को डबल मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है वास्तव में।

0: क्या बात है।
1: ये देखिए एहसास किस तरह से पर होते हैं, एक नज्म के साथ कैसे बहती है एक
0: फ्लो
1: नज्म है, जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है? हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे, कल मुकद्दर में ना हो मैं ना रहूं, दिल के जज्बे जुबा से कहने दे, हाँ तेरी आस में जाने कितने, मैंने लम्हों को जिया सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा फासला जैसे रहा सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा फासला जैसे रहा सदियों सा, कतरा कतरा जो निचोड़ा खुद को तो यह एहसास बयां कर पाया, देख ले तू जो तेरा जी चाहे जिंदगी का ये मेरी सरमाया, शर्त वैसे ये नहीं होती जो तुझे चाहे तू उसे चाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे खुशी छा सकती है गाहे गाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे खुशी छा सकती है गाहे गाहे, मैं जो इस दर्जा चाहता हूँ तुझे इसके इजहार में हो सकता है, ये जो एहसास है रिफाकत है मेरा आखिरी आस भी खो सकता है, पर ये उम्मीद के साए भी तो उलझने जीस्त की बढ़ाते हैं, जो महल चुनते हैं रेजा रेजा और फिर आप ही गिराते हैं, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, मुतमईन हो ले जो भी होना है दिल के मिटने को या मोहब्बत को, हो भी जाने दे तमन्ना पूरी आज हाथों में हाथ रहने दे। तो देखा आपने कि ये रवानी
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जो है शब्दों को पिरो रहे थे, और मतलब मैं तो कश्मकश में था कि सर ये मतलब कहाँ क्या क्या फ्लो बना रहे, कहाँ मतलब कहना क्या चाह रहे, और इतनी बढ़िया आपने जो है शुरुआत करी नज्म की और कहाँ से कहाँ आप ले गए, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना मतलब वो शब्द वाला सीन वही था, मतलब मजा आ गया, मैं पूरी गहराइयों के साथ।
1: आनंद जी होता यही है कि जो नज्म है वो उतरती है उसका जो लुत्फ है वो यही लुत्फ है,
0: कसम से
1: अपने आखिरी मिसरे को जाकर ये मुकम्मल कर दे।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन।
1: तो मैंने आपके बीच रखी और आपको श्रोताओं को मुझे यकीन है पसंद आई होगी,
0: बहुत मजेदार लग रही है, और आपके जो शब्द हैं आपके जो अल्फाज हैं बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, नो डाउट आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। और सर देखिए बातचीत तो चलती रहेगी लेकिन थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: जी प्रोफेशनली मैं ज्वेलर्स परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: और बेसिकली मैं रामपुर जनपद के टांडा का निवासी हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: पिछले 2011 से हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद शिफ्ट हुए हैं पीतल नगरी।
0: अरे वाह।
1: और सही कहूँ तो जो मेरी साहित्यिक शुरुआत साहित्यिक जन्म हुआ वो 2006 से मुरादाबाद से ही प्रारंभ हुआ, दादा महेश्वर तिवारी जी जैसी अजीम नवगीत की जो हस्ताक्षर
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: उनके बीच उनसे मिलना जो हमारे सौभाग्य की बात थी।
0: अरे वाह
1: जी। कृष्ण कुमार नाथ साहब, आदरणीय योगेंद्र वर्मा व्योम जी, मंसूर उस्मानी साहब, इन सब से जब मिलना हुआ इनको सुनना हुआ तो इनको सुनते सुनते धीरे धीरे वहीं से वो अनवरत यात्रा शुरू हुई है। तो वर्तमान में मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और जेंडर्स का हमारा वर्क है तो वो चलता रहता है।
0: बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। जैसे ही वर्मा नाम दिमाग में आता है वो ज्वेलर्स तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, नो डाउट। वेल खैर कह सकते हैं कि एक
1: जी,
0: अपना घर का
1: वही
0: मतलब एक होता है ना कि आप शुरू से आप चलता आ रहा है एक
1: जी जी हमारा दादा लाई जो कारोबार है वो यही है
0: बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसी खूबसूरत बातें और खूबसूरत जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। आपके मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आरजे आनंद के साथ हैं आप।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ और ये स्टेशन है दिल से दिल तक वाला। यस ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज स्टूडियो की शाम को और भी खूबसूरत और रंगीन बना रहे हैं अपनी बातों के साथ मनु वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं एंड अभी मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ, ढेर सारी बातचीत उनसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप एंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, कुछ बढ़िया कला है, आप लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा सुना सकते हैं, आप अच्छी शायरी करते हैं, जो भी आप करते हैं, व्हाटएवर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा सोशल मीडिया का हैंडल आपको मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, या ऑफिशियली अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो वहां की भी आप डीएम कर सकते हैं अगर आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है, जो आप हमारे साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो के नंबर पर आप हमें भेजिए ना अपनी एंट्रीज 9837896896, यानी कि 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर पर आप बिना किसी देरी के फटाफट से जो भी आप बढ़िया करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तो ये सबके लिए खुल चुका है। बिल्कुल आप हमें पहुंचाइए अपने प्यारा सा एक मैसेज अपने टैलेंट के साथ, उसके बाद हम आपसे खुद ही कनेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अभी मनु जी से हमने ढेर सारी शेर व शायरी तो सुन ली है, नज्म हमने सुन ली है, अब बारी है एक ऐसी चीज की जो शेर व शायरी से भी परे है। अच्छा सर, शेर व शायरी से मुझे याद आया, शेर व शायरी से हम प्यार मोहब्बत इश्क हर चीज की बातें करते हैं शेर व शायरी के माध्यम से, लेकिन अगर हमें कोई सामाजिक मैसेज डिलीवर करना हो, हमें कोई सोशल मैसेज देना हो या आम जनता के हित की बात करनी हो, तो क्या ये भी शेर व शायरी और गजलों के माध्यम से हो सकती है क्या?
1: हम गजल के माध्यम से, शेर के माध्यम से क्या नहीं कह सकते,
0: मतलब वही मैं आपसे जानना, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती है बहुत सारी चीजें,
1: काव्य की यही खूबसूरती है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि मेरा जो कविता में भी
0: जी
1: और गजल में भी मैं दोनों को पसंद करता हूँ।
0: क्या बात,
1: और दोनों का मैं विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरातन समय में जो हम वेदों की बात करते हैं, ऋचाओं की बात करते हैं, जो अनुष्टुप छंद में आपने देखा होगा
0: जी,
1: ये काव्य चीज यही है जो हर तरीके का संदेश देता है।
0: क्या बात,
1: हर तरह का संदेश देता है, और इसमें सारी की सारी जो जानकारियां हैं
0: जी,
1: जो हमारे हित के लिए हैं, जो सामाजिक हित के लिए हो सकती हैं, इवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, राष्ट्र पर, देश पर, विश्व पर, और अपने अंदर के मन पर, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण पर भी, यही चीज आगे बढ़ी है। बस भाषाओं का फेर है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर,
1: गजल भाषाओं का, उर्दू से ली गई है,
0: बिल्कुल
1: फारसी से ली गई है, और काव्य का क्षेत्र हमारे सनातन से
0: जी
1: जुड़ा हुआ है, कविता क्षेत्र वही है। मैं आपको दो वानगी इसकी दूंगा।
0: जरूर सर।
1: एक रचना के माध्यम से,
0: हाँ जी
1: ये हिंदी रचना है
0: जी,
1: आप देखें किस तरह का संदेश कैसे देती है, एक सामाजिक संदेश, और वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है। बच्चे जिनका अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, ये क्या सोचते हैं, जो वर्तमान में हमारा पार का ध्रुवीकरण हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हमारी हो गई है, ऐसी कंडीशन में ये रहता है कि एक बच्चा या दो बीबी, इस तरीके की कंडीशन हो गई है, तो एक बच्चा क्या सोचता है, ये संदेश बच्चे के माध्यम से बड़े को पहुंच रहा है।
0: क्या बात है,
1: हम उस चीज को देखें, सोचें, महसूस करें
0: जी
1: और कोशिश करें कि हम कैसे बदल सकते हैं। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, ये एक बच्चे की तकलीफ है जो रचना प्रस्तुत कर रही है। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, अलग पले दादा दादी का साथ न मिल पाया, चाचा चाची बुआ सभी का मेहमानी साया, एक अकेली आया है बस रिश्ते नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर, रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर, धूप सुनहरी क्या वो घर वो अंगने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या बात है,
1: भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, क्या खुशियां त्योहारी सब लगता खाली खाली,
0: क्या बात है
1: वो त्योहारी रंग बिरंगे सपने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या
1: देखें, लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, अकेला बच्चा रह गया है, सारी की सारी इंटेंशंस उस पर आ गई और इतना सोफिस्टिकेटेड उसे बना दिया गया
0: जी,
1: उसके बचपन का क्या होना है, ये उसका अधिकार सारा छीन लिया गया। आप देखें, हालांकि हम महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी सहूलियतें, इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है
0: जी,
1: लगे हमारे बचपन में अब सुरखाबों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। लगे हमारे बचपन में अब सुरखाबों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे, बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या बात है।
1: तो ये रचना
0: बहुत ही बढ़िया,
1: क्या कहती है, एक बचपन क्या कहना चाहता है, उसकी अपनी क्या मंशा है,
0: मैसेज भी है इसमें। एक सोशली आपने बहुत अच्छी, मतलब कहना कि अवेयरनेस भी पहुंची है, और जो आपने एक बचपन की बात करके हमें फ्लैशबैक में पहुंचा दिया, उसकी
1: बात
0: ये
1: लग रहा था कि आप थोड़ा सोच रही हैं।
0: नहीं सच, इसीलिए ना सर कि मतलब एक अपना, एक तो बचपन जब शब्द आता है तो हम रिलेट करने लगते हैं तुरंत, हम अपने उस टाइम में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बचपन एक इतनी खूबसूरत चीज है कि हर जवान आदमी सोचता है कि आज एक बार फिर से बचपन आ जाता, हाँ फिर से बच्चा बन जाता। तो वो चीज है
1: जो संभव नहीं है,
0: जो संभव नहीं है बिल्कुल। लेकिन कहते हैं इंसान को अपने अंदर का बचपना कभी नहीं मारना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ शरारतें होती हैं जो उसको बचपन में ले जाती हैं, उसकी आदतें ऐसी फील कराती हैं सामने वालों की कितना बचपन है इसके अंदर।
1: सही कहा, बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। दरअसल क्या है कि हमारी जिम्मेदारियों के साथ हमें एक सीरियसनेस होनी चाहिए,
0: होनी चाहिए।
1: लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने कहा अभी कि अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बचपन जो नहीं भूलता है वही अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखता है।
0: करेक्ट, ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट।
1: आपने बहुत बढ़िया बात कही है,
0: शुक्रिया सर।
1: आप भी बचपन में पहुंच गए थे
0: बिल्कुल, और मुझे बहुत आनंद आया,
1: सार्थकता के महसूस।
0: मुझे बहुत आनंद आया, थैंक यू वेरी मच। आपने ये खूबसूरत बात, ये जो कुछ पंक्तियां थी ना, ये एक्चुअल में वो रियलिटी से हमें रूबरू करा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और मनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने निकाला। लेकिन मैं चाहूंगा कि जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम म्यूजिक वाला, क्योंकि गीत संगीत भी जरूरी है सर बातचीत के साथ, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो एक छोटा सा गीत, उसके बाद जो है लौट कर आते हैं मनु जी के पास और उनसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले उनसे कुछ बेहतरीन भी सुनेंगे। तो सर एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: दोस्तों वेलकम बैक है और ये महफिल सज रही थी आज कुछ खास शब्दों से, कुछ खास शेरो शायरी से और कुछ खास ऐसी बातों से जो शायद आपको आज सुन के आनंद आ गया होगा। आनंद के साथ और साथ में मनु जी भी स्टूडियो में उपस्थित हैं आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप सर आपको भी अच्छा लगा हो हमारे स्टेशन में आके।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वास्तव में हम यहाँ पर दो हैं लेकिन तीन है, एक मैं आनंद और एक आनंद।
0: क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने। और मतलब ये जो संवाद है, जो कॉन्वर्सेशन है, ये कैसे मतलब इतना टाइम हम लोगों का निकल गया, हमें पता भी नहीं चल रहा है। मतलब हाउ इंटरेस्टिंग, कैसे जा रहा है मुझे भी नहीं पता सर। वो ये ना, जब दिल से आप काम करते हो तो मजा आता है, अरे यार ये बोरिंग लग रहा है, चलो कब खत्म होगा, कब भागेंगे, वो फीलिंग है। इसमें लगता है और करो, और ज्यादा करना है, वो है, बस वो भूख बढ़ती रहती है फिर। चलिए सर, अब जो है हमारा जाने का समय हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे लिसनर्स को आप क्या सुनाना चाहेंगे, क्या कुछ खास उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे, जाते जाते क्या छोड़ के जा रहे हैं अपनी स्पेशल छाप।
1: जी आनंद जी, अभी पीछे जो बात चली थी कि रचना, कविता, शायरी क्या सामाजिक संदेश भी देती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसके परिपेक्ष में कि हिंदी की रचना हुई थी
0: जी,
1: दो चार मिसरे, दो चार शेर आप उर्दू के गजल के सुने। जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रहे, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो,
0: क्या बात है,
1: करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रहे, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे। देखिए पहले बुजुर्ग ही सलाह देते थे, मशवरे देते थे, और रहम पसंद बनो, ये पसंद है उसकी, ये ईश्वर के लिए है कि रहम पसंद बनो, ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रहे, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे। और चलते चलते
0: जी जी,
1: मैं अपने सुधी दर्शकों श्रोताओं के लिए, आपके एफएम के इन श्रोताओं के लिए जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दो शेर रखता हूँ और उसके बाद इजाजत।
0: बिल्कुल सर, श्योर।
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है,
0: वाह,
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है, मेरी खामोशियां ठहराव गार सुनता है,
0: क्या बात है,
1: और बराए हुस्ने समात गजल के मिस्रों को।

0: उठा के हाथ उन्हें बार बार सुनता है। और ये हमारे समाइन के लिए, ये श्रोताओं के लिए कि ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का।
1: क्या बात,
0: ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का। बड़े अदब में वो करके शुमार सुनता है।
1: क्या बात है,
0: बड़ी अदब में वो करके शुमार सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी।
1: सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ जो है हमने भी एक जो स्पेशल ये कन्वर्सेशन की, ये जो एक शो था ये एक बेसिकली मेमोरी थी।
0: क्या बात है
1: ना, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो काम तो होता ही लेकिन एक याद भी हम बना लेते हैं।
0: ये मोहब्बत है आपकी, मुझे ताउम्र याद रहेगी।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको ऐसे ही परेशान करने के लिए बुलाते रहेंगे।
0: क्या बात है, मेरी खुश नसीबी है।
1: अरे बिल्कुल,
0: जब भी आप याद करेंगे जरूर आप... नहीं, सर के बल दौड़े हुए आएंगे।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम मुलाकात जो है करते रहते हैं नो डाउट, लेकिन जब लिसनर के साथ मुलाकात होती है तो उसका जो मतलब एक माहौल है वो अलग ही हो जाता है।
0: जी बेशक,
1: है ना। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए और दोस्तों आप कहीं मत जाइए, ऐसी इंटरेस्टिंग शोज के लिए, इंटरेस्टिंग बातों के लिए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए ट्यून इन रहिए आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। जो कहता है भैया, कनेक्शन जो है ना आपका और हमारा, वो दिल से दिल तक का है। जल्दी मिलेंगे फिर कुछ और नए कलाकारों के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और हाँ, ढेर सारा पानी पीना भी जरूरी है क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है।
0: बिल्कुल सही है ना, संदेश रेगुलर रहना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली। तो बाकी दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं। तो अब जो है समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा, एक खूबसूरत नगमा आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए। और बाकी ऐसे ही प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो जी, नमस्कार, कैसे हाल चाल हैं? गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? सब बढ़िया ही होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी को आरजे आनंद का प्यार भरा नमस्कार, सलाम। फिलहाल थोड़ा सा लेट, भागते दौड़ते जैसे तैसे पहुंचे हैं ऑफिस। 9:21 हो रहे हैं जी। आज 4 अक्टूबर की ये प्यारी सी रात है और सबसे मजे की बात यह है कि यार देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं आपसे मिलने पहुंचूंगा, लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना, कभी कभी समय अगर आपके साथ हो तो सब बढ़िया हो जाता है। अभी आनंद को आप सुन रहे हैं।

0: दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है और आज की शाम आप हमसे बात करने के लिए फोन कर सकते हैं हमारे नंबर पे और आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जो जहां भी जा रहे हैं वो जरूर केयरफुली ध्यान से गाड़ी चला रहे होंगे और हमें भी सुन रहे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत जो है हम आज की इस खूबसूरत सी रात्रि की बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि संडे वीकेंड होता है जब हम ढेर सारा एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर डायल करिए 9837896896 और बातें करिए हमारे साथ। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा ट्रैक, इससे हम करेंगे आज के कार्यक्रम की शुरुआत।
1: छुपा बादल में
0: हम दिल दे चुके हैं सनम मूवी से ट्रैक, बहुत ही प्यारा गाना है। इस गाने को सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही आप ट्यून इन रहेंगे आनंद के साथ। अभी लौट कर आता हूँ, वही गुड इवनिंग। ये संडे की शाम है, बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही खूबसूरत शाम और मैं और आप ढेर सारी बातें। फटाफट कॉल करो यार।

0: क्या बात है यार, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। सच में ये पिक्चर मैंने यूट्यूब पे जाके देखी, मुझे बड़ी कमाल की लगी। और नुसरत फतेह अली खान साहब क्या गाते हैं यार, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप एंजॉय कर रहे थे संडे की प्यारी शाम। अब तो रात हो गई है। खैर एनीवेज, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को और अभी हम आपसे लाइव मुखातिब होने के लिए आपके स्टूडियो में, भैया अपने स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में आ गए यार। आपके रेडियो पर हमने जो है दस्तक दे दी है श्रोताओं। सबसे पहले घड़ी मिलाओ यार, वक्त हुआ है 9:31, अभी 9 बज रहे हैं रात के, बट मेरे को फील आ रही है सुबह की। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि सुबह वाली आदत है ना बॉस। दोस्तों वेलकम बैक है वंस अगेन। एक बार फिर से स्टेशन के नाम आपको बताना जरूरी है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। कॉल अगर करना चाहते हैं तो नंबर बिल्कुल हमारा बिल्कुल ऐसे एकदम आपको मशक्कत ही नहीं करनी पड़ेगी, आप लगाओगे तो एकदम लग जाएगा सर करके। नंबर है 9837896896। मुझे श्रुति एंड गिनी का फोन आया एंड वो लोग कहीं पे जाम में थे, बट वो कहाँ थे आई डोंट नो, क्लैरिटी नहीं आ पाई। अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं आप, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं। फिलहाल एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है, आइए अपनी कॉलर से बात कर लेते हैं जरा। फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो जी? नमस्ते।
1: हाय सर, कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ जी, आप बताएं क्या नाम है आपका?
1: सर मैं अक्का बेगनपुर जिला मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अरे वाह अफरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आप जैसे जो गोल्डन लिसनर है ना, हमेशा मौका मार के ले जाते हैं। आपसे पहले दो कॉल कनेक्ट हुए बट कट गए, पता नहीं आप पीछे से दुआएं मांग रहे होंगे जल्दी से लग जाए बस मेरा।
1: नहीं

0: को मिलती है, मजे की बात ये भी बहुत अच्छा लगता है ना।
1: जी सर,
0: बहुत बढ़िया
1: अच्छा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो अभी ना मैं अभी मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि आज हम क्या बात करें किस पे। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को अलग अलग चीजों में सुकून मिलता है। किसी को दिन में ज्यादा सुकून मिलता है, किसी को रात में ज्यादा सुकून मिलता है, राइट, है ना। बट कहते हैं कि रात का सुकून तो अलग ही होता है, क्योंकि रात में इंसान जो है दिन भर की थकान आराम से उतारता है, जाके बिस्तर पर लेटता है, थोड़ा रिलैक्स फील करता है। आपको क्या लगता है, दिन में ज्यादा इंसान को सुकून मिलता है या रात में? दिन में चकाचौनी, सूरज की लालिमा और चारों तरफ शोर शराबा, वो ज्यादा बढ़िया, या फिर रात की सुकून ज्यादा अच्छी है आपके हिसाब से?
1: सुकून मिलता है सर, क्योंकि इंसान दिन में टेंशन भी लेता है और बहुत सारे काम होते हैं, काम में बिजी रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: रात को नो टेंशन होके सोता है, बहुत सुकून मिलता है सोने के बाद।
0: सही बात है, चाहे इंसान कितनी भी प्रॉब्लम में हो उसे नींद आ ही जाती है ना, ये खूबसूरत बात है।
1: नींद आती है और सोने के बाद में सब मतलब अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है।
0: इस बात अभी ये दिस इज मेजर पॉइंट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा ना रात को नींद जब इंसान लेता है तो उसे अच्छा लगता है, सुबह एक नई फ्रेश मॉर्निंग होती है उसकी, राइट अफरोज जी। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ इतने सुनते हैं, मतलब हम जैसे बच्चे तो, मतलब खैर मैं तो नहीं इंक्लूड करूंगा उसमें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को ही उनका जो है दिन निकल रहा होता है, वो 4 बजे 2 बजे 4 बजे 6 बजे सो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उल्टा हो गया है ना।
1: उल्टा हो गया है, हाँ ये बात तो सही बोली सर
0: आपने, है ना। तो वही मेजर पॉइंट है कि मुझे लगता है रात जो है वो सोने के लिए बनी है, रात जो है वो थकान मिटाने के लिए, ताकि ये बंदा जितने भी दिन भर की टेंशन है वो भूल कर थोड़ा सा नींद करे पूरी, ताकि उसकी बॉडी जो है रिलैक्स कर सके, राइट।
1: जी सर, तो क्योंकि हमें रात देर तक ज्यादा जगना नहीं चाहिए सर। मैं तो सर 10 बजे के बाद सो जाती हूँ, 10 बजे तक जगती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही। और आप देखना जो लोग 10 बजे के बाद नहीं सोते हैं या जो सो जाते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक ही मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, दूसरी थोड़ी सी वो रहता है कि हेटिक से चिड़चिड़ा, नींद नहीं आई भाई पूरी रात, ऐसा वैसा।
1: लेट उठते हैं ना सर, तो मतलब चिड़चिड़ापन रहता है और काम भी अच्छा नहीं होता।
0: बिल्कुल, और आपके काम भी देर उससे होते हैं, ये भी बात सच है। बिल्कुल,
1: लेट नहीं उठते, जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो उनका काम भी बहुत अच्छे से होता है और दिन भी बहुत अच्छा जाता है।
0: एग्जैक्टली। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे जो अभी आज जो है, जैसे आज या कल ऐसा होता है ना कि यार चलो ठीक है कल संडे है, परसों मंडे है, आराम से सोएंगे, आज रात भर जो है जागरण करेंगे, रात को फोन चलाएंगे, उनको तुम क्या कहना चाहोगे? वैसे भी बच्चे चलाते ही हैं,
1: बच्चे क्या बड़े भी चलाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि अपने बच्चों को मतलब ज्यादा एक तो फोन ना दें, क्योंकि बच्चों के हाथ जब तक फोन रहेगा तब तक वो सो नहीं पाएंगे, देखते ही रहेंगे फोन कुछ ना कुछ।
0: मतलब
1: ज्यादातर ना सोने की वजह फोन ही है।
0: आई एग्री विद यू। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए फिरोज जी, कि जो हमारा सोने का रूम है ना, वहाँ फोन को लेके नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ फोन का काम ही नहीं है।
1: देखना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं,
0: ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया अफरोज जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल कनेक्ट हुई, बाकी लोग भी कॉल करेंगे, समय थोड़ा सा कम है। किसी का नाम लेंगी और क्या सुनेंगी आज, एक बार फोन लगाया इतनी अच्छी बात पे?
1: जी सर, मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: अरे स्वागत है आपका, बहुत ही खूबसूरत।
1: शायरी करने का मुझे बहुत शौक है सर, बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं कभी कभी तो आपके प्रोग्राम में वॉइस नोट करके भेजती हूँ।
0: हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, सुबह सुबह मॉर्निंग बिंदास हो जाती है। अभी क्या सुनाएंगे आप?
1: जी सर, मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: मुझे लगता है आपने भी अपनी कॉपी पन्ने लेके रखे हुए हैं लिख के। बहुत बढ़िया।
1: बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था।
0: अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा अफरोज जी। और ये जो बीच बीच में शेर व शायरी होती है ना, ये प्रोग्राम में और चार चांद लगाती है ना।
1: बिल्कुल सर, और सबसे अच्छी बात तो ये है सर, चार चांद तब लगते हैं जब आरजे की आवाज़ सुनने को मिलती है।
0: ये बात भी सही करो, गाने तो वैसे सुनते रहते हो, गाने खाली सुनोगे तो पगला जाएंगे। तो भाई
1: हम फोन में भी सुन लेते हैं, लेकिन रेडियो पे सुनने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि बीच बीच में आरजे की आवाज़ सुनने को मिलती है और इतनी दूर दूर से लिसनर कनेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: Exactly. बहुत अच्छा लगा फिरोज जी, क्या सुनेंगी आज की इस खूबसूरत रात में जाते जाते, ताकि आपको चैन की नींद आए। ये बताओ
1: जी सर, मुझे सॉन्ग सुनना है ये दोस्ती तेरे दम से है, और मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ स्पेशली अपनी बेस्ट फ्रेंड लाइबा को।
0: क्या बात है, आपकी बेस्ट फ्रेंड लाइबा जी को भी हमारा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आई होप वो सुन रही हो और मुस्कुरा रही हो, मुझे उम्मीद है।
1: उम्मीद करती हूँ कि उनका कॉल भी लग जाए।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली लगेगा, और ये गाना डेफिनेटली सिर्फ तुम्हारी दोस्त तक नहीं, ये गाना मैं अपने दोस्तों को भी डेडिकेट करूंगा, अपने जितने भी रेडियो के श्रोता हैं सब हमारे दोस्त हैं, और गाना बड़ा अच्छा है आपका। और सच बताओ, ये दोस्ती की बात तो मतलब जितनी कर लो उतनी कम है यार, मेरे को लगता है ऐसा। जी
1: एक दोस्त भी बिना से जिंदगी में होना जरूरी है.
0: ट्रू ट्रू. और वो ही आपको जो है बताता है अच्छे बुरे की पहचान भी, है ना दोस्त जब साथ खड़ा होता है तो.
1: क्योंकि पता है सर मैं भी मतलब ऐसी थी, मुझे भी मतलब मैं सही

0: अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है उसने सब कुछ सिखा दिया मुझको।
1: वेरी नाइस, चलो अच्छी बात है, ऐसी बेस्ट फ्रेंड सबको मिले। क्यों
0: जी सर, बिल्कुल मैं दुआ करती हूँ। हमारी दोस्ती भी तो सर रेडियो के थ्रू हुई है ना।
1: बहुत ही खूबसूरत बात है, रेडियो सिर्फ गाने नहीं बजाता है, दोस्ती भी कराता है दोस्तों, देख लो आप। बहुत अच्छा, थैंक यू अफरोज जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखूँ, और आपकी दोस्त के नाम ही खूबसूरत गाना।
0: थैंक यू सर,
1: बाय। थैंक यू अफरोज। दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकल गया है अफरोज जी की रिक्वेस्ट पे, एंड ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि आप भी हमें कॉल करें, आप भी अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनना, जो भी आप चाहते हैं व्हाटएवर, आप हमें कॉल करें, आप भी हमारे साथ जुड़ें, कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे आज की शाम। एंड शाम तो नहीं कह सकते यार, अब रात ही हो रही है, शाम बोलूँ या रात, जो भी है आप बस कॉल लगाओ और हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, हमें इंतज़ार है आपकी प्यारी प्यारी कॉल्स का। अभी जब तक भी मैं आपके साथ बैठा हूँ तब तक तो एटलीस्ट हम बात कर ही सकते हैं ना। एंड बाकी रामलीला ग्राउंड में जाके देखो यार, क्या बेहतरीन तैयारियाँ चल, कल से रामलीला का आगाज होने वाला है, और इतनी बढ़िया लाइटिंग, चारों तरफ इतना अच्छा माहौल है, बाहर निकल के मैं स्टूडियो को देख रहा हूँ, इतनी चहल पहल है आज रामलीला ग्राउंड के आसपास, मतलब अमेजिंग। और कल से तो रामलीला शुरू हो रही है, तो ऑफकोर्स मतलब पूरा माहौल लगने वाला है।
2: तेरे दम से है ये दोस्ती, तेरे दम।
1: चलो जी, ये दोस्ती आपके दम से है, और अपने भाई साहब इस दोस्ती के वादे को निभाइए और हमें फोन लगाइए 9837896896।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: श्रोताओं, देखिए अभी मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मेरा जाने का समय हो रहा है, क्योंकि मेरा आने का समय थोड़ा लेट था यार। लेकिन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपने ट्यून इन किया हुआ है, संडे की बहुत ही प्यारी रात है। कुछ लोग सो चुके हैं, मतलब आई मीन लेट चुके हैं, रेडियो हल्की वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, और कुछ लोग अभी खाना वाना खा के अपना वॉक वॉक के लिए निकल रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग अभी अपनी गड्डी वड्डी विच बैक है, संडे है, तो मैं कह जी चलो हैंग आउट ही कर लेते हैं फैमिली विच, साथ में जाके फैमिली है। चलो जी, आप जहाँ भी जा रहे हो, जिधर भी जा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो करते रहो। कुछ रसोई में सुन रहे होंगे, कुछ बिस्तर पर लेट के सुन रहे होंगे, कुछ बैठ के सुन रहे होंगे, कुछ फ़ोन ट्राई कर रहे होंगे, मुझे पता है। और इनमें से बहुत सारे लोग ये भी रहो, हाँ आनंद को कैसे पता चल गया, यही तो स्पीकर की एक पावर होती है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ़ोन लाइन मेरी खुली हुई है 9837896896 पे आप बिंदास फोन करो और ढेर सारी बातें करने के लिए मेरे से कनेक्ट हो जाओ, दिल से दिल तक। देखो फोन लगाते रहना, अगर कॉल नहीं लग रहा है, नंबर बिजी जा रहा है, तो प्लीज ट्राई करो, गिव अप मत करो। अगर अभी आप कॉल लगाना चाह रहे हो तो दिल से लगाओ, डेफिनेटली लगेगा। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ी है, एंड बिना किसी देरी के चलिए इनके संघर्ष की कहानी को खत्म करते हैं, आई मीन इनके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, और इनको लाइव ऑन एयर इनसे बताते हैं कौन कहां से जुड़ी है और क्या है उनकी दिल की बात। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं जी?
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: जी जी, वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सर, आप बताइए।
0: मैं अभी बहुत ही बढ़िया हूँ, जबरदस्त हूँ, बस सब ऊपर वाले की कृपा है, सब बढ़िया है। चलिए लाइवा जी, आपकी आवाज़ सुन के हम प्रसन्न हो गए। हम तो खैर कभी कभी इस प्रोग्राम में पहुंच पाते हैं तशरीफ लेकर के, है ना, लेकिन जब आते हैं और आप जैसे प्यारे लोग फोन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल से बड़ी खुशी होती है कि चलो यार पुराने लिसनर से मौका मिल गया बतियाने का।
1: मैंने आपको सुना ना, तो मुझे लगा कि मुझे आज कॉल करनी चाहिए, बिकॉज मेरी काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है।
0: बिल्कुल, एक्चुअली मैं बहुत कम आ पाता हूँ ना, प्रॉब्लम ये भी है फिर।
1: हाँ, इसलिए तो मैंने सोचा कि यार मैं नाइट में ही कॉल कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग के प्रोग्राम में तो कोई कॉल वगैरह नहीं हो पाती, और वैसे भी आप मतलब बहुत कमी के साथ आते हैं किसी प्रोग्राम में।
0: बहुत बढ़िया किया आपने लाइबा जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने फोन किया। और बताओ आपके यहाँ का मौसम कैसा है, पहले ये बताओ आप।
1: मेरे यहाँ का वेदर बहुत बुरा है सर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है।
0: ओहो, गर्मी, अब बस थोड़ा सा और सब्र करो, फिर इतनी ठंडी होगी ना, आपको क्या बताऊँ, अभी अक्टूबर आ गया है, देख लो इन्हीं 10-15 दिनों में।
1: बहुत वेट कर रही हूँ।
0: अच्छा, आपको सर्दियाँ पसंद है गर्मियाँ पसंद है? वैसे
1: मुझे सर विंटर पसंद है, मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है ना, और जब बादल है तो फिर मुझे बहुत बुरा सा लगता है कि इतनी जल्दी चला गया।
0: हाय हाय, मतलब सर्दियाँ मुझे तो इसलिए पसंद है क्योंकि कुछ खाने पीने की अच्छी सब्जियाँ मिल जाती है, मुझे बड़ा पसंद है इसलिए। और फिर मतलब कि दूसरी बात यह है कि सर्दी में आप कुछ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। गर्मियों में एक तो वैसी गर्मी, ऊपर से आप मसाले वाला कुछ खा नहीं सकते हो, कुछ भी मतलब ज्यादा हैवी खाना नहीं खा सकते हो।
1: सर्दियों में ज्यादा मैं वेट करती हूँ सर, मूंगफली वगैरह का, ये सक्सेस वगैरह ना, तो मुझे इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है सर्दियों में, वेट करती रहती हूँ कि जल्दी सर्दी आए और फिर जाए ना।
0: बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा लाइबा जी आपने फोन किया। और हाँ, मुझे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले आपकी कोई मित्र भी फोन करके आपके बारे में बात कर रही थी, शायद अफरोज फातिमा नाम।
1: हाँ,
0: तो आप लोगों ने एक दूसरे को मतलब क्या इशारा दिया?
1: कॉल कर रही थी।
0: नहीं, क्या आपने इशारा किया कि अभी तू कर बहन? नहीं बहन, तू कर ले फिर मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत ना है।
1: पहले तुम करो, क्योंकि उसकी बहुत जल्दी लग जाती है कॉल, वो इतनी जल्दी नंबर मिलाती है ना कि मतलब मैं भी नहीं लगा सकती, और उसकी बहुत जल्दी कॉल लग जाती है, तो मैंने बोला पहले तुम लगा दो, उसके बाद मैं कॉल कर लूंगी।
0: लेकिन मैं भी लिस्ट में बनके नंबर लगाऊंगा, मुझे पता है मेरा तो लग ही ना पाएगा।
1: आप भी किसी दिन सर शामिल होगी ना, तो आपको भी अलग ही वाइब आएगी कि जब लिसनर्स बनते हैं और जब ऑन एयर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: आई नो, मैं एक लिसनर बन के ही कार्य बनाऊ, मतलब तो मुझे पता है कि यार वो जो खुशी होती है ना, हमें गाना नहीं चाहिए होता, हमें हमारी आवाज सुननी होती है, हमारे दोस्तों के नाम जब वो रेडियो पे आता है तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, मतलब मैं शायद शब्दों में ना बता पाऊँ, आप समझ सकती है, वो फीलिंग ही अलग होती है।
1: बिल्कुल सर, मैं तो खुद ही को जब मैं ना मतलब पहले कॉल करती थी, तो मैं ना मतलब पहले ऐसा होता था थर्सडे में कॉल रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो मैं फ्राइडे को ना अपनी अम्मी को अपने मतलब सबको बता दिया करती थी कि आज मेरी कॉल लगी, और इनमें फुल वॉइस में सुना करती थी।
0: राइट राइट, और वो इतनी तेज हम बढ़ा देते थे कि हमारा पड़ोसी को भी लगता था कि हाँ भाई आवाज तेरी है, अब कम कर ले, हो गया भाई, समझ गया तू ही बोल रहा है।
1: मेरे भी पड़ोसी ऊपर खड़े हो गए।
0: और मेरा तो ये सीन था लाइबा जी, कई बार रेडियो को छाती पे ले गया, मैं कहा चलो जी सबको सुनाता हूँ, देखो मेरी आ रही है इसमें आवाज, बट किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अपने को
1: रेडियो का इंटरेस्ट मैंने बहुत लोगों में देखा है।
0: रेडियो का नहीं, हमारी आवाज जब सुनाते थे उनको लगता हाँ भाई ठीक है तेरी आवाज आ गई, हम समझ गए।
1: सर आप कहाँ से फोन मिलाया करते थे, मतलब एज ए लिस्नर?
0: अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप मेरी आरजे में आपका लिस्टनर तो पूछिए जी आप। देखो मैंने एज ए लिस्टनर बहुत अपने छत पे जा जाके हमने बहुत ट्राई किए हैं अपने फोन कॉल्स और अपने घर के अंदर भी हम ट्राई करते थे, कोशिश करते थे कि बाहर आ जाएं, और जैसे ही कॉल उठता था भाई जो खुशी होती थी ना बस बोल देते कि अब मेरी आवाज आने वाली है सुनते रहना। हम तो सुन नहीं पाते हैं लाइव में ना, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम खुद को नहीं सुन पाते हैं, और जब रिकॉर्डिंग होती है तो उसका एडवांटेज होता है कि आराम से बैठ के सुनते हैं, फैमिली का एक्सप्रेशन चेक करते हैं कैसा आ रहा है, कौन कितना मुस्कुरा रहा है, कौन क्या फील कर रहा है, वो सब देख पाते। अभी आप लाइव में हो तो आप वो नहीं चेक कर पाओगे क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हो तो रेडियो से भी दूर आना पड़ेगा ऑफकोर्स आपको। अब
1: फिर वॉइस में दिक्कत होती है, रिकॉर्डिंग होती है तो फिर तो इंसान बैठ के सुन लेता है, लेकिन जब लाइव में होता है तो फिर इंसान बस बात करता है, सामने वाले सुनते हैं। ये भी अच्छा
0: है, ऐसा कुछ करते हैं रिकॉर्डिंग वाला भी, कोई एक वीकली प्रोग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा, एंड उसमें एक थोड़ा सा ना उसका अलग मजा है, लाइव का अलग मजा है, लेकिन जो भी बोलो।
1: रिकॉर्डिंग में पता क्या होता है कि जैसे हम कॉल कर रहे हैं ना तो हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे कि हाँ हमारी वॉइस कैसी आ रही है, फिर हम क्या बात कर रहे हैं, और जब रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आता है ना तो फिर इंसान सुन पाता है कि हमने कहा मिस्टेक करी है, कहाँ नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज है।
0: ये तो है यार, लेकिन पता है क्या होता है लाइव जी, मुझे जो लगता है कि वो वाली ठीक है, लेकिन जब आप लाइव बात करते हो एकदम लाइव कॉल उठ जाए और आप लाइव हो आपको पता ही नहीं है, मतलब तो वो एक अलग होता है मोमेंट, मतलब वो अलग ही मोमेंट होता है।
1: अपनी है, दोनों का ना अपना अपना है।
0: हाँ,
1: कि लाइव का भी एक अलग ही बात है और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम का भी अलग ही बात है। वैसे सर आज आपको डेट याद है?
0: हाँ आई थिंक आज 4 अक्टूबर है। हाँ
1: हाँ पूरे 11 मंथ हो गए मुझे आपसे मिले हुए।
0: अरे वाह क्या बात है, मतलब 1 साल होने वाला है राइट?
1: हाँ नेक्स्ट मंथ में पूरा 1 साल हो जाएगा। एंड
0: चलिए आपने हमें बता करके बड़ी खुशी दी है, हम ये तारीख याद रखेंगे, हम ये अपने मित्र को बधाई दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, एंड एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि मतलब तब भी बोल दूंगी जब आपकी शादी होगी, लेकिन एडवांस में भी बोल दिया मैंने।
0: अरे बाप रे, मतलब मुझे लगता है कि मुझे पूरे रेडियो लिसनर को बारात में लेके जाना पड़ेगा, अपने बाद में लेके जाऊंगा। बहुत बढ़िया, लाइव में ये बातें हो रही हैं, जो गाड़ी में सुन रहे हैं बहुत मारेंगे हमको, आप तो घर बैठी हो आराम से।
1: कुछ नहीं बोलेंगे सर, पता है ना कि देखो सब मुरादाबाद और रामपुर से, सिर्फ मैं सिंगल लिस्टनर हूँ मुजफ्फरनगर की, तो मेरी ज्यादा होगी ना।
0: हाँ ये बात भी है, ये बात तो बिल्कुल सही करो। लाइवा जी आपके जितने भी दोस्त सुन रहे हैं ना सब हंस रहे हैं कि देखो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं। अच्छा एक बात बताओ लाइवा जी, अब आप आए हो तो मुझे आपसे ये उम्मीद तो डेफिनेटली होती है कि जब आप आओ तो कुछ ना कुछ सुनाओ बढ़िया सा, तो कुछ ना कुछ तो आप सुना के जाओगी, अब कोई अच्छी शायरी जो भी आपको बढ़िया सी लगे अभी, यू नो।
1: शायरी नहीं कर सकती
0: बिकॉज
1: ये काम तो
0: अफरोज
1: का
0: आता
1: है, मैंने कभी मतलब शायरी।
0: अच्छा आपने कुछ तो सुनाया है यार, मुझे आई रिमेम्बर, याद है लास्ट टाइम हेलो फरमाइश में कभी कहीं बात हुई तो कुछ तो
1: मैंने टाइम की थी शायरी, वो भी मैं पता है लिख के लाई थी, एंड मुझे मैंने सोच रखा था कि हाँ मुझे ये वाली शायरी बोलनी है, उस दिन मैंने बहुत मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी क्योंकि मैं कभी शायरियाँ नहीं बोलती, कभी मैसेज में टाइप कर देती हूँ,
0: बोलते नहीं लेकिन टाइप कर देते हैं, ये बहुत ही अच्छा जोक था।
1: मैं नेक्स्ट टाइम याद करके लेके आऊंगी कि हाँ मुझे आनंद भाई को शायरी सुनानी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और आपकी फैमिली में सब खैरियत है?
1: हाँ मेरी फैमिली में सब एकदम जिंदा है सर।
0: चलिए और आज आप क्या सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का नाम है तड़प और उसमें एक सॉन्ग है तू मेरा हो गया अब तो नहीं।
0: ओके ये तड़प कौन सी, ये तो नाम ही बड़ा मतलब धाकड़ सा लग रहा है, तड़प सुन के ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है भाई तड़प।
1: नहीं वो भी बहुत अच्छी है सर, आप देखोगे ना तो आप मुझे डबल थैंकफुल लगाओगे कि हाँ लाइव आपने बोला है तो अच्छी मूवी है।
0: पक्का मैं फिर जरूर देखूंगा, आज ही देखता हूँ। कौन सा गाना कौन सा बताया आपने?
1: तो मेरा हो गया है ख्वाब तो नहीं।
0: अच्छा ओके, नया गाना है
1: जी?
0: नया गाना है,
1: न्यू मूवी है, तड़प मूवी।
0: ठीक है मैंने देख लिया। ओके डन, थैंक यू सो मच। किसी का नाम लेना चाहोगे आप?
1: तीन नाम लेना चाहूंगी सर,
0: जरूर
1: जरूर।
0: चलो जी चलो जी, बाकी स्पेशल नहीं है इसका ये मतलब है क्या?
1: बाकी भी है सर।
0: चलो जी शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट लाइवा जी, फिर जरूर बात करते हैं। चलो जी ओके जी, थैंक यू।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: फिलहाल तो मुझे जाना है अभी जी, और जाते जाते एक कॉल और ले लेता हूँ। 10:02 हो गए, बहुत थकान हो रही है भाई। सुबह आपसे मिलना है तो उसके लिए फ्रेश मॉर्निंग चाहिए होगी ना, फ्रेश नींद भी चाहिए होगी। एंड अभी फिलहाल एक कॉल और लेते हैं। हेलो, कैसे हैं सर आप?
4: हेलो सर, नमस्कार
3: जी। आपको भी नमस्कार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप घर से बाहर निकल रहे हो बात करने के लिए?
4: नहीं, मैं घर पे हूँ, यहीं तो बैठा हूँ, जरा बरामदे में बैठा था मैं, जरा बाहर तो आ गया।
3: बहुत बढ़िया सर, आपका नाम तो बता दीजिए, आप बाहर तो आ गए।
4: सर मैं जिला रामपुर ग्राम से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
3: अरे वाह, क्या बात है कामिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े लंबे समय के बाद आप जुड़े हैं, मुझे लग रहा है आप हमारे कार्यक्रम में लंबे समय से जुड़े हैं या मेरी सी बात ऐसी लंबे टाइम के बाद हो रही है?
4: नहीं सर, वो बीच बीच में मैसेज करता रहता हूँ आपके प्रोग्राम में भी, कर देता हूँ मैं मॉर्निंग में।
3: लेकिन सर,
4: लेकिन आप, हाँ, आपसे बात काफी टाइम के बाद हो रही है। देखो क्योंकि फोन प्रोग्राम में आप बहुत कम आते हो।
3: हाँ हाँ, ये कह सकते हो। मुझे लग रहा था शायद आप ही काम काज में घुसे हुए, शायद इसलिए ज्यादा घुस गए हो, हमें भूल गए हो।
4: नहीं नहीं, आपको कैसे बोल सकते हैं सर?
3: चलिए, तो आपको
4: बोल जाएंगे।
3: कामिल जी, चीज समझ में नहीं आ रही है, आपके सारे दोस्त बैक टू बैक जुड़ रहे हैं और फिर आप भी जुड़ गए हो, ये मतलब ऐसा लग रहा है आज मतलब तीनों का लक काम कर गया।
4: लक काम कर गया सर, आपसे बात करने की सबकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई।
3: चलिए बहुत बढ़िया, जो अगले कॉलर है उनकी भी ख्वाहिश होगी, लेकिन मजबूरन जाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे।
4: जी वो टाइम की बात है सर,
3: बिल्कुल। और बताइएगा, और बताइए, सब बढ़िया है घर परिवार में? कुशल मंगल,
4: हाँ, बाकी सब
3: खैरियत,
4: हाँ, बाकी सब ठीक, हाँ, सब
3: खैरियत। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कामिल जी आप बताइए, आजकल बच्चे बहुत रात रात भर फोन चलाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी जागते हैं, क्या कहना चाहोगे? कहीं आप तो नहीं जागते हो रात में?
4: सर जागता तो नहीं।
3: अच्छा, तो फिर आप कुछ मत कहना भाई, आप रहने दो यार।
4: मैं कुछ कहूंगा नहीं सर।
3: बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी फिर तो यार।
4: जी जी सर।
3: अच्छा, तो आप फिर सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप?
4: सुबह 7:00 भी उठ जाते हैं, 6:00 भी उठ जाते हैं।
3: अच्छा, तो मतलब नींद पूरी हो जाती है भैया?
4: हाँ बिल्कुल हो जाती है सर, मैं दिन में सोते हैं नहीं बिल्कुल।
3: ओहो, या तो ये कह सकते हैं कि आपकी वो हैबिट बन गई है शायद।
4: जी
3: बहुत बढ़िया। तो कामिल जी टाइम थोड़ा सा कम है, आप क्या सुनेंगे आज प्रोग्राम में और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते?
4: सर मुझे सॉन्ग सुनना, फिल्म का नाम है निगाहें और गाने को बोले सारा सारा दिन तुम काम करोगे प्यार सब करोगे,
3: नाम मिल गया।
4: और सर साथ में कुछ दोस्त हैं?
3: हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, किसी का नाम लोगे वही मैं पूछा, मैंने कहा नाम जी बताएं।
4: जी जैसे सबसे पहले ये लायबा काजी, मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद इशरत, ये सब सुनना चाहेंगे।
3: चलिए बहुत बढ़िया, तो सुनवाते हैं बढ़िया सा गीत, और हमारी तरफ से भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहिए सी कामिल साहब
4: जी।
3: जी भैया नमस्कार, ओके वेलकम भैया, थैंक यू भैया। चलिए गाइस, ये मोहम्मद कामिल जी रामपुर खेड़ा टांडा से हमारे साथ जुड़े थे, और बाकी जो लोग अभी फोन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं माफी ही चाहूंगा, बहुत सारे मैसेज भी आ चुके हैं हमारे पास। कोई रोडवेज बस में सुन रहा है, तो कोई अपनी गाड़ी में सुन रहा है, तो कोई अपने सच में घर में सुन रहा है। वेल, जितने लोगों ने मैसेज किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी मुझे लेनी होगी आपसे इजाजत, जल्दी आपको हम मिलेंगे एक फ्रेश वाइब के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, कुछ और नए नए चीजों के साथ, मतलब नए नए सेगमेंट के साथ। कल सुबह मुलाकात करते हैं ना, मंडे की सुबह। रखिए ढेर सारा ख्याल मेरी तरफ से, बाय बाय, शुभरात्रि, गुड वाली, गुड टाइम।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अकबर, लैला मजनू, शिरीं और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060002430।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।